सुप्रभात, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, सक संवत 1948, श्रावण माह की तिथि 17, तदनुसार अगस्त 8, ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: समाचार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि UPI के माध्यम से किए जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, NPCI और भारतीय रिजर्व बैंक UPI को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। भारत ने महज 3 वर्षों में 1000 किलोमीटर से अधिक सुरक्षित क्वांटम संचार स्थापित किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 3रे भारत अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक महोत्सव में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और स्टार्टअप्स के बीच नजदीकी सहयोग से भारत का फिनटेक क्षेत्र देश के आर्थिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण चालक बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि देश के फिनटेक क्षेत्र में विकास के अगले चरण में AI, क्वांटम प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन और विश्वसनीय डिजिटल नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सरकार की ओर से 4 मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 2 दिन के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति कल विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस निर्णय पर संसद निर्णय करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जाँच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शनों में करीब 50 लोगों की मौत की खबर है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बीच दिल्ली में कल रात से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will address the 57th convocation ceremony of IIT Delhi today. He will address more than 3,000 graduating students, including undergraduate and postgraduate students, and 587 PhD scholars. The Prime Minister said that IIT Delhi has always made a rich contribution in the fields of research and innovation. Mr. Modi said that he looks forward to being among the students and teachers of this pioneering institution. Addressing a press conference in New Delhi yesterday, Director IIT Delhi Rangan Banerjee said that Mr. Modi will present the institute's most prestigious awards, including the President's Gold Medal, Director's Gold Medal, Shankar Dayal Sharma Gold Medal, and Perfect 10 Gold Medals to the meritorious students. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah will inaugurate the new office of the National Urban Cooperative Finance and Development Corporation Limited today in Mumbai. The Home Minister will also interact with the representatives of State Urban Cooperative Bank Federations and District Associations of Maharashtra. During the program, a memorandum of understanding will be exchanged between the corporation and the National Forensic Sciences University. The collaboration will play an important role in strengthening cybersecurity, technological capabilities and institutional capacity in the urban cooperative banking sector. Payments Council of India has announced that UPI will continue to be free for consumers. In a statement, the council affirmed that every Indian can continue to make instant digital payments without any transaction charges. It also noted that small merchants will not be charged for accepting digital payments. The Payments Council of India clarified that any applicable merchant service charges, which are commercial arrangements solely between the merchants and the payment providers, do not mean that consumers pay to use digital payments. India has rejected the objections raised by a US lawmaker on the proposed Foreign Contribution Regulation Amendment Bill, saying that its legislative matters are its internal affairs, in which the decisions are taken by the Parliament. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said this during a media briefing in New Delhi. While replying to a question in this regard, Mr. Jaiswal pointed out that there are several nations, including the US, which regulate the flow of foreign funds. Replying to the defense pact between Pakistan, Turkey and Saudi Arabia, the spokesperson said the development is being closely followed. On recent defense pact between Pakistan and Somalia, Mr. Jaiswal said India continues to follow these developments closely. The first formal talks between the Jharkhand government and the students' delegation were held late last evening amid ongoing agitation over alleged irregularities in the JPSC and JSSC examinations. During the meeting, the students reiterated their demands for transparency in the recruitment examinations, an impartial probe into the alleged irregularities, and comprehensive reforms in the recruitment process. Four state ministers and the development commissioner represented the government in talks. The minister said the government would take positive steps on the students' demands and assured them that all issues raised during the meeting would be placed before the chief minister. The students described the talks as positive, but said their sit-in protest and hunger strike would continue until a written decision is taken and concrete action is initiated on their demands. United Nations Secretary General Antonio Guterres has called for an impartial inquiry into the killings of protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK. The UN Deputy Spokesperson Farhan Haq said that there must be accountability if peaceful protesters were harmed. Earlier, the UN High Commissioner for Human Rights, Volker Turk, called for prompt, thorough and impartial investigation into all deaths during the unrest involving both protesters and security forces. In badminton, Indian shuttler Ashmita Chaliha will face compatriot Rakshita Ramraj in the women's singles semi-finals of the Korea Masters Super 300 tournament in Assam this morning. Ashmita Chaliha and Rakshita Ramraj won their respective quarterfinal matches to advance to the semi-finals. And that is the end of this news bulletin.
3: अभी आप सुन रहे थे समाचार। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार है महेंद्र कपूर।
4: एपिसोड 161 161।

श्री राम लक्ष्मण तथा सीता के गंगा तट पर स्थित श्रृंगवेरपुर के निकट पहुंचने का समाचार सुनकर निषाद राजगुह के हर्ष की सीमा न रही। अपने प्रियजनों तथा भाई बंधुओं को एकत्रित कर भेंट देने के लिए फल मूल आदि बहंगियों में भर भर कर वो सदल बल श्री राम से मिलने चला। राम ने उसे आत्मीय की भांति पास बिठाकर उसकी कुशलक्षेम पूछी। निषाद राज गदगद होकर बोला, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल है। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। यहां की धरती, धन संपत्ति और घर सभी आपके हैं। मैं तो परिवार के साथ आपका सेवक मात्र हूं। अब कृपा कर हमारे पूर्वे में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए। श्री राम ने उत्तर दिया, हे सुजान सखा, तुमने जो कहा वो तुम्हारे स्नेह का द्योतक है, किंतु पिता ने मुझे कुछ और ही आज्ञा दी है। मुझे 14 वर्षों तक मुनिवेश और व्रत धारण करके उन्हीं सरीखा भोजन करते हुए वन में ही निवास करना है। एक तापस का गांव में रहना उचित नहीं है। श्री राम लक्ष्मण तथा सीता का तापस वेश देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम विह्वल हो रहे हैं। वो उन माता पिता की कठोरता से क्षुब्ध हैं जिन्होंने ऐसे सुकुमारों को वनवास दिया है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे महेंद्र कपूर। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और यशुदास के स्वर में यह भक्ति रचना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण, लता मंगेशकर अनूप जलोटा के स्वर में। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए आप सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी।

अब से कुछ देर बाद यानी कि सुबह के 6:45 का समय होगा सुगम संगीत का। आप सुनेंगे आनंद मोहन पाठक के स्वर में। सुबह के 7 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईवासा। सुबह 8 आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से ही सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार सुबह के 8:15 पर। सुबह 8:30 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का आकाशवाणी रांची से। सुबह के 8:40 का समय होगा लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। सुबह 9 आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। सुबह 9:30 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। सुबह 10 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सुबह के 10:30 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होगा दोपहर के 1:10 पर आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा दोपहर के 1:20 पर। दोपहर के 2:55 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का आकाशवाणी रांची से। 3 आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। 3:15 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का मुख्य समाचार का प्रसारण होगा शाम के 4 आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा शाम के 4:02 पर। शाम 5 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। कार्यक्रम विवरण का प्रसारण होगा शाम के 5:02 पर। 5:05 का समय होगा कार्यक्रम गुलदस्ता का जिसमें आज आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत। शाम के 5:30 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम। शाम के 6 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। शाम के 6:02 का समय होगा बांग्ला कार्यक्रम सात रंग का। शाम के 6:30 का समय होगा आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम। शाम के 7 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची से ही सुनेंगे जिले में आजकल। शाम 7:15 का समय होगा श्रोताओं के फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। शाम के 7:30 का समय होगा किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा गोभी की खेती। उसके बाद आप सुनेंगे हो लोकगीत अमरनाथ सामड़ और साथी को। मौसम की जानकारी के बाद आप सुनेंगे भेंट वार्ता। कार्यक्रम के अंत में सुनेंगे मुंडारी लोकगीत दुराई सिंह मुंडा और साथी को। रात्रि के 8 आप सुनेंगे इस सप्ताह संसद में आकाशवाणी दिल्ली से। रात्रि के 8:15 का समय होगा फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत आनंद मोहन पाठक के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत आनंद मोहन पाठक के स्वर में। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है। पेश है कार्यक्रम जोहार चायबासा। कार्यक्रम जोहार चायबासा सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को पूनम का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फिल्म आए दिन बाहर के इस गीत से, लता मंगेशकर के स्वर में।

अभी आपने सुना फिल्म उपहार का ये गीत मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है दिल अपना प्रीत पराई, लता मंगेशकर के स्वर में।

अभी आपने सुना फिल्म आराधना का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म चितचोर से, यशोदास के स्वर में।

0: अभी आपने सुना फिल्म धरती का ये गीत मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चायबासा से फिल्म संगीत का कार्यक्रम जौहर चायबासा। सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700001424।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें

0: 8700014242।
1: इस संदेश के बाद आइए अब सुनते हैं फिल्म दूसरा आदमी का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में।

अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म अवतार का ये गीत। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म हीरो से, अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज़ों में।

कार्यक्रम के अंत में आइए, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म गुंडाराज का ये गीत कुमार शानू और अलीशा चिनोई के स्वर में।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायबासा। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से।

0: जिद्दी। पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा। तब बोला, अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
1: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया, उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई लेन देन निःशुल्क रहेगा। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया, विधेयक को देश का आंतरिक मामला बताया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहले औपचारिक बातचीत की। रूस से तेल खरीदने वाले 5 देशों पर 100% शुल्क लगाने का विधेयक अमेरिका के सेनेट में पारित, और पूर्वी राजस्थान तथा ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे 3000 से अधिक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पी

0: निचले शोधार्थी शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह के दौरान संस्थान के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान जैसे प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल मेधावी छात्रों को प्रदान करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे जो आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित एआई संचालित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है। यह आधुनिक सुविधा एआई, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और अंतर विषयक शोध के क्षेत्रों में संस्थान की क्षमताओं को मजबूत करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने हमेशा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि वह इस अग्रणी संस्थान के छात्रों और शिक्षकों के बीच जानने के लिए उत्सुक हैं। श्री वांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कल नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंजन बैनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। श्री रंजन बैनर्जी ने नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा के बारे में भी जानकारी दी।
2: इस कॉन्वोकेशन में 3000 से अधिक ग्रेजुएट्स डिग्रीज ले लेंगे। कॉन्वोकेशन में हमारी एक नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर 250 पेटाफ्लॉप्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट लॉन्च बाय आवर प्राइम मिनिस्टर।
0: भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किया जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने स्पष्ट किया है कि व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। एक रिपोर्ट। यूपीआई के जरिए लेनदेन पर चार्ज लगने की खबरों ने आम उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। इस भ्रम को पूरी तरह दूर करते हुए पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई ने साफ किया है कि ग्राहकों के लिए यूपीआई सेवाएं पूरी तरह मुफ्त बनी रहेंगी। डिजिटल इंडिया की रफ्तार को बनाए रखने और वित्तीय समावेशन को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये स्पष्टीकरण एक बड़ा राहत देने वाला कदम है। पीसीआई ने कहा है कि यूपीआई देश की महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था बन चुका है जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। बढ़ते लेनदेन को देखते हुए सुरक्षा, तकनीक और ढांचे को मजबूत बनाए रखना जरूरी है ताकि भविष्य में भी यूपीआई उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए सुचारू रूप से काम करता रहे। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
3: भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक FCRA पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमरीका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
4: We have seen the comments.
5: हमने टिप्पणियां देखी हैं। ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका सहित कई देशों में विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
4: रेगुलेट द फ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स।
3: भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है।
4: While we are coordinated,
5: पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में हम स्थानीय नौवहन मंत्रालय और अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवाजाही और व्यापार के निर्बाध संचालन की मांग दोहराते रहे हैं। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे लोगों के बुनियादी ढांचे और नागरिकों, खासकर वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाने से बचें।
3: पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर भी नजर बनाए हुए है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: सरकार की ओर से चार मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी सेनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल रही है। लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक को समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। ये विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले 5 बड़े देशों पर 100% शुल्क लगाने की अनुमति देगा। विधेयक में ईरान पर प्रतिबंध संबंधी 1996 के अधिनियम को बढ़ाकर 2031 तक करने का भी प्रावधान किया गया है। 1996 के इस अधिनियम में ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। एक रिपोर्ट।
7: संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। इनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल दोनों शामिल हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चुनाव में कथित गड़बड़ियां और स्थानीय विधानसभा चुनाव में बाहरी लोगों के लिए सीटें आरक्षित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शन में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में आज हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ओडिशा में तेज बारिश की आशंका है। इसके चलते राज्य में व्यापक वर्षा होगी।
8: मौसम विज्ञान विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी और 24 जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की है, जिसमें कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। ऑरेंज चेतावनी वाले जिले सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, केंदुझर और मयूरभंज है। भारी बारिश के अनुमान के देखते हुए एहतियात के तौर पर मयूरभंज में आज सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस बीच बालेश्वर के बस्ता में जड़का नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है।
9: केरलम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य के सभी जिलों में बीते सप्ताह से ही बारिश संबंधी अलर्ट जारी किए गए हैं। कासरगोड, कुन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, कोट्टायम, अलापुजा और पथनामथिट्टा जिले आज ऑरेंज अलर्ट पर, जबकि बाकी जिले येलो अलर्ट पर हैं। केरलम और लक्षद्वीप में आज तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने 25 करोड़ ओपीडी पंजीकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इस उपलब्धि से पता चलता है कि मिशन के तहत नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। एक रिपोर्ट।
10: अक्टूबर 2022 में शुरू होने के बाद से स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने मरीजों के लिए आसान QR कोड स्कैन के जरिए अस्पताल में डिजिटल रूप से पंजीकरण कराने की सुविधा देकर OPD रजिस्ट्रेशन के अनुभव का कायाकल्प कर दिया है। यह सेवा अभी देश भर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 756 जिलों में 30,800 स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार स्कैन एंड रजिस्टर ट्रांजेक्शन के साथ देश में सबसे आगे है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में एम्स नई दिल्ली में सबसे ज्यादा मरीजों ने इस सेवा से पंजीकरण कराए हैं। इस उपलब्धि के बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी पर राज्य सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच हुई पहले दौर की वार्ता, अभी जारी रहेगा छात्रों का आंदोलन। 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में अनियमितता की जांच तेज, सीआईडी ने आयोग के 3 वर्तमान सदस्यों को 10 अगस्त को पूछताछ के लिए भेजा समन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान, कहा वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों से छेड़छाड़ की कीमत सबको चुकानी होगी। कोल्हान के जंगलों में सक्रिय 10 लाख के इनामी माओवादी जोनल कमांडर सालुका कायम ने 2 महिला नक्सलियों के साथ चाईबासा में किया आत्मसमर्पण। और मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने आज राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की जारी की चेतावनी। लातेहार, लोहरदगा और पश्चिम सिंहभूम में ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में जेपीएससी और जेएसएससी

0: परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच कल देर शाम सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच पहली औपचारिक वार्ता हुई। इस बीच मामले की जांच और राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच कल राज्य सरकार और छात्रों के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के बीच पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में सरकार की ओर से चार मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा।
2: छात्रों के साथ सौहार्दपूर्ण हम लोगों ने तमाम वार्ता को किया। छात्रों की मांगों को हम लोगों ने समझा। सरकार सहानुभूतिपूर्वक छात्रों की मांगों पर विचार करने को तत्पर।
1: छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
2: हमारी जो भी प्रमुख मांग थी एकत्र करके विस्तार पूर्वक हमने बताया। हमारी प्रमुख मांगे को ध्यान से सरकार के डेलीगेट्स में जो भी मंत्री थे उन्होंने सुना और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी जितनी भी प्रमुख मांगे हैं इस पर हम लोग विचार करेंगे। हम लोगों ने यह बोला कि जब तक हमारी प्रमुख मांगे नहीं मान ली जाती है हम लोग की आंदोलन जारी रहेगी।
1: इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: इधर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर सरकार को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि यदि 13 अगस्त तक युवाओं के हित में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो वे इस मामले की सीबीआई जांच की मांग को और तेज करेंगे।
3: झारखंड के बच्चों के भविष्य का सवाल है। हम प्रयास करेंगे कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो, इसके लिए कोर्ट के माध्यम से हो या दबाव के माध्यम से हो या विद्यार्थियों के आंदोलन के कारण, किसी भी आधार पर इसकी प्रॉपर जांच कराएंगे और ऐसी सजा दिलवाएंगे कि भविष्य में कोई भी आदमी इस तरह की हिमाकत नहीं जाने।
0: जेपीएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच तेज करते हुए सीआईडी ने आयोग के 3 वर्तमान सदस्यों डॉ. अजिता भट्टाचार्य, डॉ. अनिमा हंसदा और डॉ. जमाल अहमद को समन भेजा है। 10 अगस्त से इनसे पूछताछ होगी। पूर्व अध्यक्ष एलबी ख्यांगते से मिले इनपुट के आधार पर सीआईडी ने जांच को अंतिम नतीजे तक पहुंचाने का प्रयास तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 77वें वन महोत्सव के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि जंगलों के घटने और प्राकृतिक संसाधनों के साथ मानवीय छेड़छाड़ का गंभीर असर इंसानों और वन्य जीवों पर पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण से खिलवाड़ की कीमत सबको चुकानी होगी।
4: जिस तरीके से कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं, सब लोग पेड़ काट काट करके बिल्डिंग बना रहा है, अपार्टमेंट बना रहा है, मॉल बना रहा है, तो हमने सोचा कुछ लालच ही दे करके पर्यावरण को बचाने का कोशिश हो, तो हमने शहर के लोगों के लिए कहा कि जो एक पेड़ लगाएगा उसको 5 यूनिट बिजली फ्री दे। 100 पेड़ लगाओ 1000 यूनिट बिजली फ्री ले लो।
0: हजारीबाग के टाटीझरिया प्रखंड स्थित अमनारी गांव में बारिश के कारण एक पुराना मिट्टी का मकान ढहने से करीब 200 साल पुराना चांदी के सिक्कों का खजाना मिला है। मलबे से 300 से अधिक प्राचीन सिक्के बिखरे हुए पाए गए हैं। गृहस्वामी नंदकिशोर प्रसाद के अनुसार यह उनके पूर्वजों की संपत्ति है। स्थानीय प्रशासन को इस घटना की सूचना दे दी गई है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।

0: मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
0: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्मिक का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर आज और कल मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी पात्र भारतीय नागरिक फॉर्म 6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। इस बीच देवघर के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को दुरुस्त करना, नए नाम जोड़ना और एक ही परिवार के सदस्यों के नाम एक ही बूथ पर स्थानांतरित करना है। उन्होंने राजनीतिक दलों और बीएलओ से इस अभियान को सफल बनाने की अपील की है।
3: 8th और 9th अगस्त को सभी बूथों में शिविर लग रहा है, सुबह 10 से लेकर शाम के 4 बजे तक, जिसमें जो भी छूटे हुए मतदाता हैं जिनका नाम जोड़ा जाना है उनके लिए विशेष शिविर है। 2 दिन चलेगा, 8th से लेकर 9th तक, सुबह 10 से लेकर शाम 4 बजे तक। तो वैसे मतदाता जिनका नाम छूट चुका है या फिर वैसे युवा जो कि इस साल 1-10-2026 में हारता रखते हैं, वो सभी जाकर अपना नाम वहां जुड़वाएं।
2: पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के बीच प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन को एक और बड़ा झटका लगा है। संगठन के 10 लाख रुपए के इनामी जोनल कमेटी सदस्य सालुका कायम उर्फ भुवनेश्वर ने 2 महिला माओवादियों पिंकी और 1 लाख की इनामी कोडोमुनी कोड़ा के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। सोनवा निवासी सालुका कायम माओवादियों के गिरफ्तार पोलित ब्यूरो सदस्य मिसर बेसरा के दस्ते में सक्रिय था। उस पर IED ब्लास्ट, हत्या और रंगदारी सहित 96 आपराधिक मामले दर्ज हैं। और अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने आज राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। विशेषकर रांची, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली की आशंका को देखते हुए नागरिकों से खराब मौसम में खुले स्थानों पर न जाने की अपील की है। 9वीं राज्य सब जूनियर सेपक टकरा प्रतियोगिता कल जिला स्कूल परिसर में आयोजित की जाएगी। सेपक टकरा एसोसिएशन ऑफ झारखंड के अध्यक्ष उदय साहू ने बताया कि प्रतियोगिता की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन श्रीनगर में होने वाली सब जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए झारखंड की टीम में किया जाएगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद पर सरकार के मंत्रियों और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच पहली वार्ता की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, कमेटी ने मांग पत्र लिया, सीएम लेंगे फैसला। हिंदुस्तान के शब्द हैं, जेटेट नहीं कराने पर शिक्षा सचिव को अवमानना नोटिस। दैनिक जागरण लिखता है, सीआईडी ने जेपीएससी के 3 सदस्यों को भेजा नोटिस, अगले हफ्ते करेगी पूछताछ। प्रभात खबर की सुर्खी है, कतरास में भीषण भूधसान, आधा दर्जन आवास जमींदोज। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी पर राज्य सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच हुई पहले दौर की वार्ता, अभी जारी रहेगा छात्रों का आंदोलन। 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में अनियमितता की जांच तेज, सीआईडी ने आयोग के 3 वर्तमान सदस्यों को 10 अगस्त को पूछताछ के लिए भेजा समन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान, कहा वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों से छेड़छाड़ की कीमत सबको चुकानी होगी। कोल्हान के जंगलों में सक्रिय 10 लाख के इनामी माओवादी जोनल कमांडर सालुका कायम ने 2 महिला नक्सलियों के साथ चाईबासा में किया आत्मसमर्पण। और मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने आज राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की जारी की चेतावनी। लातेहार, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम में ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।
2: सेवा जोहार, तैयार हो जाइए इतिहास के सबसे बड़े सांस्कृतिक महाकुंभ का गवाह बनने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार लेकर आ रही है झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026। आगामी 9 और 10 अगस्त को रांची का मोराबादी मैदान गूंजेगा 5,000 से अधिक लोक कलाकारों, झूमर, छऊ और पारंपरिक जनजातीय प्रस्तुतियों से। महोत्सव में होंगे भव्य उद्घाटन एवं सम्मान समारोह, कला एवं शिल्प प्रदर्शनी, पुस्तक मेला, स्वतंत्रता सेनानी विरासत प्रदर्शनी, चित्रकला प्रदर्शनी, ट्राइबल फैशन शो, रॉक बैंड की शानदार प्रस्तुतियां, इमर्सिव जोन और 700 ड्रोन का भव्य शो, आधुनिक 5D थिएटर और AI तकनीक इस अनुभव को और भी यादगार बनाएंगे।
3: यहां मिलेगा पारंपरिक जनजातीय खानपान, आदिवासी व्यंजन प्रतियोगिता, आकर्षक हस्तशिल्प, नॉलेज पार्टनर्स और लेखकों से संवाद का अवसर। सब परिवार आइए और अपनी संस्कृति के रंग में घुल जाइए। अपनी परंपरा और अपनी पहचान का उत्सव गर्व के साथ मनाइए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा हित में जारी।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज आप सुनेंगे उड़िया लोकगीत, कलाकार हैं निलय कुमार साहू।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज आपने सुना उड़िया लोकगीत, कलाकार थे नीले कुमार साहू और साथी। ये आकाशवाणी का चाईवासा केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विविधा।

0: कार्यक्रम विविधा सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को पूनम का नमस्कार। श्रोताओं कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है 8 अगस्त। जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस हर साल 8 और 9 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन 1942 में बॉम्बे में महात्मा गांधी द्वारा किए गए ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन की याद दिलाता है, जिसने देश के ब्रिटिश राज को खत्म करने की मांग की थी। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में यह प्रस्ताव पास हुआ था। महात्मा गांधी ने ग्वालियर टैंक मैदान से करो या मरो का नारा दिया था। अंग्रेजों ने 9 अगस्त की सुबह बड़े नेताओं को भी पकड़ लिया। देश के आम लोगों ने खुद आगे बढ़कर इस आंदोलन की ताकत दी। इस तरह से ये ऐतिहासिक दिन आज के दिन मनाया जाता है।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्री

0: तालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश ठेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: इस संदेश के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं भेंट वार्ता लाइब्रेरी मैन। भेंट वार्ताकार हैं संजय कच्छप, उनसे बातें कर रहे हैं आशा पिंगवा।
1: सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए।
2: मेरा नाम संजय कच्छप है और मैं कूलहातू बड़ी बाजार वार्ड नंबर 1 का रहने वाला हूँ। मैं एक सरकारी सेवक हूँ और वर्तमान में मेरी पोस्टिंग पाकुड़ ज़िले में एज ए मार्केट सेक्रेटरी कृषि उत्पादन बाज़ार समिति पाकुड़ के रूप में है। और मेरा

0: पैशन है कि मैं कुछ ग्रामीण क्षेत्रों और मोहल्ले क्षेत्रों में जहाँ बच्चों को शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ जा करके उनके साथ मिल करके वहाँ के समुदाय के साथ मिल करके पुस्तकें खोलना, ये मेरा पैशन के साथ साथ अब उद्देश्य बन गया है।
1: तो और वैसे तो आप चाईबासा के ही निवासी हैं?
0: जी जी, मैं मूल निवासी मैं चाईबासा का ही हूँ, लेकिन जहाँ भी मेरी पोस्टिंग होती है मैं वहाँ उस क्षेत्र में जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, खासतौर पर रिमोट एरिया के ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी और पिछड़े क्षेत्र में, छुट्टी के दिनों में मैं जाता हूँ और शिक्षा के महत्व को बताता हूँ और पुस्तकालय के को भी के विषय में भी जानकारी देता हूँ। और जहाँ के लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं या यूथ जो है चाहते हैं कि कुछ अच्छा हम लोगों के लिए हो शिक्षा, तो उनके साथ मिल करके पुस्तकालय बनाने के जो मुहिम में जुड़ जाता हूँ।
1: जी हाँ, वैसे तो आपका काम जो है वो सरकारी काम होता है, लेकिन आप जो गांव-गांव जा कर के वहाँ पुस्तकालय खोलते हैं, वहाँ के लोगों को जागरूक करते हैं, ये अपनी इच्छा से है कि या फिर सरकारी है ये?
0: नहीं, ये तो मेरा व्यक्तिगत इच्छा है, क्योंकि इसके पीछे एक मूल कारण ये है कि जब हम लोग जब स्ट्रगल कर रहे थे, जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था और जब कॉलेज में पहुंचा, तो हम लोग चाहते थे कि शिक्षा के बेहतर हम लोगों को शिक्षा मिले, ऐसी शिक्षा मिले जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, क्वालिटी एजुकेशन मिले जिससे हम UPSC जैसा परीक्षा भी आसानी से पास करें, लेकिन ये हम लोगों के लिए बहुत आसान नहीं था, क्योंकि हम लोगों के जो क्षेत्र में कोई माहौल अच्छा नहीं, पॉजिटिव माहौल नहीं था और कोई मार्गदर्शक नहीं थे, या जो किताब वगैरह भी बहुत मुश्किल से मिल पाता था, खासतौर पर चाईबासा जैसे क्षेत्रों में जब हम लोग स्कूल में थे 90 के दशक में, कॉलेज में पहुँचे, तो ये सारी समस्या जो है जेहन में थी। तो उस समय हम लोग जब स्ट्रगल कर रहे थे तो उसी समय लगा था कि यदि ईश्वर की कृपा अगर रही और हम लोग अच्छे पदों पर आ गए या सक्षम बनते, तो निश्चित रूप से जो है वैसे बच्चे जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको मदद करने के लिए आगे आएंगे। तो चूँकि नौकरी एक क्षेत्र में पदस्थापित होते हैं, तो वहाँ से फिर कंफर्ट मैंने अपने क्षेत्र में या कंफर्ट जोन वाले क्षेत्रों में ही स्टूडेंट मिलेगा ऐसा नहीं है, जहाँ हमको लगता है कि जिस भी क्षेत्र में लगता है कि जहाँ बच्चे नीडी हैं या ज़रूरतमंद हैं, और फील्ड में विजिट के दौरान हो गया या जानकारी से पता चल गया, तो मैं वहाँ जाता हूँ। और नौकरी तो 6 दिन हम लोगों को ड्यूटी होती है, लेकिन संडे अपना रहता है, तो अगर मैं घर नहीं आता हूँ तो किसी फील्ड में चला जाता हूँ और किसी गांव में चला जाता हूँ, वहाँ के युवाओं से मिलना होता है। फिर उसके अलावा कहीं हॉस्टल्स है, आदिवासी हॉस्टल्स है या पिछड़ी जाति के अल्पसंख्यक हॉस्टल, तो वहाँ भी मुझे जाना अच्छा लगता है छुट्टी के दिन। तो आज जो भी मैं काम कर पा रहा हूँ तो ये अपने छुट्टी के दिनों का ही उपयोग करते आज ये ऐसी परिस्थिति आई है कि आप लोग हम लोग को जान रहे हैं, एक लाइब्रेरी मैन के रूप में जान रहे हैं, लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है। और जब मैंने शुरू किया था, सबसे पहले तो हम लोग ये शुरू किए थे कि अपनी गरीबी बेरोजगारी को कैसे दूर करें, इस पर हम लोगों ने बहुत काम किया था, ग्रुप स्टडी किया था, लेकिन जो तमाम जो समस्या आ रही थी, तो एक सबक भी था, एक सीख भी था, एक मोटिवेशन भी था हम लोगों का कि कल को अगर हम लोग कुछ अच्छा करते हैं तो आने वाली भावी पीढ़ी के लिए जो संघर्ष रहते हैं या जो कम संसाधन में आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी हम लोग मदद करेंगे। तो आज जो भी हम लोग कर पा रहे हैं उसके पीछे का मूल कारण यही है।
1: अच्छा, मतलब कि आप लोगों को जागरूक भी करना चाहते हैं और उन लोगों को सफल भी देखना चाहते हैं कि इस लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाती है, वो भी निःशुल्क, जिसके पास जो बच्चों के पास किताबें नहीं है, पैसे नहीं है, आप लोग उन लोगों की भरपूर मदद भी कर देंगे। लेकिन शुरुआत में आप लोगों को जरूर कुछ कठिनाइयां हुई होंगी।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शिक्षा सबसे मौलिक चीज़ें हैं जो मनुष्य जो हम लोग जो मानव जीवन है वहाँ शिक्षा का बहुत महत्व है, और शिक्षा जो है हम लोगों को बताता है कि हम लोग कल कहाँ होंगे। हाँ। और या अपने जीवन को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अभी भी आप देख रहे होंगे कि जो शिक्षा का स्तर है वो हर जगह समान नहीं है। शहरी क्षेत्रों में आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं, लेकिन वही क्षेत्र आप जैसे जैसे दूर रिमोट एरिया में जाते हैं वो मैंने जो है कम होते चला जाता है। तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक संवेदनशील मनुष्य होने के नाते ये हम लोगों को लगता है कि इस पर काम करना चाहिए। और शुरुआत

0: से आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कूल हाथू जो मेरा वार्ड नंबर एक है, ये भले शहर के बगल में ही एक मोहल्ला है, लेकिन ये एक समय 90 के दशक में एक जो है जिसको हम लोग बहुत ख़राब लगता है ये शब्द का इस्तेमाल करना, जिसको हम स्लम एरिया बोलते हैं, वो उस टाइप का एरिया एक समय हुआ करता था
1: जी।
0: लेकिन जैसे जैसे सरकार की भी योजनाएं आई तो घर मकान पक्का रोड सड़क पुलिया नाली बनने के बाद स्थिति जो है अभी बेहतर हो गई, लेकिन उस समय इसकी भी कमी थी और शिक्षा की भी कमी थी, जिसके वजह से जो लोग हैं जो सामाजिक बुराइयाँ थी वो समाज में काफ़ी था, जैसे नशाखोरी हो गया, जुहा, फिरना पलायन हो गया, अंधविश्वास चरम पे था, डाइन बिशाही ये वो, मैंने ये सारा चीज़ काफ़ी हावी था जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें को हम लोग तब दूर कर सकते हैं जब लोग तार्किक रूप से सोचें, और लोग तार्किक रूप से तभी सोचेंगे जब शिक्षा ग्रहण करेंगे
1: जी।
0: तो शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं है, ये जो जीवन को सोचने का दिशा भी देता है और एक बेहतर मनुष्य बनाने के लिए एक बहुत अहम माने जो मटेरियल जिसको बोलते टूल है एजुकेशन। तो हम लोगों को लगा कि नहीं शिक्षा से ही सब चीज़ हो सकता है, तो हम लोगों ने 2008 में पहला लाइब्रेरी शुरू किया। मेरी नौकरी 2004 में ही हो चुकी थी, मैं रेलवे में था, 2004 से 8 तक रेलवे में रहा, लेकिन जब उस समय से ही मैं प्रयासरत था कि पुस्तकालय खोलूँ, लेकिन हम लोग ग्रुप स्टडीज सेंटर चलाते थे दोस्तों की मदद से। तो ग्रुप स्टडी सेंटर में क्या होता था कि जो तैयारी करने वाले लड़कों का एक समूह होता था, तो लोग किसी जगह रूम में या कहीं पे इधर उधर जहाँ जगह मिल जाए वो करते थे, तो कोई स्थायी तौर ठिकाना नहीं था। तो ये भी जहन में था कि अगर कोई भवन मिल जाए, सामुदायिक भवन मिल जाए, या कोई अपना रूम दे दे, तो कोई रूम दे दे तो वो परमानेंट नहीं होता, लेकिन अगर कोई सामुदायिक समाज का कोई सामुदायिक भवन मिल जाए, और लाइब्रेरी भवन टाइप का कोई चीज़ थी नहीं, हम लोग तो कभी भी बचपन से कभी भी, पूरा नौकरी मेरी गुजर गई लेकिन मैं लाइब्रेरी में बैठ कर कभी पढ़ने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि जो हमारा स्टेट लाइब्रेरी चैबासा का है वो बैठने का तो स्थान देता है, लेकिन वो प्रॉपर कॉम्पिटिशन बुक्स उस समय उपलब्ध नहीं थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिला प्रशासन को और सरकार को, उन्होंने बहुत इनिशिएटिव लिया है, और आज के डेट में आधुनिक पुस्तकालय हम चैबासा में देख रहे हैं, और आकाशवाणी के माध्यम से मैं जो मेरे सुन रहे हैं जितने भी युवा भाई बहन हैं, मैं चाहूँगा कि आप सभी राजकीय पुस्तकालय जो हमारे चैबासा में जरूर जाएं, और चैबासा में जितने भी पुस्तकालय हैं उसकी जानकारी रखें
1: जी।
0: और क्योंकि हम लोग को पता है कि चप्पल कहाँ मिलता है, जूता कहाँ मिलता है, सब्जी कहाँ मिलता है, कपड़े कहाँ मिलते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं रहता कि शिक्षा कहाँ कहाँ मिलती है, कहाँ कहाँ निःशुल्क शिक्षा है, कहाँ कहाँ फ्री वाईफाई जोन है जहाँ हम अपने तकनीकी ज्ञान के माध्यम से भी अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, दूसरे को बढ़ा सकते हैं। तो ये सब जानकारी रखना युवाओं को बहुत ज़रूरी है यदि वो जीवन में चाहते हैं कुछ बेहतर करें, और ऐसे भी एक सामान्य जीवन जीने के लिए भी आपको जो है मौलिक शिक्षा लेनी बहुत ज़रूरी है। स्कूल कॉलेज के बाद जो है लाइब्रेरी को ही अपना जो युवाओं को अपना मित्र बनाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि लाइब्रेरीज में अभी दिन पर दिन पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा जा रही है, इसके पीछे एकमात्र कारण यही है कि पुस्तकालय ही है जो युवाओं को सही दिशा दे सकता है, ज्ञान दे सकता है।
1: और शिक्षा का उद्देश्य इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम शिक्षा का लाभ लेने के लिए आज के युवा जो हैं वो कहाँ पुस्तकालय खुला है वो अपने खुद ब खुद चले आ रहे हैं। लेकिन संजय जी, हम एक सवाल आपसे और करना चाहेंगे कि आप जब गांव दूर से दूर गांव में जाते हैं वहाँ पर माता पिता को भी समझाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो उसमें तो कठिनाइयाँ होती होंगी आप लोगों से।
0: एक्चुअली में जैसे हम लोग जब लाइब्रेरी बनाते हैं ना, तो उस समय पहले ग्राम सभा हम लोग करते हैं, किसी गांव में जा करके 2-3 राउंड में 4 राउंड में
1: अच्छा।
0: मीटिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बूढ़े बुजुर्ग सभी लोगों को जो है हम लोग जोड़ते हैं, युवाओं को, मजदूर चाहे मजदूरी करते हैं कुछ, तो जब हम लोग पुस्तकालय बनाते हैं तो उस समय हम लोग उनका उद्देश्य को बताते हैं लोगों को कि अगर पुस्तकालय बनेगा तो क्या होगा, अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे, मालिया अनपढ़ है, बहुत सारे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं उनके माता पिता स्कूल कॉलेज भी नहीं गए, फर्स्ट जनरेशन लर्नर लोग हैं,
1: हाँ।
0: पहला बच्चा है जो स्कूल का दहलीज में गया, ऐसे ऐसे लाइब्रेरीज हैं जो उनके माता पिता स्कूल ही नहीं गए लेकिन उनके बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, तो उनको हम लोग ये कहते हैं कि शिक्षा का महत्व को बताते हैं, और उनसे रिक्वेस्ट सिर्फ यही करते हैं कि बच्चों को जो है कभी भी काम करने के लिए फोर्स मत कीजिए, मदद करेंगे खेती खेत में मदद करेंगे पार्ट टाइम में, लेकिन स्कूल हमेशा भेजेंगे, लाइब्रेरी से हमेशा जुड़े रहेंगे, ये हम लोग उसको रिक्वेस्ट करते हैं। और वो माता पिता भी आज कौन नहीं चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े, लेकिन उस समय में माँ बाप असमर्थ हो जाते हैं जब उनको शिक्षा देने के लिए अतिरिक्त बोझ आ जाता है, जैसे मान लिया मैट्रिक पास कर गया,
1: हाँ।
0: किसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में मेडिकल, लेकिन उसको कॉलेज करना है तो आप शहर जाना

0: कॉलेज से सब जगह ना नहीं, तो वो एक बहुत बड़ा जो है एक चैलेंज होता है माँ बाप के लिए। लेकिन अभी जो सरकार की तरफ से भी बहुत सारे हॉस्टल्स बन रहे हैं, कल्याण के हॉस्टल्स बन रहे हैं और जो सरकारी छात्रावास बन रहे हैं, तो ये बनने से क्या हो गया कि अब अगर बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उनको शहर में जा कर के भी दिक्कत नहीं होने वाला है, प्लस सरकार स्कॉलरशिप भी दे रही है। तो मैंने कुल मिला करके है कि हम लोग ये बताते हैं कि अगर बच्चे पढ़ाई अच्छा करते हैं तो उनको सरकार के साथ साथ समाज भी मदद करेगी, पुस्तकालय मदद करेगी। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देते हैं कि हमारा एक लाइब्रेरी है खसवा का, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में बीटापुर पंचायत के शहर बेड़ा गाँव है जो हाथी एलिफेंट जोन के, तो वहाँ पर लगभग 7-8 गांव के बच्चे लोग आते हैं, लगभग 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर।
1: हाँ।
0: तो वहाँ क्या है कि वो एलिफेंट जोन भी है।
1: अच्छा।
0: तो वहाँ पर अभी देखें कि जब से लाइब्रेरी बना है तो लड़कियाँ जो है काफ़ी उत्साहित है पढ़ाई लिखाई करने में, काफ़ी उत्साहित है पढ़ाई लिखाई करने में, वो लोग अभी मैट्रिक में काफ़ी अच्छा किए हैं, मतलब 80-85-86%। तो अब क्या हो गया कि 2-3 बच्चियाँ जो है बोले कि भाई सर, मैंने अपने माता पिता को बोले कि हम लोग साइंस लेके पढ़ेंगे, तो उनके माता पिता लाइब्रेरी आ गए और बोले कि हम लोग नहीं पढ़ा पाएंगे, कैसे पढ़ा पाएंगे हम लोग, हम बीमार रहते हैं, कोई बोले कि मजदूरी करते हैं या खेती ही साधन है। तो हम लोगों ने लाइब्रेरी की तरफ से वो बच्चियों को जो है मदद किया और आज वो लोग सब ISC में अच्छा 80+% ला करके अभी BA ज्वाइन करके अभी JPSC और UPSC की तैयारी कर रही हैं लड़कियाँ। तो इस तरह के हर लाइब्रेरी में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लाइब्रेरी से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाभ भी मिल रहा है।
1: हाँ।
0: सहयोग भी मिल रहा है, किसी का फॉर्म अगर भरने में दिक्कत हो रहा है तो हम लोग चंदा करके लाइब्रेरी जो है समाज जो है वो करता है। तो इस तरह से जहाँ भी लाइब्रेरी बना है तो ये नहीं कि संजय कच्छप उसको रन कर रहा है, संजय मैं इनिशिएटिव लेता हूँ, मेरी टीम इनिशिएटिव लेती है, लेकिन उसको कम्युनिटी को हम लोग आत्मनिर्भर बनाने में कैसे लाइब्रेरी को सस्टेनेबल मॉडल में लाया जाए, ये हम लोगों का प्रयास रहता है। अभी जितने भी लाइब्रेरी मैक्सिमम जो 5 साल से ऊपर हो गया वहाँ कोई ना कोई अब लड़का लड़की लोग सरकारी नौकरियों में भी आ गए, अब वही लोग उसको जो है खर्च जैसे पेपर मैगजीन हो गया, इंटरनेट का रिचार्ज हो गया, बल्ब फ्यूज हो गया, ये जो बेसिक है या मंथली मैगजीन्स हो गया, तो ये सारा चीज़ वो लोग मेंटेन कर रहे हैं। और हम लोग कभी हम लोग क्या करते हैं कि अगर कंप्यूटर की ज़रूरत है, कंप्यूटर नया लेना है, तो हम लोग उसको फिर उस तरह से रिकॉर्ड ये करते हैं, सहयोग करते हैं। अभी टाटा स्टील फाउंडेशन की तरफ से भी हम लोग लाइब्रेरी ग्रुप को 5 सेट जो है कंप्यूटर प्रिंटर मिला है।
1: हाँ।
0: तो हम लोगों ने अभी जस्ट इंस्टॉल किया है एक शहर बड़ा खसवा में चकद्दरपुर के 3 लाइब्रेरीज में और एक कोक्चो के लाइब्रेरी गाँव में जो है हम लोग उसको।
1: अच्छा।
0: तो ये है सारी चीज़ें, हमारा मॉडल है, हम लोग चाहते हैं कि लाइब्रेरी का ओनरशिप कम्युनिटी के पास हो और ये फुल्ली कम्युनिटी लाइब्रेरी है और यहाँ KG से लेकर के PG के बच्चे पढ़ते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बीच बीच में हम लोग कहीं कहीं कंपटीशन क्लासेस भी शुरू करवाते हैं, इंग्लिश क्लासेस भी शुरू करवाते हैं। अभी मेरे पिताजी का पहला वर्षी था तो मैंने 21 बच्चों को जो अभी आगामी दरोगा का जो वैकेंसी आने वाला है तो उसका ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी दिया। तो इस तरह से हम लोग जो है कुछ जो भावनात्मक चीज़ें जो हैं को भी हम लोग जोड़ करके जो है उसे ज़रूरतमंद बच्चों को लाभ दिलाने का काम कर रहे हैं। हम करते क्या है कि जन्मदिन हुआ तो हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना बर्थडे जो है बच्चों के साथ मनाएँ और जो भी खर्च अगर होता है तो उसको लाइब्रेरी में आप डोनेट कीजिए, या शादी का एनिवर्सरी है आप वहाँ मनाएँ, आप अपने पिताजी के नाम से भी आप गांव में अपना लाइब्रेरी शुरू कर सकते हैं।
1: जी हाँ, कहीं भी हम लोग
0: की यादगार में, जैसे बहुत सारे प्राप्त देखते होंगे कि अपने पूज्य पिताजी की स्मृति में लोग पियाओ बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं,
1: ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी।
0: बहुत, लेकिन अगर पुस्तकालय हम बनाते हैं तो
1: सबके लिए
0: जो है ये, चूँकि पुस्तकालय की कोई जाति या शिक्षा की कोई जाति और धर्म नहीं होती है, तो ज्ञान का मंदिर अगर बनता है तो समाज में जो जो कमियाँ हैं, जो असमानताएं हैं, वो धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाएंगे। तो ये प्रयास जारी है अभी, और अभी मेरी पोस्टिंग पाकुड़ और साहेबगंज क्षेत्र में संथाल परगना में मैं पिछले 3.5 साल से और लगभग 18-20 लाइब्रेरीज मैंने वहाँ शुरू किया है, बहुत सारे विभिन्न हॉस्पिटल्स में, और इसमें बहुत सारे मेरी पूरी टीम का सहयोग है। हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो है लगभग पिछले 10 साल से चला रहे हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें अच्छे अच्छे लाइक माइंडेड पीपल हैं। हम लोग जब भी लाइब्रेरी शुरू करना रहता है तो हम लोग वहाँ से जो है सहयोग भी प्राप्त करते हैं और लोकल कम्युनिटीज़ को भी कहते हैं कि भैया आप 10 रुपया भी 5 रुपया भी जरूर दीजिए, ताकि आपको ये लगना चाहिए कि ये लाइब्रेरी आपकी है और ये आपका ही है।
1: अच्छा संजय जी, हम एक सवाल, मतलब कि आप

0: पर्सनल हम करना चाहेंगे कि बहुत से युवा जो है वो लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं और बहुत जगह उनकी सीट भी खाली रहती है, जैसे आकाशवाणी में भी और स्कूल कॉलेजों में भी और भी बहुत से सारे जगह में। तो उन्हें उस युवा को क्या करना होगा लाइब्रेरियन बनने के लिए?
1: जैसे लाइब्रेरियन बनने के लिए उनको जो लाइब्रेरियन का कोर्स होता है उसको ज़रूर करना चाहिए, उसमें डिप्लोमा भी होता है, आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। तो आप जब करते हैं तो और उसके बाद आप किसी लाइब्रेरी में काम करके अनुभव प्राप्त कीजिए और उसके बाद जब वैकेंसी आती है तो ये जो है उसमें उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और अभी झारखंड में जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि अभी लाइब्रेरी की कोई बहाली नहीं हुई।
0: अच्छा,
1: जिस दिन होगी बम्पर बहाली होगी, क्योंकि यहाँ काफ़ी स्कूल कॉलेजेस हैं तो हम चाहेंगे कि ये बहुत अच्छा फील्ड है, क्षेत्र है, क्योंकि जीवन में जो है आप अगर आपको ऐसा नौकरी मिले जहाँ आप सिर्फ ज्ञान से बातें करते हों या ज्ञान बांटते हों तो इससे बेहतर जीवन नहीं मिल सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा, अगर आपकी रुचि है किताबों की दुनिया में खोने का, कुछ ज्ञान बांटने का, तो लाइब्रेरियन बन के आप जो है बेहतर कर सकते हैं। चूँकि मैं लाइब्रेरियन नहीं हूँ, मैंने कोई कोर्स नहीं किया।
0: अच्छा।
1: लेकिन चूँकि मुझे काम करते करते ये अनुभव हो गया है कि लाइब्रेरी जो है लोगों के जीवन को एक दिशा देने के लिए, एक अच्छा समाज और अच्छा देश बनाने के लिए जो है बेहद ज़रूरी है। और चूँकि गरीबी, अशिक्षा, आज बेरोजगारी, पलायन, ये आज अभी भी जो है हमारे झारखंड के लिए बहुत अभिशाप है, विडम्बना है। हम कहेंगे कि झारखंड इतना सक्षम राज्य है जहाँ 40% से ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं, वन संपदा से भरा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार अपना प्रयास कर रही है। तो हम लोगों को भी जो है ना, समाज के भी जो शिक्षित संपन्न लोग हैं जो हैं, उनको भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मैंने एक प्लेटफॉर्म में आकर के काम करने की ज़रूरत है। हमें सरकार की भी मदद करने की ज़रूरत है, अगर कोई अच्छी एनजीओ काम कर रही है तो उनके साथ भी होने की मदद ज़रूरत है, सिविल सोसाइटीज़ को भी जागृत करने की ज़रूरत है इस क्षेत्र में।
0: जी हाँ, जैसे कि अगर हम लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो उसके लिए शैक्षणिक क्या है?
1: इंटर करने के बाद आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं, इंटरनेट में आप सर्च करेंगे। फिर आपको इग्नू के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट का कोर्स जो है काफ़ी ये है, और बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो है लाइब्रेरियन के लिए पढ़ाई का पाठ्यक्रम जारी करते हैं। तो इसको आप इग्नू के ऑफिस में जा करके और इंटरनेट के माध्यम से।
0: अच्छा, उसका पढ़ाई भी अलग से होता है?
1: हाँ, उसका ये डिप्लोमा है, डिग्री कोर्स होता है, इसको ज़रूर करना चाहिए, ये एक ऑप्शन है। मान लिया जाए जैसे हम ITI करते हैं या अतिरिक्त तकनीकी ज्ञान लेते हैं, तो उसी तरह ग्रेजुएशन के साथ अगर हम इनके भी डिप्लोमा या डिग्री ले लें तो निश्चित रूप से जो है ये हम लोगों को सपोर्ट करेगा आने वाले समय में।
0: जी, और संजय जी, एक युवाओं को आप अंत में संदेश देना चाहेंगे कि नशापान के बारे में?
1: जी, नशापान भी बोलेंगे मैडम और सोशल मीडिया के बारे में बोलेंगे। देखिए, नशापान तो ये कहा जाता है कि दुनिया में आप हर काम कीजिए लेकिन नशापान मत कीजिए, क्योंकि नशा करने के बाद मनुष्य को ये होश नहीं रहता कि क्या सही है क्या गलत है। जब हमको क्या सही है क्या गलत में अगर कोई फ़र्क नहीं हो जाता तो हम एक मनुष्य नहीं होकर के एक बिगड़ा हुआ जानवर के रूप में समाज में आ जाते हैं। और बिगड़ा हुआ जानवर जो है वो दूसरा का नुकसान ही करता है, अपना तो नुकसान करता ही करता है, वो दूसरा का भी नुकसान करता है, समाज को बहुत क्षति होता है। इसीलिए मेरे जितने भी युवा साथी हैं, मुझे विनम्र निवेदन है आप सभी से कि नशा से दूर रहें, नशा से दूर रहें, और सोशल मीडिया जो है, जो इंटरनेट है, उसका सही इस्तेमाल करें। आप अगर स्टूडेंट हैं तो 80% जो है किताब पढ़िए, क्योंकि ज्ञान का मूल स्रोत किताबें हैं। आज के युवा जो है ना किताबों से दूर जा रहे हैं, हर चीज़ को आप गूगल कर रहे हैं, लेकिन आप जान लीजिए गूगल भी जो है किताबों का सहारा ही लेता है, वो हमसे किताबों से ज़्यादा ज्ञानी नहीं है।
0: जी हाँ।
1: और वो डीप नॉलेज भी नहीं देता है कि इंटरनेट है ना, और आपको आने वाले समय में आपको दिग्भ्रमित भी कर सकता है, गलत जानकारी भी दे सकता है।
0: जी।
1: तो इंटरनेट को, मैं ये नहीं कर रहा कि इंटरनेट एकदम आप उसको फॉलो नहीं कीजिए या उसमें ऑथेंटिक चीज़ें नहीं होती, लेकिन आज भी ऑथेंटिक चीज़ जो है वो किताब ही है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट रहेगा कि 80% किताब पढ़िए और 20% जो है इंटरनेट से अपडेट अपने आप को कीजिए सारी चीज़ें, क्योंकि अभी भी जो है किताबें ही ज्ञान का मूल स्रोत है।
0: जी।
1: और नशा से दूर रहिए।

0: कभी भी अगर बाइक चलाते हैं तो हीरो पंती में मत रहिए, हेलमेट पहनिए, सेफ्टी का रूल्स कीजिए, एम्बुलेंस को जाने दीजिए, आगे जाने दीजिए, फायर ब्रिगेड अगर जा रही है तो उनको रास्ता दीजिए, अच्छे नागरिक होने का फर्ज निभाएं, चौक चौराहे में गाली खड़ा फालतू समय मत वेस्ट कीजिए, है ना, सिगरेट नशा पान थैनी से दूर रहिए, है ना, और दूसरों को मदद कीजिए। और एक चीज़ है कि हमारा चैबासा में रक्तदान समूह बहुत सक्रिय है, है ना, हर तीन महीना में रक्तदान कीजिए, इससे आप भी स्वस्थ रहेंगे और समाज में भी जो है रक्त की कमी नहीं होगी, है ना, तो रक्तदान भी कीजिए और अपना जीवन को एक उपदेश दीजिए, और निश्चित रूप से अगर आप अपने जीवन को उपदेश देते हैं तो आप एक सफल जीवन जीने में और दूसरों के लिए भी आप एक मार्गदर्शक के रूप में बन सकते हैं और अपना जीवन को सफल बना सकते हैं। इससे आपके माता पिता को भी गर्व महसूस होगा और समाज भी
1: खुश होंगे,
0: खुशहाल बनेगा।
1: तो संजय जी, आपने बहुत ढेर सारी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आकाशवाणी में जो है मेरे बातों को पहुंचाने के माध्यम से जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए जो आपने जो मुझे मौका दिया है, इसके लिए मैं पूरी आकाशवाणी के धन्यवाद जोहार।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता लाइब्रेरियन मेनसी, भेंटवार्ता का अर्थ है संजय कच्छप, उनसे बातें कर रही थी आशा पिंगवा। इस भेंटवार्ता के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का कार्यक्रम विविधा।

0: ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं दिल जले के इस गीत से, कुमार शानू और आदित्य नारायण के स्वर में।
1: शाम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
2: क्या कहती हो शामू की माँ?
1: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
2: माँ जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है?

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
2: हम बुजुर्ग पहले जब बीमार पड़ते थे तो सबसे बड़ी तकलीफ होती थी अपनों पर बोझ बन जाने की। खर्चों की फिक्र से अपनी बीमारी ही छुपा लेते थे, लगता था ऐसे ही चलेगा। पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की हमारी चिंता और हमें भी दी आयुष्मान की गारंटी, आयुष्मान वह वंदना कार्ड से। आज 70 साल और उससे अधिक आयु के हम जैसे सभी वरिष्ठ नागरिक हैं 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के हकदार।
3: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें, घर बैठे आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

अभी आपने सुना फिल्म चांदनी का ये गीत लता मंगेशकर और बाबला की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म गुदगुदी से कुमार सानू के स्वर में।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम बस कुछ ही देर में।

पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फिल्म में हुना के इस गीत से, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में।

अभी आपने सुना फिल्म मेरे यार की शादी है का ये गीत उदित नारायण, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से। आवाज़ें हैं कुमार शानू और अलका याग्निक की।

अभी आपने सुना कभी खुशी कभी गम का ये गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म मिशन कश्मीर का ये गीत।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 होने को हैं। आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम।

0: महीना चल रहा है और भगवान शिव की भक्ति में डूब करके बहुत ही आनंद आ रहा है हर तरफ।
1: उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता
0: हमारे श्रोता भी बहुत ही अच्छे होंगे। हर तरफ भगवान शिव की भक्ति और जिधर देखिए हरियाली और साथ ही साथ सावन की बहुत ही प्यारी सी रिमझिम बूंदे भी बरस रही हैं, मानो प्रकृति हमें अपनी ओर बुला रही है।
1: और कहते हैं ना, सावन सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि आस्था और उल्लास का मेला है। कहते हैं जैसे सावन की बूंदें प्यासी धरती को तृप्त करती हैं, वैसे ही भोलेनाथ की कृपा हर मन को शांत और पवित्र करती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आबा तुमने।

0: सेवा जोहार। तैयार हो जाइए इतिहास के सबसे बड़े सांस्कृतिक महाकुंभ का गवाह बनने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार लेकर आ रही है झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026। आगामी 9 और 10 अगस्त को रांची का मोराबादी मैदान गूंजेगा 5000 से अधिक लोक कलाकारों, झूमर, छऊ और पारंपरिक जनजातीय प्रस्तुतियों से। महोत्सव में होंगे भव्य उद्घाटन एवं सम्मान समारोह, कला एवं शिल्प प्रदर्शनी, पुस्तक मेला, स्वतंत्रता सेनानी विरासत प्रदर्शनी, चित्रकला प्रदर्शनी, ट्राइबल फैशन शो, रॉक बैंड की शानदार प्रस्तुतियां, इमर्सिव जोन और 700 ड्रोन का भव्य शो, आधुनिक 5D थिएटर और AI तकनीक इस अनुभव को और भी यादगार बनाएंगे।
1: यहां मिलेगा पारंपरिक जनजातीय खानपान, आदिवासी व्यंजन प्रतियोगिता, आकर्षक हस्तशिल्प, नॉलेज पार्टनर्स और लेखकों से संवाद का अवसर। सब परिवार आइए और अपनी संस्कृति के रंग में घुल जाइए। अपनी परंपरा और अपनी पहचान का उत्सव गर्व के साथ मनाइए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
0: सेवा जोहार। तैयार हो जाइए इतिहास के सबसे बड़े सांस्कृतिक महाकुंभ का गवाह बनने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार लेकर आ रही है झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026। आगामी 9 और 10 अगस्त को रांची का मोराबादी मैदान गूंजेगा 5000 से अधिक लोक कलाकारों, झूमर, छऊ और पारंपरिक जनजातीय प्रस्तुतियों से। महोत्सव में होंगे भव्य उद्घाटन एवं सम्मान समारोह, कला एवं शिल्प प्रदर्शनी, पुस्तक मेला, स्वतंत्रता सेनानी विरासत प्रदर्शनी, चित्रकला प्रदर्शनी, ट्राइबल फैशन शो, रॉक बैंड की शानदार प रस्तुतियां, इमर्सिव जोन और 700 ड्रोन का भव्य शो, आधुनिक 5D थिएटर और AI तकनीक इस अनुभव को और भी यादगार बनाएंगे।
1: यहां मिलेगा पारंपरिक जनजातीय खानपान, आदिवासी व्यंजन प्रतियोगिता, आकर्षक हस्तशिल्प, नॉलेज पार्टनर्स और लेखकों से संवाद का अवसर। सब परिवार आइए और अपनी संस्कृति के रंग में घुल जाइए। अपनी परंपरा और अपनी पहचान का उत्सव गर्व के साथ मनाइए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा हित में जारी।
3: विराम के बाद आप सभी श्रोताओं को स्वागत है जोहार रांची में। तो आभा, अब जल्दी से हम पलट लेते हैं इतिहास के पन्ने और देखते हैं आज के दिन में इतिहास हमारे लिए क्या लेके आया है।
4: बिल्कुल, तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में 8 अगस्त के दिन का एक खास महत्व है। इतिहास के पन्ने पलटे तो हम जानेंगे महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए कई अहिंसक आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिसमें 8 अगस्त 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था।
3: बहुत अच्छी जानकारी दी तुमने आभा। और 8 अगस्त 1509 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य के सम्राट के रूप में महाराज कृष्णदेव राय की ताजपोशी हुई थी। 1549 को आज ही के दिन फ्रांस ने इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा भी की थी।
4: और बात करें सन 1609 की, तो आज ही के दिन वेनिस की सीनेट ने गैलीलियो द्वारा तैयार दूरबीन का निरीक्षण किया और 1763 को संघर्ष के बाद अंततः कनाडा फ्रांस के अधिकार से स्वतंत्र हुआ था। और बात करें 1864 की, तो आज ही के दिन जिनेवा में रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी।
3: 1876 ईस्वी में आज ही के दिन थॉमस अल्वा एडिसन ने मिमियोग्राफ का पेटेंट कराया था। 8 अगस्त 1899 को एटी मार्शल ने रेफ्रिजरेटर का पेटेंट कराया था।
4: और वर्ष 1900 में बोस्टन में पहली बार डेविस कप श्रृंखला की शुरुआत हुई थी। और 1919 में आज ही के दिन ब्रिटेन ने अफगानिस्तान की आजादी को मंजूरी दी थी।
3: इसी सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आज के दिन 8 अगस्त 1940 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय समर्थन पाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें पहली बार भारतीयों के लिए संविधान निर्माण के अधिकार को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया था। 1992 ईस्वी में स्पेन के बार्सिलोना में 25वें ओलंपिक खेलों का समापन भी हुआ था।

0: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
0: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्मिक का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार रांची। अब इतिहास में अब चर्चा उनकी जिनकी

0: अपनी शैली के लिए पूरी दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध थी।
1: और दिलीप सरदेसाई जो एक भारतीय क्रिकेटर हैं, इनका जन्म भी 1940 को हुआ। 1941 में लता देसाई का जन्म हुआ, जो भारतीय राज्य गुजरात की प्रसिद्ध महिला चिकित्सक हैं। और 1942 में बलबीर सिंह खुल्लर का जन्म हुआ, जो भारतीय हॉकी टीम के पूर्व सदस्य थे।
0: प्रसिद्ध भारतीय वकील और राजनीतिज्ञ कपिल सिब्बल का जन्म भी आज ही के दिन सन 1948 ईस्वी में हुआ था। वे वर्तमान में संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, साथ ही वे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सुधाकर राव भारतीय क्रिकेटर, 1952 में इनका जन्म हुआ। और 1955 में राजीव महर्षि इस दुनिया में आए, जो भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक हैं।
1: और 1975 में जॉन बारला का जन्म हुआ, ये बीजेपी के राजनीतिज्ञ हैं। 1994 की बात करें तो 8 अगस्त को मीराबाई चानू का जन्म हुआ, जो प्रसिद्ध भारतीय वेट लिफ्टर हैं।
0: मतलब आज के दिन काफी प्रसिद्ध हस्तियों का जन्म हुआ है। सभी को जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं।

0: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
0: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: तो चलो आभा, आप बातें कर लेते हैं हम मौसम की, तो अपने श्रोताओं को कुछ जानकारी दे दें।
3: तो मौसम विभाग की ओर से अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी के बीच जल संसाधन विभाग ने भी हाई अलर्ट जारी किया है। विभाग ने निचले

0: जिसे भर दिया है, तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है इस आंकड़े में थोड़ा बदलाव भी हो, और अच्छी बारिश होना तो बहुत जरूरी ही है हमारे किसानों के लिए,
1: हाँ
0: फसलों के लिए और हमारे लिए भी।
1: और सावन का महीना है तो बारिश का मजा और ये गाने का मजा लीजिए, है ना?
0: बिल्कुल।
2: का मही

0: इस प्यारे से गाने के बाद अब जोहार रांची कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ एक समस्या की।
1: बिल्कुल
0: हो सकता है हमारे श्रोतागण भी इस समस्या से रूबरू हो रहे हों, क्योंकि आजकल ये चीज़ ना बहुत आम हो गई है।
1: बिल्कुल, इन दिनों छोटे बच्चों में गुस्सा, चिड़चिड़ापन और बेचैनी की समस्या तेजी से बढ़ रही है। अक्सर माता-पिता इसे अनुशासन या व्यवहार से जुड़ी समस्या मानकर डांट फटकार का सहारा लेते हैं, जबकि कई बार इसके पीछे पोषण संबंधी कारण भी होते हैं। भोजन में पोषक तत्वों की कमी से बच्चों में थकान, एकाग्रता की कमी, बेचैनी और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। इसलिए बच्चों के खाने में आप क्या दे रहे हैं इसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। उनके भोजन में प्रोटीन, विटामिन, हरी साग सब्जियां, दाल, मौसमी फल जरूर खिलाएं और हर दिन सही मात्रा में पानी पीने की भी आदत डालें, क्योंकि बच्चे अक्सर पानी कम पीते हैं, है ना?
0: मैं ये तो काफी मतलब अलग टाइप की जानकारी हुई, क्योंकि सही में जब बच्चे कुछ लड़ते झगड़ते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं या चिड़चिड़ाते, तो हमें बहुत ही गुस्सा आता है कि पता नहीं लगता है हम ठीक से उन्हें पालन पोषण कर रहे हैं कि नहीं,
1: और
0: या
1: ये
0: कहीं
1: अक्सर जो
0: से
1: है ये हर घरों
0: हर
1: में
0: रूम में
1: देखने
0: देखा
1: मिल रहा
0: जाता
1: है।
0: है। तो हम
1: हाँ
0: लोग लगा लेते हैं अनुमान कि स्कूल से कुछ सीख के आ रहे हैं या उनमें गंदी आदतें पनप रही हैं, और हम सही में उन्हें डांटने लगते हैं या कई कई बार मारते पीटते भी हैं। लेकिन तुमने एक अच्छी जानकारी दी कि ये खाने की वजह से भी हो सकता है, लेकिन इन सब में एक और चीज है ना जो उनके मस्तिष्क पर असर डाल रही है, वो है स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम चाहे वो लैपटॉप के साथ बिता रहे हो, चाहे टीवी, चाहे मोबाइल, और आजकल तो सबसे ज्यादा बच्चे
1: मोबाइल।
0: मोबाइल ही यूज कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि मोबाइल की जगह आप उनके साथ समय बिताएं, उनके साथ खेलें, जिससे उनमें अपनेपन और प्यार की भावना आए। और सही पोषण केवल शरीर ही नहीं मन को भी शांत बनाता है। ठीक है, हमारे लिए बहुत ही थोड़ा टफ भी लगता है, माओ के लिए तो आजकल अक्सर बहुत ही टफ हो जाता है कि घर के काम इतने होते हैं कि बच्चे के साथ अलग से समय देना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर हम थोड़ा सा समय अतिरिक्त दे दें उन्हें, काम तो होते रहेंगे, थोड़ा सा भी अगर दे दें तो आपका बच्चा जो है स्क्रीन टाइम से बच जाएगा, और ये जो उनमें इस तरह की जो झल्लाहट आ रही है ना, उससे वो बच जाएंगे।
1: हाँ बिल्कुल, और उनका जो मतलब अगर वातावरण सही रहेगा, अगर घर का वातावरण
0: सही
1: सही है,
0: रहेगा
1: तो बच्चे
0: तो
1: का जो पालन पोषण है वो भी सही होता है।
0: एक स्वस्थ बच्चा भी रहेगा।
1: हाँ।

0: बातें करते करते हम आ गए हैं कार्यक्रम के समापन की ओर। श्रोताओं, आज हम आपसे जल्दी विदा लेंगे, तो अब कुछ जाने से पहले कुछ बातें श्रोताओं से कर लेते हैं। दोस्तों, हर मोड़ पर, हर एहसास में जीवन रंगों की एक अनकही कहानी बुनती है। हर भावना, हर रिश्ता, हर ख्वाहिश अपने ही रंगों में भींगा हुआ है और हमारे जीवन को पूर्ण बनाता है।
1: कभी ठहरे पानी सा शांत, तो कभी लहरों सा बेकाबू। बस यही तो है जीवन के रंगों का जादू। तो हमेशा सुख दुख के साथ हंसते मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम से आभा और
0: रजनी को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार,
0: जोहार।

आकाशवाणी रांची से आइए सुनते हैं 12वीं राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस पर रेडियो रिपोर्ट। संकलन एवं वाचन हिमांशु शेखर का, प्रस्तुति प्रभूषण।

0: तो आइए इस पहचान को और एक नया दिशा में लेके जाए, नई तरह से हम लोग अपना उम्मीदों को नई तरह से बुनने का कोशिश करें, ताकि आने वाले पीढ़ी हमको याद रखे कि हाँ, हमारे झारखंड में बुनाई का कार्य इतना अच्छे से चल रहा है और आने वाले पीढ़ी भी इस बुनाई कार्य को अपना जीविका के रूप में आलिंगन करके अपना प्रोफेशन को आगे बढ़ाएंगे। नया जो स्कीम आने वाले है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। जैसे झारखंड में आप सभी को पता होगा, फिर भी आपके सूचना के लिए बताना चाहेंगे, यहाँ पर लगभग 22,000 के आसपास हमारा बुनकर भाइयों और बहनों काम कर रहे हैं, जिसका एक बहुत बड़ा संख्या जो है ये गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हैं। गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में सतर का वो लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा रामगढ़ है, रांची है, दुमका है, साहिबगंज है, इन जिलों में भी मुख्य रूप से बुनाई का काम कर किया जा रहा है। और अगर पूरा भारत में देखा जाए तो पूरा भारत में हम लोग लगभग 35 लाख बुनकर अपना जीविका से निर्वाह कर रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा हिस्सेदार जो है वो आसाम में काम करते हैं। लगभग 11 लाख के आसपास आसाम में काम करते हैं। तो एनएसटीपी स्कीम का जो मुख्य उद्देश्य है, बुनकरों को और कैसे लाभ प्रदान किया जा सकता है ताकि अपना बुनाई का जो जीविका है वो उस जीविका में जुड़े रहे। तो जो एससीडीबी प्रोग्राम है उसमें क्लस्टर बेस पे होता है। क्लस्टर मतलब एक समूह जहाँ पर कम से कम 5-6 गांव को लेकर के क्लस्टर बनाया जाता है, जहाँ पर 200 के आसपास बुनकर रहते हैं और 2 करोड़ तक उसका प्रावधान है, जिसमें मैक्सिमम जो है उनका हथकरघा एवं हथकरघा अन्य उपकरण खरीदने में दिया जाता है। कर का जो वितरण उसमें 90:10 रेशियो में दिया जाता है, जिसमें 90% जो है भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है एवं 10% जो है बुनकरों को अपना देने पड़ता है।
1: इस दौरान राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास निगम लिमिटेड के उप महाप्रबंधक शुभोजीत दास ने अपनी बातों से लोगों को अवगत कराया।
2: नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट का मुख्य कार्यक्रम यही है कि भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय का एक योजना चालू है बुनकरों के लिए, जो कच्चा माल यानी कि जो धागा होता है बुनने के लिए, ये धागा रियायती दरों में सब्सिडी देके ये धागा का सप्लाई किया जाता है। तो आशा करते हैं बुनकर समाज में एनएसजीपी का नाम कोई ना कोई जानते हैं, और अगर जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं जो नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि एनएसजीपी के बारे में नहीं जानते होंगे, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम का एक पेज है जिसमें रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम, जो भारत सरकार का जो स्कीम है, ये जो स्कीम के बारे में दिया गया है, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को धागा का सप्लाई किया जाएगा और धागा के सप्लाई में सरकार से सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। आज जो 12वां नेशनल हैंडलूम डे है, ये शुरू हुआ था 1905 को कोलकाता में, जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, और इसी दिन को याद रखते हुए एवं बुनकर समाज को बढ़ावा देने के लिए, उत्साह प्रदान करने के लिए यही दिन को सिलेक्ट किया गया है। और इसी दिन में आप लोगों को सबको मिला के हम लोग ये जो सभा करते हैं इसमें सबको उत्साहित किया जाता है। तो मेरा ये आशय रहेगा आप इसी के साथ जुड़े रहिए, बुनकर बुनाई और इसी काम में आप लोग जुड़े रहिए, अगला पीढ़ी को भी आप लोग उत्साहित कीजिए इसमें आने के लिए।
1: इस मौके पर हस्तकरघा रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय के विशेष कार्य पदाधिकारी अमित कुमार ने कहा,
3: स्थितियां बदलने वाली हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, राजस्थान जैसा प्रदेश, वहाँ के बुनकर और हस्तशिल्प के कलाकार 8,442 करोड़ रुपए का सिर्फ विदेशों में सामान भेजे थे, उनका कुल बिक्री कितना होगा आप सोच लीजिए। झारखंड में आपको लगता है कि आपके काम की कदर हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपके द्वारा जो सिल्क की साड़ियाँ बनाई जाती हैं वो डिमांड झारक्राफ्ट में पूरा नहीं हो पा रहा है, इतना अधिक डिमांड है। और अब जब केंद्र सरकार, चूंकि भुवनेश्वर की बैठक में ये हुआ कि सभी राज्यों ने बोला हमारे बुनकरों को बढ़िया बाजार नहीं मिल पा रहा है, फॉरेन का मार्केट नहीं मिल पा रहा है, विदेशों का मार्केट, दुबई, संयुक्त राज्य अमीरात या मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं, यूरोप के देश हैं, डिमांड है लेकिन मार्केट तक पहुंचने का व्यवस्था नहीं था। उसके बाद लगातार

0: करने के बाद में केंद्र सरकार ने लिखा है कि 200 बिलियन डॉलर का मार्केट है जिसको अचीव करने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों के साथ जो भी पहले हम लोग कदम से कदम नहीं मिला पाए या, लेकिन अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। मेरा मानना है कि अब नई सुबह की शुरुआत होने वाली है।
1: कार्यक्रम में बोलते हुए हस्तकरघा रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय की निदेशक श्रीमती प्रीति रानी ने अपने उद्गार व्यक्त किए।
2: आप लोग सब लोग परिचित होंगे कि स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ था, नहीं तो मैं थोड़ा तो बताना चाहूंगी। उसमें हम लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था और स्वदेशी को अपनाया था। उसमें सबसे प्रमुख क्या चीज का क्या किया था, विदेशी कपड़ों का, और हमारे जो अपना देश के हस्तकरघा से निर्मित कपड़ा था उसको हम लोगों के द्वारा अपनाया गया था। और वो लड़ाई ऐसी लड़ी कि हम लोग पड़ता उससे वहां से स्वतंत्र हो गए। तो आप समझिए कि पुरुष की कितनी भूमिका रही है। और आपकी जो ये चरखा और हस्तकरघा है ये केवल वस्त्र बनाने के माध्यम नहीं रहे, हमें स्वतंत्रता दिलाने के समय में बहुत बड़े हथियार के रूप में काम किया है। तो आप इसी ये याद को ध्यान में रखते हुए ये राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस मनाया जा रहा है। मैं सबसे ये आग्रह करूंगी कि हम लोग अपने जो हस्तकरघा स्वदेशी कपड़ों का हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, क्योंकि इसमें जो हमारे बुनकर का मेहनत और लगन और प्यार छिपा हुआ है वो हमारे, और इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है। वह जो हम बाहर से कपड़े मंगाते या पहनते उसमें वो नहीं रहता है, और इससे हमारे बुनकर जो है उनको एक पहचान मिलेगा, उनकी आजीविका बढ़ेगी और उनको मजबूती प्रदान होगा। अगर हम झारखंड राज्य की बात करते हैं तो हमारा यहाँ झारखंड में भी जो हमारे हजारों बुनकर एवं शिल्पकार हैं जिनके पास बहुत बड़ी कला है, और वह अपनी कला से न केवल आजीविका अर्जित करते हैं बल्कि झारखंड की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थापित करते हैं। हमारी सरकार बुनकर एवं शिल्पकार के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हम लोग आज इसी कड़ी में सबको बुलाए क्योंकि हम लोग का ये मानना है कि हमारे जो भी हस्तकरघा के से समर्पित लोग हैं या बुनकर के लोग हैं वो हमारी योजनाओं को नहीं जान पा रहे हैं, और जितना लाभ लेना चाहिए जितनी योजना है उससे वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो आज का ये विशेष प्रयास है कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारी योजनाओं से जुड़े, और न केवल राज्य सरकार की योजना बल्कि केंद्र सरकार की योजना से भी लाभ उठाएं। हम लोग इसी क्रम में बुनकर को पहचान दिलाने के हिसाब से अभी भारत टैक्स में भी भागीदारी निभाई गई थी, जिसमें उद्योग विभाग ने हमारे झारखंड पवेलियन को बनाया था। उसमें हम लोग जो जितने भी GI टैग मिले थे उनका प्रदर्शन किए थे। साथ में निदेशालय के द्वारा, हस्तकरघा निदेशालय के द्वारा वहाँ लूम स्थापित किया गया था, उस पे महिलाएं अपना लूम पे कैसे कपड़ा बुनाई करती इसको प्रदर्शित किया गया था, और इसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफी प्रशंसा मिली थी।
1: 12वें राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस के मौके पर हमने कई बुनकरों से उनके विचारों को जाना।
3: मेरा नाम शाह मोहम्मद है, मैं हजारीबाग जिला से है, बड़काव ब्लॉक नयाटांड पंचायत से है, और मेरे यहाँ आज हम लोग 2011 से हम हैंडलूम से है हस्तकरघा, और वहाँ मेरे यहाँ करीब 100 महिला बुनकर हैं और काम तो चल रहा है, लेकिन हम बुनकर एक परेशानी है। हम लोग कपड़ा अपना लाते हैं लेकिन यहाँ कपड़ा फिनिशिंग सेंटर जो है पॉलिश वगैरह होता है छिलाई वगैरह का, वो मशीन झारखंड नहीं है। आज झारखंड भले अलग हो गए अपने झारखंड में, ये मशीन नहीं होने की वजह से बुनकर बिल्कुल अंधार में है। हम लोग का ऐसा कोई रोजगार नहीं है, कपड़ा बहुत महंगा, कॉटन कपड़ा महंगा है, और महंगा कपड़ा बिकता नहीं है, तो रोजी रोटी चलाना भूल है। इसलिए मैं हर हेमंत सोरेन से मैं कहता हूँ कि हस्तकरघा का मतलब जो भी है फिनिशिंग सेंटर एक जाता है वो मशीन कहीं भी उपलब्ध कर दे, हजारीबाग में, रांची में, कहीं उपलब्ध करे, हम बुनकरों को सुविधा होगा, अपना अपना भी प्रोडक्ट हम कपड़ा फिनिशिंग करवा के हम अपना कारोबार भी करें। वो मशीन ना होने की वजह से आज हम लोग अंधे हैं।
1: इसलिए जैसा कि आपने बताया कि पिछले 15 सालों से इस व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं, तो क्या कुछ अनुभव रहा आपका, और आने वाले बुनकर साथियों के लिए क्या कुछ संदेश देना?
3: ये है कि आज हम लगभग 14 साल लगभग हो, लेकिन हम जहाँ कहीं हैं क्योंकि हमारे पास सुविधाओं का वैसा रोजगार नहीं हो पा रहा, रोजगार तो बहुत।
4: जी मेरा नाम फरहाना खातून है, मैं बुनकर का काम करती हूँ। इसमें हमारे यहाँ काफी महिलाएं जुड़ी हुई हैं हजारों की संख्या में। हम लोग पूरे जिला स्तरीय हमारा समिति है, हम लोग काफी मन से काम करते हैं बुनकर का, लेकिन जो हम लोग को मिलना चाहिए वो हम लोग को मिल नहीं पाता, इससे हम लोग बहुत निराश और उदास है।
1: यहाँ आपसे जानना चाहूंगा कि कितने से इस क्षेत्र से इस व्यवसाय से जुड़े और क्या अनुभव रहा है अब तक?
4: जी दौड़ से जुड़े हुए हैं, और जो है कि अपना अपना देश अपना, यानी सूती कपड़ा पहनने में जो ये होता

0: आराम मिले जिस्म को, वो कोई कपड़ा में नहीं है। लेकिन हमारे लोग फैंसी के वजह से लोग पॉलिएस्टर कपड़ा में चले जाते हैं धमक में, वो चमक धमक में लोगों को नहीं जाना चाहिए। जो हमारा बुनकर काम है, या बिस्तर आप चाहिए या आप टॉवल लीजिए, जो बुनकर का टॉवल है जितना अच्छा से सूखता है, कोई आप फैंसी टॉवल में नहीं ना है। चादर में आप तो ये आराम मिलेगा, बहुत आराम मिलता है। हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और हमारे जितने भी हिंदुस्तानी लोग हैं इन सबसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप माटी अपना रहे, जो हमारे गांधी जी बोल के गए हैं, बहुत सोच समझ के बात बोले थे कि अपना सूती कपड़ा स्वस्थी कपड़ा ये इस्तेमाल करना चाहिए, इसी आराम होता है।
1: आने वाले पीढ़ी को इस क्षेत्र में आने के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी, कैसे उन्हें प्रेरेंगी?
0: जी, आने वाले पीढ़ी को भी मैं यही कहूंगी कि आप हमारे जो बुनकर हैं, जैसे हम लोग भी पीढ़ी बाई पीढ़ी आ रहे हैं, पापा दादा ये सब करते थे, हमारे जो अबू जी हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे दादाजी हैं, ये लोग सब करते हैं। हम लोग को एक तो बोला जाए कि घर में हम लोग एक शौक होता था, जो सबसे कुछ होता था ना, जो हैंडलूम चलने का एक शौक, हम लोग शौक से हम करते थे। हम लोग जब छोटे छोटे थे, हमारे पिताजी दादा तो बुनकर का था, हम लोग शौक को काम सीखते थे और करते थे। इसी तरह से हमारे पीढ़ी भी काम को संभाले कि ये पड़े आने वाले जनरेशन के लिए, हमारे आने वाले पीढ़ी भी ये काम को मन से और इसे काम को बहुत लगन से करें। मैं बहुत बहुत बेनिफिट भी है
1: और हमारे रोजगार भी है,
0: हमारा रोजगार भी है, हमारा दो रोटी इसमें मिला भी है। लेकिन वही सरकार से भी रिक्त है कि बुनकर को आप ध्यान दीजिए।
2: नहीं, जमाना से ये बुनकराई का काम करते आ रहा है, लेकिन बुनकराई करते करते थक गया, दुनिया से चले गए, लेकिन बुनकराई में आज तक कहीं कुछ हुआ नहीं। इसलिए नहीं हुआ कि हम लोग डिजाइन पर प्रयास नहीं किए। आप लोग बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि डिजाइन में लाइए, मार्केट डिजाइन से ही पकड़ाता है। तो सर, डिजाइन भी हम लोग नहीं जानते हैं, जो बात नहीं है, डिजाइन भी हम लोग कर लेंगे। आप लोग मार्केट देने का कृपया किए कि हम लोग डिजाइन बनाएंगे, डिजाइन कपड़ा अच्छा से अच्छा होगा।
1: धन्यवाद ज्ञापन दिया उद्योग विभाग के उप उद्योग निदेशक राजीव रंजन जी ने।
3: हमारे बुनकरों की मेहनत, उनकी कला, उनकी परंपरा और उनके उज्ज्वल भविष्य के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हमें विश्वास है कि सरकार, विभाग, उद्योग जगत एवं समाज के संयुक्त प्रयासों से झारखंड का हस्तकरघा क्षेत्र नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। नए उद्योग विभाग, हस्तकरघा, रेशम निदेशालय, आयोजित समिति, सभी अधिकारी और कर्मचारी, मीडिया बंधु तथा इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले प्रत्येक सहयोगी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। अंत में मैं आप सभी सम्मानित अतिथियों का पुनः हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने अमूल्य समय से इस कार्यक्रम को गौरवान्वित किया।
1: इस तरह संपन्न हुआ 12वीं राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस पर बाह्य ध्वनांकन पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट। संकलन एवं वाचन हिमांशु शेखर, प्रस्तुति प्रभु शरण।
4: अभी आप सुन रहे थे 12वीं राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस पर रेडियो रिपोर्ट। संकलन एवं वाचन था हिमांशु शेखर का, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। आकाशवाणी रांची से अगला कार्यक्रम आपकी पसंद कुछ ही पलों में।

सुनने वाले सभी श्रोताओं को आभाका नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे और आपके सबसे पसंदीदा शो आपकी पसंद में। तो हो जाइए तैयार अपने पसंद के गाने को सुनने के लिए। तो चलिए सबसे पहली फरमाइश के साथ शुरुआत करते हैं फिल्म दिल तुझको दिया से, लता मंगेशकर की आवाज में। गीत और संगीत राजेश रोशन का, और इस गीत को सुनना चाहते हैं औरंगाबाद से किरण सिंह, अविनाश सिंह और संगीता सिंह। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से हैं नरेन नेताम और कुसुम नेताम।

बहारों का मौसम और उस पर मधुर संगीत सुनने का मजा ही कुछ और है। तो चलिए कारवां को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक और रोमांटिक और दिल को छू लेने वाला गीत, जिसे पसंद किया है सिकंदराबाद से हैं किरण कुमार गगन पुत्र, और बिहारी कॉलोनी महामुंद से हैं वली उल्ला फकीर, डब्लू उल्ला फकीर, परवीन आसमा फकीर। आवाज़ है अरिजीत सिंह की, संगीत शारिब और तोशी का, रचना AM तुराज और असीम शिराजी की। फिल्म का नाम है जैकपॉट।

उम्मीद है श्रोताओं गीतों का सफर आपको पसंद आ रहा होगा। आकाशवाणी रांची पर आपकी पसंद का सिलसिला अभी थमा नहीं है। छोटे से अंतराल के बाद हम लौटते हैं कुछ और

0: بہترین نغموں کے ساتھ. بنے رہیے میرے ساتھ.
1: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश.
2: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है. झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है. सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है. भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो. धन्यवाद. जोहार, जय भोले.
1: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं. आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण. इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी. सेवा जोहार, तैयार हो जाइए इतिहास के सबसे बड़े सांस्कृतिक महाकुंभ का गवाह बनने के लिए. माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार लेकर आ रही है झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026. आगामी 9 और 10 अगस्त को रांची का मोराबादी मैदान गूंजेगा 5000 से अधिक लोक कलाकारों, झूमर, छऊ और पारंपरिक जनजातीय प्रस्तुतियों से. महोत्सव में होंगे भव्य उद्घाटन एवं सम्मान समारोह, कला एवं शिल्प प्रदर्शनी, पुस्तक मेला, स्वतंत्रता सेनानी विरासत प्रदर्शनी, चित्रकला प्रदर्शनी, ट्राइबल फैशन शो, रॉक बैंड की शानदार प्रस्तुतियां, इमर्सिव जोन और 700 ड्रोन का भव्य शो, आधुनिक 5D थिएटर और AI तकनीक इस अनुभव को और भी यादगार बनाएंगे.
3: यहां मिलेगा पारंपरिक जनजातीय खान पान, आदिवासी व्यंजन प्रतियोगिता, आकर्षक हस्तशिल्प, नॉलेज पार्टनर्स और लेखकों से संवाद का अवसर. सब परिवार आइए और अपनी संस्कृति के रंग में घुल जाइए. अपनी परंपरा और अपनी पहचान का उत्सव गर्व के साथ मनाइए. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी.
0: एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम आपकी पसंद में. दोस्तों, हर गाने के पीछे एक कहानी होती है और आपकी कहानियों से ही तो यह आपकी पसंद खास बनती है. हमारे अगले श्रोता है दुबिहा नवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय. ये लिखते हैं यह गाना उनकी जिंदगी का सबसे यादगार पल है और ये गाना उन्हें काफी पसंद है. आवाजें हैं अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की और फिल्म है क्या यही प्यार है. जलीस शेरवानी के शब्दों को संगीत दिया है साजिद वाजिद ने.

हमारे अगले श्रोता हैं लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर। ये लिखते हैं किसी भी फिल्मी गीत में हमें शामिल करें, तो चलिए इन्हें सुनवाते हैं फिल्म सनम बेवफा का ये गीत। इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ दी है, रचना सावन कुमार टाक का, संगीत माहेश किशोरे का।

कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए फिल्म क्रिमिनल से आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की, संगीत MM करीम का और गीतकार हैं इंदिवर। गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लचनपुर से विश्वनाथ साहू और मावली सिंगापुर से हैं सालिक पुजारी।

0: जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। सखियों को राखी का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत भी कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। कार्यक्रम के इस सफर में एक और सखी है हमारे साथ, जिनकी आवाज तो मीठी और प्यारी है ही, साथ ही साथ उनकी मुस्कुराहट भी बड़ी ही खूबसूरत है। तो बहनों, आपके साथ हैं हमारी प्यारी रेडियो सखी मधु।
1: स्वीकार कीजिए सखियों अपने रेडियो सखी मधु का भी प्यार भरा नमस्कार, अभिवादन और अभिनंदन। कार्यक्रम है आपका अपना गृहलक्ष्मी, क्योंकि यही तो वह कार्यक्रम होता है जहां आप होती हैं, हम होते हैं और होती है ढेरों जानकारी भरी बातें।
0: सखियों, आज 8 अगस्त है। आज हमारे देश ने भारत छोड़ो आंदोलन के 84 वर्ष पूरे किए हैं। इसे अगस्त क्रांति कहा जाता है।
1: बिल्कुल राखी, जानती हैं सखियों, इतिहास के पन्नों में कुछ तारीखें ऐसी दर्ज होती हैं जो सिर्फ दिन या साल नहीं होती बल्कि किसी राष्ट्र की नियति और चेतना का मोड़ बन जाती हैं। और आज का दिन भी ऐसा ही खास दिन हम सभी भारतवासी के लिए है।
0: सही कहा मधु तुमने। 8 अगस्त 1942 का वह ऐतिहासिक दिन था जब मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में एक पुकार उठी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी, और वो पुकार थी भारत छोड़ो।
1: बिल्कुल, द्वितीय विश्व युद्ध का वह दौर था राखी, जब पूरा देश औपनिवेशिक शासन के दमन चक्र से पीड़ित और आक्रोशित था। तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को एक नया दिशा निर्देश दिया था।
0: हाँ सखियों, ऐसे समय में गांधी जी ने ना सिर्फ एक नारा दिया बल्कि हर भारतीय के दिल में आजादी की ज्वाला प्रज्वलित कर दी, करो या मरो की।
1: गांधी जी ने इस आह्वान का मतलब स्पष्ट किया था, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, लेकिन गुलामी का यह कलंक अब और नहीं सहन कर सकेंगे।
0: ऐसे में ब्रिटिश हुकूमत इस जन आक्रोश से इतनी बौखला गई थी कि 9 अगस्त के तड़के ही गांधी जी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और तब के कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था।
1: बिल्कुल राखी, तब अंग्रेजों को लगा था कि नेतृत्व को जेल में डालते ही आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन उनका अंदाजा बिल्कुल गलत साबित हो गया था।
0: नेता तो गिरफ्तार किए जा चुके थे पर नेतृत्व अब भारत की जनता के हाथों में था। ये आंदोलन बिना किसी केंद्रीय नेतृत्व के भी इतिहास का सबसे बड़ा जन आंदोलन बन चुका था।
1: अरुणा आसिफ अली जैसी वीरांगना ने मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर युवाओं में नया जोश भर दिया। वहीं उषा मेहता ने गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाकर देश के कोने कोने तक क्रांति का संदेश पहुंचा दिया।
0: गांव, शहर, खेत खलियान, गली मोहल्ले, हर जगह तब एक ही आवाज गूंज रही थी सखियों, अंग्रेजों भारत छोड़ो।
1: छात्रों ने तब पढ़ाई छोड़ दी, वकीलों ने अदालतें और सरकारी कर्मचारियों ने अपने पद का त्याग कर दिया। उत्तर प्रदेश के बलिया, महाराष्ट्र के सतारा और पश्चिम बंगाल के तामलुक जैसे क्षेत्रों में तो जनता ने अपनी समानांतर सरकारें तक स्थापित कर ली थी।
0: हाँ मधु, इस आंदोलन ने ये साबित कर दिया था कि जब पूरी देश की जनता आजादी का संकल्प ले लेती है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे गुलाम नहीं रख सकती।
1: बिल्कुल, भारत छोड़ो आंदोलन सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है, ये तो हमारी उस अमर जिजीविषा, एकता और आत्मसम्मान का प्रतीक है जिसकी नींव पर आज का स्वतंत्र और सशक्त भारत खड़ा हुआ है।
0: आज जब हम आजादी की खुली हवा में सांस लेते हैं तो हमारा यह कर्तव्य बनता है बहनों कि हम उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
3: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
0: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। सेवा जोहार, तैयार हो जाइए इतिहास के सबसे बड़े सांस्कृतिक महाकुंभ का गवाह बनने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार लेकर आ रही है झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026। आगामी 9 और 10 अगस्त को रांची का मोराबादी मैदान गूंजेगा 5000 से अधिक लोक कलाकारों, झूमर, छऊ और पारंपरिक जनजातीय प्रस्तुतियों से। महोत्सव में होंगे भव्य उद्घाटन एवं सम्मान समारोह, कला एवं शिल्प प्रदर्शनी, पुस्तक मेला, स्वतंत्रता सेनानी विरासत प्रदर्शनी, चित्रकला प्रदर्शनी, ट्राइबल फैशन शो, रॉक बैंड की शानदार प्रस्तुतियां, इमर्सिव जोन और 700 ड्रोन का भव्य शो, आधुनिक 5D थिएटर और AI तकनीक इस अनुभव को और भी यादगार बनाएंगे।
2: यहां मिलेगा पारंपरिक जनजातीय खानपान, आदिवासी व्यंजन प्रतियोगिता, आकर्षक हस्तशिल्प, नॉलेज पार्टनर्स और लेखकों से संवाद का अवसर। सब परिवार आइए और अपनी संस्कृति के रंग में घुल जाइए। अपनी परंपरा और अपनी पहचान का उत्सव गर्व के साथ मनाइए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: बहनों, सावन का महीना और बाबा नगरी देवघर के पेड़ों की खुशबू, उसकी मिठास हर किसी को याद आती है। लेकिन आज अपने कार्यक्रम में हमारी जो सखी है मधु, उनकी एक खास मिठाई आप तक पहुंचने वाली है, उसका स्वाद भी आप चखेंगे। हाँ तो मधु, क्या खिलाने वाली हो आज बहनों को?
4: मिठाइयाँ केवल स्वाद में ही नहीं बल्कि रिश्तों की मिठास में हो तो वो भी मिठाइयों की तरह ही महसूस होती है। तब लगता है कि हर दिन उत्सव है, हर पल खुशी है, और यही स्वाद तो है हमारे आपके रिश्ते के बीच का, सखी का रिश्ता, बहन का रिश्ता। मधु की मिठाई भी इसी मिठास के साथ हाजिर रहेगी शनिवार के दिन, जिसका स्वाद न सिर्फ आपको संतुष्ट करेगा बल्कि दिल वाह वाह कर उठेगा।
3: वाह।
4: तो बातों का सिलसिला अपने ही जीवन के एक छोटे से किस्से से शुरू करती हूँ। एक बार मैंने अपने दादाजी से पूछा था, दादाजी आपकी जिंदगी का सबसे मीठा पल कौन सा रहा है? जानती हैं सखियों, दादाजी ने उस वक्त क्या जवाब दिया? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम बहुत छोटी थी और मुझे पहली बार दादाजी कहकर पुकारी थी, वह शब्द और वह पल मेरे लिए किसी रसगुल्ला, जलेबी या अन्य मिठाइयों से कहीं ज्यादा मीठा लगा था। सच सखियों, मीठे बोल अगर हो होठों पर तो रिश्तों में बहार आ जाती है। एक सच्ची मधुर मुस्कान की खुशबू से हर सूनी राह संवर जाती है। सखियों, सावन का पावन महीना चल रहा है, वातावरण हरियाली लिए भक्तिमय हो चुका है। कोई भोलेनाथ की आराधना व्रत करके कर रहा है तो कोई भोग प्रसाद चढ़ाकर। ऐसे में आपका भी मन करता होगा ना कि क्यों ना बाबा को अपने हाथों शुद्ध और साफ सुथरे ढंग से बनाई मिठाई से भोग लगाई जाए। पर समय की कमी के चलते आप बना नहीं पाती होंगी। आज लीजिए आप सभी के लिए आपकी ये सखी झारखंड की विशेष मिठाई पेड़ा की रेसिपी लेकर आई है, जो बनाने में तो आसान है ही, खाने में भी स्वादिष्ट होता है। और तो और, ये मिठाई हमारे झारखंड राज्य के देवघर शहर में तो ये विशेष रूप से चढ़ावा के रूप में बनता ही है।
3: तभी तो मैंने कहा बहनों कि देवघर के पेड़ों का स्वाद आप नहीं भूल पाती, तो आज मधु कुछ खास तरह के पेड़े बनाने वाली है। इसलिए
4: तो निकाल लीजिए सखियों कागज और कलम और लिखना शुरू करिए। सबसे पहले सामग्री, खोया 200 ग्राम या फिर एक कप कसा हुआ, चीनी 125 ग्राम या आधा कप, इलायची पाउडर आधा छोटा चम्मच, दूध 2 से 3 बड़े चम्मच, पिस्ता और बादाम 3 से 4 पतले कटे हुए, अब विधि भी जान लीजिए। सबसे पहले कद्दूकस किए हुए खोए को एक भारी तले वाली कड़ाही में डालिए। आप चाहे तो घर में खोया बना सकती हैं या फिर बाजार से भी ले सकती हैं। इस खोए में चीनी और इलायची पाउडर डाल दीजिए और गैस पर धीमी आंच करके उस पर चढ़ा दीजिए। खोया और चीनी को कलछी से अच्छी से मिलाइए और फिर उसमें दूध जो थोड़ा सा था उसे डाल दीजिए। दूध और चीनी की चाशनी से धीरे धीरे घुलने लगता है ये मिश्रण और पतला हो जाता है, लेकिन आप इसे हिलाना मत छोड़िए, नहीं तो कड़ाही में नीचे जलने का डर रहेगा। अब मिश्रण जब गाढ़ा होकर कड़ाही छोड़ने लगे तो उसे तुरंत स्टील की प्लेट में उड़ेल लें। मिश्रण हल्का गर्म रह जाए तो उसमें उसके छोटे छोटे भाग करके गोल गोल बॉल बना लीजिए और बॉल पर कटे हुए काजू पिस्ता को थोड़ा थोड़ा सा लेकर फटा दीजिए और फिर बॉल को अपने हथेलियों के बीच रख कर चिमटे का चिपटा दीजिए। शुद्ध पेड़ा तैयार है। भोलेनाथ को भोग लगाइए, खुद खाइए और अपनों को भी खिलाइए अपने मीठे से व्यवहार के साथ, क्योंकि जीवन में हो रही कितनी भी कठिनाइयां पर अपनों के व्यवहार के मिठास से राहें होती मुश्किल कहां। सखियों, बात सावन की चली तो क्यों ना आज आप चलिए, हम और आप मिलकर सुना जाए और आनंद लिया जाए ये गीत के साथ।

सेवा जोहार। तैयार हो जाइए इतिहास के सबसे बड़े सांस्कृतिक महाकुंभ का गवाह बनने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार लेकर आ रही है झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026। आगामी 9 और 10 अगस्त को रांची का मोराबादी मैदान

0: 5000 से अधिक लोक कलाकारों झूमर छऊ और पारंपरिक जनजातीय प्रस्तुतियों से महोत्सव में होंगे भव्य उद्घाटन एवं सम्मान समारोह। कला एवं शिल्प प्रदर्शनी, पुस्तक मेला, स्वतंत्रता सेनानी विरासत प्रदर्शनी, चित्रकला प्रदर्शनी, ट्राइबल फैशन शो, रॉक बैंड की शानदार प्रस्तुतियां, इमर्सिव जोन और 700 ड्रोन का भव्य शो, आधुनिक 5D थिएटर और AI तकनीक इस अनुभव को और भी यादगार बनाएंगे।
1: यहां मिलेगा पारंपरिक जनजातीय खानपान, आदिवासी व्यंजन प्रतियोगिता, आकर्षक हस्तशिल्प, नॉलेज पार्टनर्स और लेखकों से संवाद का अवसर। सब परिवार आइए और अपनी संस्कृति के रंग में घुल जाइए। अपनी परंपरा और अपनी पहचान का उत्सव गर्व के साथ मनाइए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: स्वागत है सखियो आप सभी का एक बार फिर से। सखियो, सावन के इस महीने में मिठाई तो आप लोगों ने बनाना सीख ही लिया होगा। अब राखी की मीठी मीठी बातों को भी आइए सुना जाए राखी की बातों के अंतर्गत।
3: हाँ बहनों, तो मैं हूँ आपके साथ आपकी राखी, और आज एक बचपन का अनुभव आपसे साझा करूंगी, बचपन वाला रेडियो। सखियो, बचपन का एक मजेदार किस्सा याद आ रहा है अपने आकाशवाणी से जुड़ा हुआ। छोटे से थे मैं, अपनी नानी के साथ बैठकर रेडियो सुना करते थे। आपको भी याद होगा सखियों, तब एक बड़ा ही लोकप्रिय कार्यक्रम आकाशवाणी पर आया करता था, बिना का गीतमाला, जो आगे चलकर सिबा का गीतमाला बन गया था। हमारे महान कलाकार अमीन सयानी जी की वो शानदार आवाज, गजब की खुमारी थी उस आवाज में, उस वजनदार आवाज में जो आज भी श्रोताओं के कानों में मिसरी घोलती है। खैर, मन पर भी एक गहरी छाप छोड़ी थी उस आवाज ने। पहले पायदान पर कौन सा गाना होगा, इस इंतजार में नानी दम साधे बैठी रहती थी, और उसके साथ मैं भी एक छोटी सी बच्ची। दरअसल पायदान शब्द से मेरा पहला परिचय इस कार्यक्रम के माध्यम से ही हुआ था, और मैं अक्सर अपने दैनिक वाक्यों में इस शब्द को प्रयोग में लाने के लिए लालायित रहती थी, और जबरदस्ती जहां जरूरत नहीं है वहां भी इस शब्द को घुसा दिया करती थी। अमीन सयानी जी की आवाज के साथ साथ एक मोहक व्यक्तित्व की छवि भी मेरे बाल मन पर, या यूं कहें किशोर मन पर अंकित हो गई थी, जो मुझे हमेशा उत्साहित करती थी। मैं सोचा करती थी कि जिसकी आवाज इतनी सुंदर है उसका चेहरा कितना खूबसूरत होगा, कैसा होगा उनका व्यक्तित्व। एक सपनों का राजकुमार आता था मन में, और ये भी लगता था वो राजकुमार छुपा तो होगा इसी रेडियो सेट के अंदर। और दर्शना विलासी सी मैं रात को चुपके से रेडियो सेट के पास बैठ जाती थी कि कभी तो निकलेगा, तब पकड़ूंगी उसे। एक दिन मेरी चोरी पकड़ी गई थी। नानी ने पूछा, ये तुम रात को रेडियो पकड़कर क्यों बैठी रहती हो भाई? तब मैंने झेपते हुए सारी कहानी बता डाली थी उन्हें। फिर तो नानी खूब हंसी, लेकिन बाद में उन्होंने बड़े प्यार से समझाया आकाशवाणी के ट्रांसमिशन के बारे में। बोला, तुम्हारे सपनों का राजकुमार बहुत दूर बैठकर बोलता है माइक्रोफोन पर, समझी बच्ची? वो यहाँ कभी नहीं आएगा और यहाँ से कभी नहीं निकलेगा। हाँ, एक बात है कि तुम भी उनकी तरह रेडियो में बोल सकती हो कभी। सखियों, तब से मेरी ख्वाहिश थी कि कभी मेरी भी आवाज आकाशवाणी के श्रोता सुने, और कहते हैं ना कि शिद्दत से कुछ चाहो तो पूरी कायनात आपकी इच्छा पूरी करने में लग जाती है। और देखिए ना, आज मैं आपके साथ बैठी हूँ, आपसे बातें कर रही हूँ, तो धन्यवाद करूँ मैं आकाशवाणी का, धन्यवाद अपनी नानी का, और धन्यवाद अमीन सयानी जी का। और उस समय के जो मधुर गाने हुआ करते थे बहनों, वो भी आज तक कानों में मिसरी घोला करते हैं। आइए सुनिए आप भी ये गीत।

0: तो बहनों, अब बहुत थोड़ा सा वक्त बचा है हमारे पास। चलते चलते क्यों मधु हम बहनों को ये बताएं कि श्री अन्न कितना महत्वपूर्ण है। और श्री अन्न का मतलब मिलेट्स यानी मोटे अनाज बहनों, ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी जैसे अनाज जो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, उन्हें जरूर खाना चाहिए।
1: इन अनाजों में फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं बहनों, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। रागी कैल्शियम का अच्छा स्रोत है और ज्वार बाजरा में आयरन, मैग्नीशियम और दूसरे खनिज पदार्थ मिलते हैं।
0: हाँ, और अगर हम इन्हें अपने दैनिक भोजन में शामिल करते हैं बहनों, तो विटामिन की गोलियां लेने की आवश्यकता तो हमें नहीं पड़ेगी, जो अक्सर हमें लेनी पड़ती है ना, क्योंकि इसमें पर्याप्त पौष्टिकता होती है। तो मोटे अनाज खाएं, चोकर वाले आटे की रोटी खाएं, अंकुरित अनाज खाएं, बहुत कुछ ऐसा है जो खनिज लवण का भंडार है, जो हमारे आसपास ही है, हमारी रसोई में है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो उसे जैसे भी खाएं, लेकिन खाना ज़रूरी है। और बहनों, हम हमेशा कहते हैं कि जैसे ओट्स वगैरह हम खाया करते हैं ना पैकेट वाले, क्यों ना आप पैकेट वालों वाले जो चीज़ खरीदते हैं उससे अच्छा इसे घर में खुद तैयार करके और बना के खाएं, ज़्यादा शुद्ध होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब देखो ना, स्टूडियो की घड़ी अब इशारा करने लगी है। राखी, कार्यक्रम की समय सीमा अब समाप्त होने को चली है। तो सखियों को बता दे कि कार्यक्रम की प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की थी।
0: इस वादे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात, दीजिए अपनी दोनों सखियों राखी
1: और मधु को अनुमति।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है शैक्षणिक प्रसारण। इस कार्यक्रम में आज वार्ता होगी परीक्षा के दौरान स्ट्रेस मैनेजमेंट पर। वार्ताकार होंगे संजय कुमार, प्रस्तुति सहयोग अवधेश कुमार की और प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की।
1: आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम, यानी परीक्षा के समय तनाव प्रबंधन, जिसमें हम प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल के पहलुओं पर विचार करेंगे। परीक्षा का समय आते ही घर का वातावरण बदल जाता है, बच्चों के चेहरे पर गंभीरता आ जाती है, माता पिता की चिंता बढ़ जाती है, घर में बार बार एक ही वाक्य सुनाई देता है, पढ़ाई कर ली, परीक्षा सिर पर है। लेकिन आज मैं आपसे पढ़ाई के दौरान होने वाले तनाव की बात करना चाहता हूँ, विशेष रूप से उस तनाव की जो अक्सर हमारी अपनी आदतों से पैदा होता है। जब कोई बच्चा कहता है मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो हमारा पहला जवाब होता है स्ट्रेस मत। सुनने में यह सलाह बहुत आसान लगती है, लेकिन क्या वास्तव में तनाव लेना या न लेना हमारे हाथ में होता है? चलिए जरा हम अपने जीवन को याद करते हैं। क्या कभी किसी इंटरव्यू से पहले हमारे हाथ नहीं कांपे? क्या किसी महत्वपूर्ण निर्णय के पहले हमारी नींद नहीं उड़ी? क्या किसी प्रियजन की बीमारी ने हमें बेचैन नहीं किया? यदि उत्तर हाँ है, तो इसका अर्थ है कि तनाव केवल बच्चों की समस्या नहीं है, यह मनुष्य होने का स्वाभाविक हिस्सा है। इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि तनाव कोई बीमारी नहीं है, यह हमारे शरीर और मन की एक स्वाभाविक भावनात्मक प्रतिक्रिया है। जब हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है जो कठिन हो, नई हो, चुनौतीपूर्ण हो या हमारे नियंत्रण से बाहर हो, तब हमारा मन प्रतिक्रिया देता है। यही प्रतिक्रिया तनाव कहलाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि घटना तनाव नहीं देती, बल्कि उस घटना के प्रति हमारी सोच तनाव पैदा करती है। एक ही परीक्षा है, एक विद्यार्थी कहता है मैं तैयारी करूंगा, जितना होगा उतना अच्छा करूंगा। दूसरा विद्यार्थी सोचता है अगर कम अंक आए तो मेरा भविष्य खत्म हो जाएगा। परीक्षा दोनों की एक ही है, लेकिन मानसिक स्थिति बिल्कुल अलग है। यही कारण है कि एक ही परिस्थिति किसी के लिए चुनौती होती है, किसी दूसरे के लिए संकट। तनाव का प्रभाव केवल हमारे विचारों तक सीमित नहीं रहता, धीरे धीरे चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है, मन बार बार चिंता करने लगता है, पढ़ने बैठते हैं लेकिन ध्यान नहीं लगता, फिर शरीर भी प्रतिक्रिया देती है, दिल की धड़कन तेज होना, सिर दर्द, नींद ना आना, थकान महसूस होना, मांसपेशियों में खिंचाव, ये सब उसी तनाव के लक्षण हैं। अब आइए परीक्षा की बात करें। परीक्षा जीवन का हिस्सा है। छोटी कक्षाओं में यूनिट टेस्ट से लेकर बोर्ड परीक्षा, फिर नेट, जी, एनडीए, यूपीएससी, कैट, न जाने कितने एग्जाम्स। जीवन के हर पड़ाव पर किसी न किसी परीक्षा से हमें गुजरना पड़ता है। इसलिए यह उम्मीद करना कि परीक्षा होगी लेकिन तनाव बिल्कुल नहीं होगा, यह यथार्थ नहीं है। परीक्षा होगी तो तनाव भी होगा। प्रश्न यह नहीं है कि तनाव होगा या नहीं, प्रश्न यह है कि हम उस तनाव को संभालेंगे कैसे। मेरे अनुभव में परीक्षा के समय सबसे बड़ा तनाव पाठ्यक्रम नहीं होता है, सबसे बड़ा तनाव होता है काम को टालने की आदत। अंग्रेजी में इसे प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। आज का काम कल, कल का काम परसों और परसों का काम न जाने कब तक टलता रहता है। शुरू में हमें लगता है कि अभी बहुत समय है, लेकिन समय चुपचाप निकलता रहता है। फिर एक दिन अचानक कैलेंडर बताता है परीक्षा अब सिर्फ 10 दिन दूर है। अब वही किताबें पहाड़ जैसे लगने लगती हैं। जो अध्याय पूरे वर्ष में आराम से पढ़े जा सकते थे, वे 10 दिनों में असंभव लगने लगते हैं। यहीं से तनाव का जन्म होता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपना अधिकांश समय परिणाम की चिंता में बिताते हैं। अगर कम अंक आ गए तो, अगर मेरा चयन नहीं हुआ तो, अगर सब लोग मुझसे आगे निकल गए तो, परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन समय पर पढ़ना, नियमित अभ्यास करना, दोहराना, यह सब हमारे नियंत्रण में है। याद रखिए, जब हम अपने नियंत्रण वाली चीज़ों को छोड़कर नियंत्रण से बाहर की बातों पर ध्यान देते हैं तब तनाव बढ़ता है, और जब हम रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करते हैं तब आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए परीक्षा के तनाव का सबसे बड़ा उपचार कोई दवा नहीं बल्कि अनुशासन है। अनुशासन का अर्थ है हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना, आज का काम आज पूरा करना, और सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले करना। यही छोटी सी आदत आगे चलकर तनाव को आत्मविश्वास में बदल देती है। रहती है। अब प्रश्न उठता है कि यदि तनाव स्वाभाविक है तो उसे कम कैसे किया जाए। सबसे पहले हमें एक बात समझनी होगी कि तनाव का समाधान अधिक पढ़ाई नहीं बल्कि सही ढंग से पढ़ाई है। विश्व प्रसिद्ध लेखक स्टीफन आर कोवी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में समय के उपयोग को 4 भागों में बांटा है। पहला, वे कार्य जो महत्वपूर्ण भी हैं और तत्काल करने योग्य भी। दूसरा, वे कार्य जो महत्वपूर्ण तो हैं लेकिन अभी अत्यावश्यक नहीं है। तीसरा, वे कार्य जो तत्काल लगते हैं लेकिन वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। और चौथा, वे कार्य जो न महत्वपूर्ण हैं और न ही अत्यावश्यक। यदि हम ध्यान से देखें तो अधिकांश विद्यार्थी पूरे वर्ष दूसरे वर्ग वाले कार्यों को टालते रहते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना, नोट्स बनाना, दोहराना, पुराने प्रश्न पत्र हल करना, ये सब महत्वपूर्ण कार्य हैं, लेकिन क्योंकि परीक्षा दूर होती है इसलिए ये अत्यावश्यक नहीं लगते। फिर जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती है वही कार्य अचानक पहले वर्ग में पहुंच जाते हैं, महत्वपूर्ण भी और अत्यावश्यक भी, और यहीं से घबराहट शुरू होती है। इसलिए परीक्षा की तैयारी का सबसे बड़ा मंत्र है महत्वपूर्ण कार्यों को उनके अत्यावश्यक बनने से पहले पूरा कर लेना। अंग्रेजी में एक कहावत है, ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, अर्थात समय पर लगाया गया एक टाका बाद में 9 टाकों की आवश्यकता से बचा लेता है। यही सिद्धांत पढ़ाई पर भी लागू होता है। रोज 2 घंटे पढ़ने वाला विद्यार्थी अक्सर परीक्षा में पहले शांत रहता है, जबकि पूरे वर्ष पढ़ाई टालने वाला विद्यार्थी अंतिम सप्ताह में 12-12 घंटे पढ़ने के बाद भी असुरक्षित महसूस करता है। अब आइए कुछ ऐसे सरल उपायों की बात करें जिन्हें हर विद्यार्थी आज से ही अपनाना शुरू कर सकता है। सबसे पहला उपाय, एक यथार्थवादी योजना बनाइए। ऐसा टाइम टेबल मत बनाइए जिसमें आप प्रतिदिन 14 घंटे पढ़ने का संकल्प लें जबकि अभी 4 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। छोटे लक्ष्य बनाइए, आज केवल 1 अध्याय, आज केवल 20 गणित के प्रश्न, आज केवल 2 घंटे पूरी एकाग्रता से अध्ययन। छोटी छोटी सफलताएं मिलकर बड़े आत्मविश्वास का निर्माण करती है। दूसरा, मोबाइल फ़ोन पर नियंत्रण रखिए। आज पढ़ाई का सबसे बड़ा शत्रु कठिन विषय नहीं है बल्कि हर 5 मिनट में आने वाला नोटिफिकेशन है। एक संदेश देखने के लिए मोबाइल उठाते हैं और पता ही नहीं चलता कि आधा घंटा कब निकल गया। यदि संभव हो तो पढ़ाई के समय मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखें या किसी दूसरे कमरे में रख दें। तीसरा, पर्याप्त नींद लीजिए। कई विद्यार्थी सोचते हैं कि पूरी रात जाग कर पढ़ना सफलता की निशानी है। वास्तव में नींद की कमी हमारी याद रखने की क्षमता, ध्यान और निर्णय लेने की शक्ति तीनों को कम कर देती है। थका हुआ मस्तिष्क अधिक समय पढ़ता है लेकिन कम याद रखता है। चौथा, अपने शरीर पर भी ध्यान रखिए। हल्का व्यायाम, 10-15 मिनट की सैर, गहरी सांस लेने का अभ्यास, पर्याप्त पानी और संतुलित भोजन, ये सब विलासिता नहीं बल्कि परीक्षा की तैयारी का हिस्सा है। स्वस्थ शरीर में ही शांत मन रहता है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जिनसे विद्यार्थियों को बचना चाहिए। दूसरों से अपनी तुलना मत कीजिए। हर विद्यार्थी के सीखने की गति अलग होती है। किसी मित्र ने 5 बार रिवीजन कर लिया है इसका अर्थ यह नहीं है कि आप पीछे रह गए हैं। अपनी यात्रा, अपनी तैयारी और अपनी प्रगति पर ध्यान दीजिए। परीक्षा से ठीक पहले कोई नया विषय शुरू करने से बचिए। उस समय नए अध्याय से अधिक लाभ पुराने पढ़े हुए विषयों के दोहराव में होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि किसी दिन योजना पूरी नहीं हुई तो स्वयं को दोष मत दीजिए। अगले दिन फिर से शुरुआत कीजिए। एक दिन की चूक असफलता नहीं होती, बार बार हार मान लेना असफलता बन जाती है। अब मैं माता पिता से कुछ कहना चाहूँगा। परीक्षा के दिनों में बच्चों को केवल किताबों की नहीं विश्वास की भी आवश्यकता होती है। कृपया उनकी तुलना पड़ोस के बच्चों या रिश्तेदारों से न करें। हर बार यह मत पूछिए कितने घंटे पढ़े, कभी यह भी पूछिए आज कैसा महसूस कर रहे हो, कोई कठिनाई है क्या, क्या मैं किसी तरह मदद कर सकता हूँ। याद रखिए, बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव हमारे शब्दों से नहीं बल्कि हमारे व्यवहार से पड़ता है। यदि घर का वातावरण शांत होगा तो बच्चे का मन भी शांत होगा। और अंत में शिक्षकों से, शिक्षक केवल विषय नहीं पढ़ाते वे आत्मविश्वास भी सिखाते हैं। एक शिक्षक का एक प्रोत्साहन भरा वाक्य कई बार विद्यार्थी के जीवन की दिशा बदल देता है। इसलिए परीक्षा के दिनों में बच्चों की केवल गलतियां मत बताइए, उनकी छोटी छोटी प्रगति की भी सराहना कीजिए, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां प्रयास बढ़ता है और जहां प्रयास बढ़ता है वहां

0: सफलता की संभावना भी बढ़ जाती है। प्रिय श्रोताओं, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या परीक्षा में अच्छे अंक ही जीवन की सफलता का अंतिम प्रमाण है? क्या किसी एक परीक्षा में असफल होने का अर्थ है कि जीवन की सारी संभावनाएं समाप्त हो गईं? यदि हम ईमानदारी से सोचें तो उत्तर है नहीं। दुर्भाग्य से आज अनेक विद्यार्थी परीक्षा को अपनी योग्यता नहीं बल्कि अपने पूरे अस्तित्व का पैमाना मानने लगे। उन्हें लगता है यदि मैं इस परीक्षा में सफल नहीं हुआ तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। यही सोच तनाव को भय में बदल देती है। यहाँ मैं विद्यार्थियों और अभिभावकों से एक महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूँ। करियर और उद्देश्य एक ही चीज़ नहीं है। करियर केवल एक माध्यम है, उद्देश्य मंजिल है। मान लीजिए आपको रांची से वाराणसी जाना है। आप कार से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं। यदि एक वाहन उपलब्ध ना हो तो क्या आप अपनी मंजिल छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। आप केवल वाहन बदलेंगे, मंजिल वही रहेगी। जीवन में भी ठीक ऐसा ही होता है। यदि किसी विद्यार्थी का सपना डॉक्टर बनने का है तो उससे पूछिए, तुम डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? अक्सर उत्तर होगा, मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। ध्यान दीजिए, लोगों की सेवा करना उद्देश्य है। डॉक्टर बनना उस उद्देश्य तक पहुंचने का एक रास्ता है। यदि किसी कारण से वह मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सफल नहीं हो पाया तो क्या सेवा करने का उसका उद्देश्य समाप्त हो गया? नहीं। वह प्रशासनिक अधिकारी बनकर सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था सुधार सकता है। वह वैज्ञानिक बनकर नई चिकित्सा तकनीक विकसित कर सकता है। वह उद्यमी बनकर ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल या टेलीमेडिसिन सेवा शुरू कर सकता है। वह सामाजिक संस्था बनाकर स्वास्थ्य जागरूकता का अभियान चला सकता है। रास्ते बदल सकते हैं, मंजिल नहीं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका सपना भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने का था। वे अंतिम चयन तक पहुंचे लेकिन चयनित नहीं हो सके। कल्पना कीजिए, यदि उन्होंने उसी दिन यह मान लिया होता कि अब जीवन समाप्त हो गया तो क्या भारत को उसका मिसाइल मैन मिलता? क्या हमें वह प्रेरणादायक राष्ट्रपति मिलते जिन्होंने करोड़ों युवाओं को सपने देखने की प्रेरणा दी? उन्होंने रास्ता बदला लेकिन उद्देश्य नहीं छोड़ा, देश की सेवा करने का उद्देश्य। प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षा जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है लेकिन पूरा जीवन नहीं। अच्छे अंक आपके लिए कई दरवाजे खोल सकते हैं लेकिन यदि किसी कारण से अपेक्षित परिणाम ना मिले तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। जीवन हमेशा दूसरा अवसर देता है, इसलिए परीक्षा को पूरी ईमानदारी से दीजिए, पूरा प्रयास कीजिए, लेकिन अपने आत्मसम्मान को केवल अंकों से मत जोड़िए। और अंत में माता पिता से एक विनम्र निवेदन, अपने बच्चों से यह मत कहिए यदि इस बार अच्छे अंक नहीं आए तो सब खत्म हो जाएगा, बल्कि उनसे कहिए, हम चाहते हैं कि तुम पूरी मेहनत करो, परिणाम चाहे जो हो हम तुम्हारे साथ हैं। विश्वास मानिए, यह एक वाक्य बच्चे के मन से आधा तनाव उसी क्षण दूर कर देता है। प्रिय शिक्षकों, आप बच्चों को केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा रहे हैं, आप उनके व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं। आपके शब्द कई बार उनके जीवन भर की आवाज़ बन जाती है, इसलिए बच्चों में अंक प्राप्त करने की क्षमता के साथ साथ असफलता को स्वीकार करने का साहस भी विकसित कीजिए। आज की चर्चा को मैं 3 छोटे संदेशों के साथ समाप्त करना चाहूँगा। पहला, तनाव शत्रु नहीं है, यह संकेत है कि चुनौती हमारे सामने खड़ी है। दूसरा, परीक्षा का सबसे बड़ा तनाव प्रश्न पत्र नहीं बल्कि काम को टालने की आदत है। आज का काम आज करना ही तनाव प्रबंधन का सबसे सरल और सबसे प्रभावी उपाय है। और तीसरा, करियर जीवन का साधन है, उद्देश्य जीवन का अर्थ है। यदि रास्ता बदल जाए तो भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। आइए हम अपने बच्चों को केवल परीक्षा में सफल होना ही नहीं बल्कि जीवन की हर परिस्थिति का साहसपूर्वक सामना करना भी सिखाएं। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे शैक्षणिक प्रसारण, विषय था परीक्षा के दौरान स्ट्रेस मैनेजमेंट। वार्ताकार थे संजय कुमार, प्रस्तुति सहयोग अवधेश कुमार की और प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की। कुछ ही पलों में हम उपस्थित होंगे लेकर कार्यक्रम फिल्म संगीत।

नमस्कार श्रोता बंधुओं, आकाशवाणी रांची से प्रसारित हमारे इस खास कार्यक्रम फिल्म संगीत में आप सभी का स्वागत है। मैं आभा आज के इस सफर में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और रेडियो की सुरीली तरंगों के साथ जुड़े होंगे। दोस्तों, आज के इस अंक में हम लेकर आए हैं हिंदी सिनेमा के कुछ ऐसे बेहतरीन और सदाबहार नगमे जो आपके दिल को छू जाएंगे। पुराने दिनों की यादें हो या आज का हसीन पल, संगीत हर मौसम का साथी है। आइए बिना किसी देरी के इस सुरीले सफर की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म है लोफर।

अगला गाना फिल्म चुपके चुपके से, जिसे लता मंगेशकर ने अपनी मधुर आवाज दी है, रचना आनंद बख्शी की, संगीत एस टी बर्मन का।

आप सुन रहे थे हिंदी नगमे कार्यक्रम फिल्म संगीत के अंतर्गत। कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मॉनसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने भारत में ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा प्रतिनिधियों के संघ AAERI के साथ साझेदारी में एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म AAERI सत्यापन का शुभारंभ किया। मंत्रालय ने बताया कि डिजी लॉकर से जुड़े इस प्लेटफॉर्म के जरिए ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में आवेदन करने वाले भारतीय विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक पहचान और वित्तीय दस्तावेजों का सुरक्षित और डिजिटल तरीके से सत्यापन कर सकेंगे। झारखंड सरकार आज जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से बातचीत की। ये बैठक रांची के गेस्ट हाउस में हुई। परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ पिछले दो सप्ताह से रांची में जारी विरोध प्रदर्शन के बाद ये बातचीत हुई है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल के बीच कल शाम पहली औपचारिक बैठक हुई थी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने सीमा पार आतंक की साजिश रचने में दो आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया है। दोनों आरोपी पंजाब और नई दिल्ली में सुनियोजित हमले के लिए IED, विस्फोटक और हेरोइन की कथित तस्करी में संलिप्त हैं। एजेंसी के मोहाली विशेष अदालत में कल शुभम कुमार और फरार जसवीर चौधरी के खिलाफ विरुद्ध अभियोग पत्र दायर किया गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलुवांच मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई है। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को अपना पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has said that students graduating today are not merely completing their education, but are beginning a new chapter in their lives. He was addressing the 57th convocation ceremony of IIT Delhi today. Mr. Modi urged the graduating students to live the moment to the fullest, as they would cherish and miss the memories of their campus life in the years to come. The Prime Minister congratulated the graduating students and wished them success as they embark on a new journey.
1: आज आपके परिवार के लोग प्राउड फील कर रहे हैं, वैसे ही मुझे भी आप सब पर गर्व है, क्योंकि आप सब केवल एक डिग्री नहीं ले रहे हैं, आप देश के लिए

0: जारी रहेगा छात्र आंदोलन। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना, जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर मांगा नैतिकता के आधार पर इस्तीफा। ग्राहकों के लिए पूरी तरह निःशुल्क रहेगा यूपीआई लेन देन, भारतीय भुगतान परिषद ने डिजिटल भुगतान पर शुल्कों की खबरों को किया खारिज। सीआईएसएफ ने रामगढ़ स्थित कुज्जू के टोपा क्षेत्र में अवैध सुरंग का किया भंडाफोड़, 115 टन से अधिक कोयला बरामद। और कतरास में भारी ब्लास्टिंग से 20 फीट जमीन धंसने के कारण 10 घर जमींदोज, प्रशासन ने प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की। और अब समाचार विस्तार से। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर आंदोलित छात्रों और सरकारी कमेटी के बीच आज रांची स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में हुई दूसरी दौर की वार्ता समाप्त हो गई है। बैठक के बाद मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि सरकार ने सुझावों के लिए jpsc.jssc.feedback@gmail.com ईमेल आईडी जारी की है, जिस पर छात्र अपना फीडबैक भेज सकते हैं।
1: छात्रों से, विभिन्न समूहों से, स्टेक होल्डर से यह प्रतिनिधिमंडल मिलता रहेगा। अलावे एक मेल आईडी हम लोग जारी कर रहे हैं, jpsc.jssc.feedback@gmail.com। इस पर कोई भी छात्र, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टेक होल्डर सुझाव दे सकता है और हम लोग तमाम लोगों के सुझाव के अनुरूप एक रिफॉर्म की नीति और एक सामूहिक निर्णय करना।
0: दूसरी ओर छात्र प्रतिनिधियों ने कहा कि उन्होंने अपनी मांगे सरकार के समक्ष रख दी हैं, लेकिन लिखित आश्वासन मिलने तक उनका आंदोलन और अनशन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में परीक्षा सुधारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। रांची में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि बड़े सुधारों की दिशा में छात्रों के सुझावों के अनुरूप ही सरकार आगे बढ़ेगी।
2: जो माध्यम है वो माध्यम हमने बता रखा है और बात करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। जो छात्रों की इच्छा है उस इच्छा को हम जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर तक ले जाने थे। पूरे राज्य की जो हमारे छात्र छात्राएं हैं जो इस संबंध में अपने विचार रखते हैं वो अपनी राय दे सकते।
0: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज गिरिडीह परिसदन में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए राज्य की कानून व्यवस्था और छात्र आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से राज्य नहीं संभल रहा है और ब्लैकलिस्टेड कंपनी से जेपीएससी परीक्षा लेने के मामले में उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए।
3: लगातार आंदोलनरत छात्रों के साथ आप वार्ता करें, उनकी बात सुने, क्योंकि अनशन में भी बैठे छात्र हैं, तो हम आग्रह करेंगे कि सरकार इस पर ध्यान दे और निश्चित तौर से कार्रवाई हो। जो भी इसमें फंसे हैं निश्चित तौर पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और तत्काल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
0: भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया है कि यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए पूरी तरह निःशुल्क बना रहेगा। व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक शुल्क का बोझ भी आम उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: यूपीआई के जरिए लेनदेन पर चार्ज लगने की खबरों ने आम उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। इस भ्रम को पूरी तरह दूर करते हुए पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई ने साफ किया है कि ग्राहकों के लिए यूपीआई सेवाएं पूरी तरह मुफ्त बनी रहेंगी। डिजिटल इंडिया की रफ्तार को बनाए रखने और वित्तीय समावेशन को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये स्पष्टीकरण एक बड़ा राहत देने वाला कदम है। पीसीआई ने कहा है कि यूपीआई देश की महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था बन चुका है, जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। बढ़ते लेनदेन को देखते हुए सुरक्षा, तकनीक और ढांचे को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में भी यूपीआई उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए सुचारू रूप से काम करता रहे। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कल मोरहाबादी मैदान में आदिवासी महोत्सव के तहत विशेष फिल्म फेस्टिवल और मास्टर क्लास आयोजित करेगा। सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित इस कार्यक्रम में छात्र फिल्म निर्माण और मीडिया उद्योग की बारीकियों से जुड़ेंगे। इस दौरान आदिवासी संस्कृति पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। विधानसभा में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की निदेशक ब्रह्मा कुमारी निर्मला के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें रक्षा सूत्र बांधा। इस अवसर पर उन्होंने सावन और रक्षाबंधन के आध्यात्मिक महत्व को साझा करते हुए राज्य के सुख, समृद्धि, शांति और मानवीय मूल्यों को अपनाने की कामना की। आज आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार xhandle@airnewsalerts और फेसबुक

0: पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। CISF ने कुज्जू के टोपा क्षेत्र में CCL की जमीन के नीचे बनाई गई अवैध सुरंग का भंडाफोड़ कर 115 टन से अधिक कोयला बरामद किया है। कोयला चोरों ने जमीन के भीतर रास्ता बनाकर सुरंग तैयार की थी। CISF ने खान एवं खनिज अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। धनबाद के कतरास में भारी ब्लास्टिंग से छाताबाद आकाश किनारे फुटबॉल ग्राउंड के पास 20 फीट जमीन धंसने से 10 घर जमींदोज हो गए, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और 8 लोग सुरक्षित बचाए गए हैं। प्रशासन ने क्षेत्र को डेंजर जोन घोषित कर दिया है, जबकि बाघमारा के अंचल अधिकारी गिरिजानंद किस्को ने पीड़ितों को जरेडा योजना के तहत बैरकों में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
1: हाँ, लोगों में काफी आक्रोश है कि यह घटनापुर में हुआ था, पुनः इस तरह का हो रहा है। हम लोग उस समय एक सर्वे किए थे, जितना पीड़ित थे उतना। अभी इसका एक सर्वे जो है कल DGMS के सहयोग से, BCCL के सहयोग से और JRDA की टीम से और हमारे अंचल की टीम से संयुक्त रूप से किया जाएगा और जितने लोग इससे प्रभावित हैं और जितने लोग हो सकते हैं इन दोनों बिंदु पर एक गहन सर्वे करके रिपोर्ट तैयार कराया जाएगा।
0: जमशेदपुर के बर्मा माइंस में 2 अगस्त को मोहम्मद आफताब आलम हत्याकांड का खुलासा करते हुए SIT ने मुख्य शूटर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नगर पुलिस अधीक्षक ललित मीना ने बताया कि आरोपियों की निशानदेही पर हथियार और मोटरसाइकिल बरामद किए हैं और अब तक कुल 7 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है।
2: बर्मामय क्षेत्र में जो फायरिंग की घटना हुई थी तो उसी में कुछ कार्रवाई पहले भी करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था और एक 2-व्हीलर जब्त किया गया था और उसी क्रम में आगे अब कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 फायरर थे, एक शहबाज उर्फ भोलू और दूसरा मोहम्मद रेहान पकड़े गए। इसके अलावा एक और व्यक्ति है शेख रहीम और 2 लोग हैं जिनको निरुद्ध किया गया है।
0: खूंटी जिले के अड़की प्रखंड अंतर्गत चाराडीह गांव के किसानों ने ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर अवैध अफीम की खेती को पूरी तरह अलविदा कह दिया है। अब यह गांव आधुनिक और कानूनी खेती के जरिए आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रहा है। स्थानीय किसानों ने मल्चिंग, ट्रिप और ग्राफ्टिंग तकनीक से हाइब्रिड टमाटर की खेती शुरू की है, जिससे वे एक ही सीजन में 1 से 2.5 लाख रुपए तक की आमदनी कमा रहे हैं।
3: पहले हम लोग अफीम खेती करते थे, उसमें अच्छा मुनाफा पता होता था लेकिन गलत था। उसके बाद हम लोग एक ग्राम सभा बैठक में हम लोग बात किए कि हम लोग ये खेती तो बंद करेंगे, लेकिन अभी टमाटर लगाने का टाइम है, इसीलिए एक बार टमाटर लगा के देखते हैं कैसे मुनाफा होता है। उसके बाद हम लोग टमाटर लगाए, इसमें बहुत अच्छा मुनाफा है।
0: राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,40,000 रुपए प्रति किलो है। रामगढ़ जिमखाना क्लब का नए स्वरूप में रामगढ़ जिमखाना क्लब एंड रिजॉर्ट के रूप में भव्य पुनः शुभारंभ किया गया है। यह संस्थान स्वर्गीय आरसी रुंगटा के दूरदर्शी विचारों की देन है। परियोजना के प्रथम चरण में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के खेल कोर्ट, बॉक्स क्रिकेट, प्रीमियम बार और कॉरपोरेट सदस्यता शुरू की गई है, जिस पर 31 अगस्त तक अर्ली बर्ड ऑफर उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। परीक्षा विवाद पर JPSC JSSC न्याय मंच के साथ सरकार की वार्ता खत्म, सुझावों के लिए सरकार ने जारी की ईमेल आईडी, फिलहाल जारी रहेगा छात्र आंदोलन। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना, JPSC परीक्षा विवाद को लेकर मांगा नैतिकता के आधार पर इस्तीफा। ग्राहकों के लिए पूरी तरह निशुल्क रहेगा UPI लेनदेन, भारतीय भुगतान परिषद ने डिजिटल भुगतान पर शुल्कों की खबरों को किया खारिज। CISF ने रामगढ़ स्थित कुज्जू के टोपा क्षेत्र में अवैध सुरंग का किया भंडाफोड़, 115 टन से अधिक कोयला बरामद और कतरास में भारी ब्लास्टिंग से 20 फीट जमीन धंसने के कारण 10 घर जमींदोज। प्रशासन ने प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546 दशम लो 4.5 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत अनुरंजनी। आज की कलाकार हैं गिरिजा देवी, इनसे सुनेंगे ख्याल अब होगी कान्हड़ा।

आकाशवाणी का ये राजी केंद्र है। अब आइए सुनते हैं सुगम संगीत में गजल भूपिंदर और मिताली सिंह की आवाजों में।

एचआईवी एक विषाणु है जिसका संक्रमण एचआईवी संक्रमित रक्त के उपयोग, संक्रमित नीडल या सीरिंज के उपयोग, संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कंडोम के यौन संबंध बनाने या संक्रमित गर्भवती माँ से उसके नवजात शिशु को हो सकता है। एचआईवी एड्स की जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1-0-9-7 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाजों में गजल। इसी के साथ सुगम संगीत संपन्न होता है।

0: It also urged citizens to send any suspicious information related to the central government at the rate PIB fact check or on WhatsApp on 918799711259. US President Donald Trump has defended plans to build a new ballroom and military complex on the White House grounds, describing a proposed rooftop drone port as an important military asset. Trump shared a graphic of the proposed installation on his Truth Social platform. The image shows military drones on a rooftop above the planned ballroom, with armed personnel and Washington Monument visible in the background. Trump said the facility would strengthen national security in Washington, D.C. and protect future presidents. His comments come amid a legal dispute over the construction project. A federal appeals court has blocked work on the proposed White House ballroom. Trump has described the court ruling as a national security threat and a national disgrace, and said his administration would challenge the decision before the U.S. Supreme Court. At least three people, including a child, have been killed in overnight Russian missile strikes near the Ukrainian capital Kyiv. The attacks hit areas east of Kyiv in the early hours today. Regional Military Administration Chief Temur Kachenko said three people were also injured in the ballistic missile strikes. India opened its medal account on the third day of the World Athletics Under-20 Championships in Eugene, USA, with Ashish Yadav winning silver in the men's javelin throw. The 19-year-old produced his best effort of 74.09 meters in his third attempt to finish second. Ashish became only the second Indian after Neeraj Chopra to win a silver in the event at the World Athletics Under-20 Championships. South Africa's Jan Hendrik Heymans won the gold with a throw of 80.5 meters. Indian shuttler Ashmita Chaliha has reached the women's singles final of the Korea Masters Super 300 Badminton Tournament in Asan, South Korea. Ashmita defeated fellow Indian Rakshita Ramraj in the semi-final today. Ashmita will face China's Qiu Han in the women's singles final tomorrow. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says self-reliance in emerging sectors like semiconductors, space and drones will serve as a strong foundation for Viksit Bharat. Urges IIT students to keep national interests at the center of their decisions. Jharkhand government holds a second round of talks with student protesters over alleged irregularities in JPSC and GSSE examinations. Seven people killed and 11 injured in a private bus accident in Chamba district of Himachal Pradesh this morning. IMD issues orange alert for heavy to very heavy rainfall over Rajasthan and Odisha today. Amarnath Yatra from Jammu towards Baltal suspended due to bad weather conditions. And in men's javelin throw, Ashish Yadav wins silver at World Athletics Under-20 Championships in United States. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
2: आप सब जानते हैं, हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
2: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में उत्पन्न होने वाले विकर्षणों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्यक्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
2: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपेरिजन का। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
1: इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने भारत के शिक्षा तंत्र को शिक्षार्थी केंद्रित, अनुसंधान आधारित और भविष्योन्मुखी बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के संस्थानों में नया आत्मविश्वास जगाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक एक उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मॉनसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। झारखंड में आज JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के बीच विभिन्न समूहों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता का दूसरा दौर आज आयोजित किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: आज रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की विशेष कमेटी और छात्र संगठनों के बीच दूसरे दौर की वार्ता सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई। सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल ID भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच कर रही CID ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और आयोग के 3 वर्तमान सदस्यों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक आज से शुरू हुई। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में इस बैठक में सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में 5 अगस्त से चल रहे ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के तहत आज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हो रही है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री भी शामिल हैं। बैठक में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की

0: घोषणा जिसे भोपाल डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा, साथ ही सांची कल्चर कनेक्ट पर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद मंत्री और प्रतिनिधि सांची के विश्व धरोहर स्थल का भ्रमण करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन शहरी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करके उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। सहकारी समितियों में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक केंद्रीय शासी या सहायक निकाय होता है जिसका गठन कई स्वतंत्र सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। सहकारी क्षेत्र के शक्तियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे छोटे निवेश को जोड़कर बड़े कारोबार के लिए बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है।
2: मेरा जो कोऑपरेटिव का समझ है, बड़ा व्यापार करने के लिए छोटे छोटे लोगों की कोऑपरेटिव बनाकर छोटी पूंजी से बहुत बड़ी पूंजी निर्मित कर बड़ा व्यापार किया जा सकता है। अमूल आज 1,25,000 करोड़ का व्यापार करता है। इप्को, क्रिप्को, एक जमाने में लिज्जत पापड़, ये किसी में भी पूंजी का निवेश 50 रुपया से ज्यादा नहीं है और आज अमूल विश्व का खाद्य पदार्थों का सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रांड बन व्यापार कर रहा है।
1: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि बिहार से पहली बार जीआई टैग वाले मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन खेप ऑस्ट्रेलिया भेजी गई है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दरभंगा में किसानों से सीधे खरीदी गई इस खेप से उन्हें बाजार मूल्य की तुलना में लगभग 18% से अधिक लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से हासिल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये लेख भारत के बढ़ते आत्मनिर्भर चिकित्सा प्रौद्योगिकी तंत्र को उजागर करता है जो घरेलू विनिर्माण, आयात पर कम निर्भरता और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी पहलों से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलवांज मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। सुबह से 2,500 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को जम्मू की ओर जाने की अनुमति दी जा रही है। मौसम विभाग ने केरलम में मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए आज 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और शेष 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल के लिए 4 उत्तरी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज लक्षद्वीप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इस महीने की 10 तारीख तक तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने आज दिन भर बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। भानु प्रताप के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। एक रिपोर्ट।
4: रेलवे ने ओणम के दौरान यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 14 अगस्त से 6 सितंबर के बीच अब तक 112 विशेष ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। इनमें से 38 विशेष ट्रेन दक्षिण रेलवे के अंतर्गत चलाई जाएंगी। दक्षिण रेलवे ने अन्य रेलवे जोन के लिए भी 16 अतिरिक्त विशेष ट्रेन की घोषणा की है। इसके अलावा अन्य रेलवे जोन भी इस दौरान 58 विशेष ट्रेन चलाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। उधमपुर में महिलाओं का एक समूह हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथ से राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगे से जुड़ी सजावटी वस्तुएं तैयार कर रहा है। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल से 17 अगस्त तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रात में रूस द्वारा किए गए मिसाइल हमले में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन प्रमुख तिमूर तकाचेंको ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों में 3 लोग घायल भी हुए हैं। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हैंसमैन ने स्वर्ण पदक जीता। अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने IIT के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतर की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है फौजी भाइयों का कार्यक्रम जय भारती। कहते हैं हवाओं से नहीं फौजियों की सांसों से लहराता है तिरंगा। वो तिरंगा जिसे हम त्योहारों में थामते हैं वो रोज किसी फौजी के खून पसीने और अधूरी नींद से जिंदा रहता है। जब हम अपनों के साथ हंस रहे होते हैं तब कोई सरहद पर खामोशी से खड़ा अपने घर, अपने माँ बाप, अपने बच्चों की तस्वीर जेब में रखकर पूरे देश का घर संभाल रहा होता है। उसे ठंड नहीं लगती क्योंकि वर्दी के नीचे वतन की आग जलती है। उसे डर नहीं लगता क्योंकि उसके दिल में तिरंगे का भरोसा बसता है। हर गोली से पहले उसकी एक ही दुआ होती है, मेरे बाद भी मेरा भारत सुरक्षित रहे। हमारे लिए आज़ादी एक एहसास है पर उनके लिए एक जिम्मेदारी। हमारे लिए तिरंगा एक पहचान है पर उनके लिए सांसों से बंधा हुआ वादा। इसीलिए सलाम है उन फौजियों को जो जीते भी देश के लिए हैं और ज़रूरत पड़े तो वो मुस्कुराते हुए मिट जाते हैं हमारे भारत माँ के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से। आवाजें हैं उदित नारायण और सोनू निगम की, साथ ही आवाजें दी हैं अलका याग्निक और कैलाश खेर ने। संगीत अनु मलिक का और गीत के बोल लिखे हैं समीर ने।

जय भारती का अगला गीत सुनिए, 1997 की सुपरहिट देशभक्ति और रोमांटिक फिल्म बॉर्डर का मधुर गीत। इसे रूप कुमार राठौर ने अपनी शानदार आवाज दी है, संगीत अनु मलिक ने तैयार किया है, इसके बोल मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने लिखे हैं।

0: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हुआ। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद। जोहार, जय भोले।
0: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्मिक का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: कटपड़े भारतीय सेना।
1: कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए फिल्म अभिलाषा से, संगीत आरडी बर्मन का, रचना मजरू सुल्तानपुरी की, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

0: आकाशवाणी रांची से आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें और स्वयं से यह प्रश्न करें कि उनके कार्यों से देश को किस प्रकार लाभ हो सकता है और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। श्री मोदी ने ये बातें आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है। आईआईटी आईएसएम धनबाद में आज नेशनल फ्रंटियर्स ऑफ इंजीनियरिंग 2026 और इनोवेशन इन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस 2026 का शुभारंभ हुआ। 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर के इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, शोधकर्ता और उद्योग प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने युवाओं से आने वाले 100 वर्षों के लिए तकनीक और नवाचार पर ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने लैब से बाहर निकलकर देश की जरूरतों के अनुरूप समाधान विकसित करने पर जोर दिया।
2: इस टेक डिफेंस कॉन्क्लेव रांची में खैलगांव में 3 दिन का हुआ था और उसके बाद 2 दिन का डिफेंस कॉन्क्लेव जमशेदपुर में कराया। वहाँ लगभग 1600 एमएसएमई सेक्टर के लोग आए। जब रांची में डिफेंस कॉन्क्लेव आया, उस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आए, हमारे सारे बड़े अधिकारी, सारे साइंटिस्ट आए, राज्यपाल महोदय जी थे, मुख्यमंत्री जी थे और हमने प्रयास किया कि यहाँ पर रक्षा के क्षेत्र में झारखण्ड में कुछ हो।
0: जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर आंदोलित छात्रों और सरकारी कमेटी के बीच आज दूसरे दौर की वार्ता समाप्त हो गई। बैठक के बाद मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि सरकार ने सुझावों के लिए jpsc.jssc.feedback@gmail.com ईमेल आईडी जारी की है, जिस पर छात्र अपने सुझाव भेज सकते हैं।
3: छात्रों से, विभिन्न समूहों से, स्टेक होल्डर से यह प्रतिनिधिमंडल मिलता रहेगा। अलावे एक मेल आईडी हम लोग जारी कर रहे हैं, jpsc.jssc.feedback@gmail.com। इस पर कोई भी छात्र, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टेक

0: होल्डर सुझाव दे सकता है और हम लोग तमाम लोगों के सुझाव के अनुरूप एक रिफॉर्म की नीति और एक सामूहिक निर्णय करना।
1: दूसरी ओर छात्र प्रतिनिधियों ने कहा कि उन्होंने अपनी मांगे सरकार के समक्ष रख दी हैं, लेकिन लिखित आश्वासन मिलने तक उनका आंदोलन और अनशन जारी रहेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से कल रांची के मोराबादी मैदान में आदिवासी महोत्सव के तहत विशेष फिल्म फेस्टिवल और मास्टर क्लास का आयोजन किया जाएगा। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के सहयोग से होने वाले इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को फिल्म निर्माण और मीडिया उद्योग की बारीकियों की जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान आदिवासी संस्कृति और परंपराओं पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। मास्टर क्लास में विशेषज्ञ विद्यार्थियों के साथ अनुभव साझा करेंगे। जामताड़ा जिले के सभी मतदान केंद्रों पर आज विशेष शिविर आयोजित कर मतदाता सूची में दावा आपत्ति और नए योग्य मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। जामताड़ा महाविद्यालय मतदान केंद्र के निरीक्षण के दौरान सुपरवाइजर पार्थ कुमार मंडल ने बताया कि छूटे योग्य आवेदकों से फॉर्म 6 और मतदाता सूची में सुधार के लिए फॉर्म 8 भरवा कर जमा लिया जा रहा है।
2: एसआईआर 2026 के 5 अगस्त को जो ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ उसके लिए आज विशेष आज और कल यानी 8 और 9 अगस्त को विशेष कैंप आयोजित की गई है। इसमें अगर किन्हीं का नाम छूट गया है तो उनके लिए फॉर्म 6 भरा जा रहा है, किन्हीं को सुधार करना है तो उनके लिए फॉर्म 8 भरा जा रहा है।
1: सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर शनिवार को एसडीओ अभिनव प्रकाश ने जांच की। इस दौरान विभिन्न रजिस्टरों और अभिलेखों की जांच में कुछ स्टॉक रजिस्टरों के सही तरीके से संधारण नहीं होने की बात सामने आई। संबंधित कर्मियों को सुधार के लिए 2 दिन का समय दिया गया है। सोमवार को दोबारा जांच होगी। शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी कर जांच में बुलाया जाएगा। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अब मौसम। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में आज सुबह हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। मौसम विभाग की ओर से विशेषकर रांची, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली की आशंका को देखते हुए नागरिकों से खराब मौसम में खुले स्थानों पर न जाने की अपील की है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत बस कुछ ही पलों में।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे। और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।
0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है, और इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आभा। आप सभी को मेरा शाम का नमस्कार। लीजिए सुनिए फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का ये गाना कुमार सानू और लता मंगेशकर की आवाजों में। बोलों को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत जतिन ललित का।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे पॉडकास्ट सीरीज पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। कृपया प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर। अगला कार्यक्रम रांची मेलोडीज, बस थोड़ी ही देर में।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: கடற்படை भारतीय सेना।
1: सुनने वाले सभी श्रोताओं को आभा का नमस्कार। आज की यह ठंडी और सुहानी शाम और उस पर संगीत का यह हसीन सफर, आप सभी का रांची मेलोडीज के इस अद्भुत मंच पर तहे दिल से स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों से। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया है, बोल आनंद बख्शी ने लिखा है और फिल्म है अनजाना।

रांची मेलोडीज का अगला गाना है फिल्म कभी कभी से। इस सदाबहार गीत को अपनी सुरीली आवाजें दी हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। बोलों को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत खयाम का।

कार्यक्रम का अगला गीत अलका याग्निक की आवाज़ में, फिल्म है मेरे महबूब।

अगला गाना है अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, बोल है आनंद बख्शी की, संगीत आर डी बर्मन का, और फिल्म है लव स्टोरी।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं यह प्यारा सा गीत जो आपकी शाम को और भी खुशनुमा बना देगा। आवाज है किशोर कुमार की, रचना आनंद बख्शी की, संगीत दिया है RD बर्मन ने और फिल्म है कटी पतंग।

0: आकाशवाणी रांची से आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें और स्वयं से ये प्रश्न करें कि उनके कार्यों से देश को किस प्रकार लाभ हो सकता है और कैसे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। IIT ISM धनबाद में आज नेशनल फ्रंटियर्स ऑफ इंजीनियरिंग 2026 और इनोवेशन इन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस 2026 का शुभारंभ हुआ। 3 दिवसीय कार्यक्रम में देशभर के इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, शोधकर्ता और उद्योग प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने युवाओं से आने वाले 100 वर्षों के लिए तकनीक और नवाचार पर ध्यान देने का आह्वान किया। JPSC और JSSC परीक्षा विवाद को लेकर आंदोलित छात्रों और सरकारी कमेटी के बीच आज दूसरे दौर की वार्ता समाप्त हो गई। बैठक के बाद मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि सरकार ने सुझावों के लिए jpsc.jsse.feedback@gmail.com ईमेल जारी किया है, जिस पर छात्र अपने सुझाव भेज सकते हैं। झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से कल रांची के मोराबादी मैदान में आदिवासी महोत्सव के तहत विशेष फिल्म फेस्टिवल और मास्टर क्लास का आयोजन किया जाएगा। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के सहयोग से होने वाले इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को फिल्म निर्माण और मीडिया उद्योग की बारीकियों की जानकारी दी जाएगी। सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर शनिवार को SDO अभिनव प्रकाश ने जांच की। इस दौरान विभिन्न रजिस्टरों और अभिलेखों की जांच में कुछ स्टॉक रजिस्टरों के सही तरीके से संधारण नहीं होने की बात सामने आई है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी रांची से आइए सुनते हैं कार्यक्रम कल्याणी के अंतर्गत चर्चा बेटी की शिक्षा और परिवार का स्वास्थ्य, साथ ही भेंटवार्ता हृदय रोग के कारण बचाव और सावधानियां। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर राजेश कुमार झा, भेंटकर्ता गौरव कुमार, सूत्रधार युवराज और प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की।

जोहार, नमस्कार और स्नेहिल अभिवादन। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम कल्याणी, जहां हर मुलाकात में है नई जान।

0: कार्य, हर चर्चा में है नया विचार और हर गीत में छिपा है दिल को छू लेने वाला एहसास। मैं हूं आपका मित्र युवराज और अगले कुछ समय तक हम साथ बिताएंगे ज्ञान, मनोरंजन और प्रेरणा से भरपूर एक खूबसूरत रेडियो यात्रा। आज के कार्यक्रम में होगी एक विशेष भेंट वार्ता जिसमें हमारे सम्मानित अतिथि से जानेंगे कई महत्वपूर्ण बातें। इसके साथ होगी रोचक चर्चाएं और मन को सुकून देने वाली चुनिंदा गीत जो इस सफर को और भी यादगार बना देंगे। तो देर किस बात की, अपने काम करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि शुरू हो रहा है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम कल्याणी। श्रोताओं, अक्सर कहा जाता है कि यदि एक बेटी शिक्षित होती है तो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा परिवार शिक्षित होता है, साथ ही साथ परिवार जागरूक और स्वस्थ बनता है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो केवल एक परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य से जुड़ा है। विषय है बेटी की शिक्षा और परिवार का स्वास्थ्य। मित्रों, कहा जाता है कि यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन यदि एक बेटी शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। यह केवल एक कहावत नहीं बल्कि जीवन का अनुभव है। बेटी परिवार की पहली शिक्षिका होती है, वो आगे चलकर माँ बनती है और आने वाली पीढ़ी के संस्कार, शिक्षा और स्वास्थ्य की नींव रखती है। इसलिए बेटी की शिक्षा केवल उनके जीवन को ही नहीं बदलती बल्कि पूरे परिवार और समाज के स्वास्थ्य और विकास को नई दिशा देती है। दोस्तों, शिक्षित बेटी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहती है। वह संतुलित आहार, स्वच्छता, नियमित व्यायाम, टीकाकरण और समय समय पर स्वास्थ्य जांच के महत्व को समझती है। वह यह भी जानती है कि बीमारियों से बचाव इलाज से कहीं अधिक आसान और सस्ता होता है, इसलिए वह अपने परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करती है। जब एक लड़की शिक्षित होती है तो वह विवाह, मातृत्व और बच्चे के पालन पोषण से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लेती है। वह गर्भावस्था के दौरान आवश्यक जाँच, पौष्टिक भोजन सलाह का पालन करती है। इससे माँ और शिशु दोनों स्वस्थ रहते हैं और कुपोषण जैसी समस्याओं में भी कमी आती है। साथियों, शिक्षित बेटी अपने परिवार की शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देती है। वह बच्चों का समय पर टीकाकरण करवाती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखती है और उन्हें अच्छी आदतें सिखाती है। ऐसे परिवारों में बीमारियाँ कम होती है और बच्चों का मानसिक तथा शारीरिक विकास बेहतर होता है। आज सरकार भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों के माध्यम से बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। विद्यालयों में छात्रवृत्ति, साइकिल योजना, पोषण कार्यक्रम और विभिन्न जागरूकता अभियान इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन केवल आज सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं है, समाज और परिवार की सोच में भी बदलाव आवश्यक है। मित्रों, दुर्भाग्य से आज भी कई स्थानों पर बेटियों की पढ़ाई बीच में ही रोक दी जाती है या उन्हें बेटों की तुलना में कम अवसर दिया जाता है। यह सोच बदलनी होगी। बेटी बोझ नहीं बल्कि परिवार की सबसे बड़ी ताकत है। यदि उसे शिक्षा और अवसर मिले तो वह डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वैज्ञानिक, प्रशासनिक अधिकारी या सफल उद्यमी बनकर परिवार और देश दोनों का नाम रोशन कर सकती है। शिक्षा बेटियों को आत्मनिर्भर बनाती है। आत्मनिर्भर बेटी आर्थिक रूप से परिवार का सहयोग करती है और आवश्यकता पड़ने पर सही निर्णय लेने में सक्षम होती है। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, तनाव कम होता है और परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर बनता है। स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुख समृद्धि की स्थिति है। एक शिक्षित बेटी परिवार में प्रेम, स्वच्छता, अनुशासन और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का वातावरण बनाती है। वह बच्चों को पौष्टिक भोजन, नियमित पढ़ाई, खेलकूद, अच्छी जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम बेटियों को समान अवसर दें, उनकी शिक्षा में निवेश करें और उनके सपनों को उड़ान दें, क्योंकि शिक्षित बेटी ही स्वस्थ परिवार, सशक्त समाज और विकसित राष्ट्र की मजबूत आधारशिला है। प्रिय श्रोताओं, याद रखिए, बेटी की शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा नहीं, बल्कि पूरे परिवार के स्वस्थ, खुशहाली और समृद्धि की कुंजी है। आइए हम संकल्प लें कि हर बेटी को पढ़ाने, आगे बढ़ाने, अपने सपनों को साकार करने का पूरा अवसर देंगे। जब हर बेटी शिक्षित होगी, तभी परिवार स्वस्थ होगा और हमारा देश सशक्त एवं समृद्ध बनेगा। दोस्तों, कहते हैं ना, दिल है तो जिंदगी है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव, असंतुलित खानपान और शारीरिक निष्क्रियता ने हमारे दिल की सेहत को गंभीर चुनौतियां दे दी हैं। यही कारण है कि हृदय रोग आज केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि युवा वर्ग भी इस बीमारी की चपेट में आ गए हैं। इसलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बातें करेंगे हृदय रोग के कारण, बचाव और सावधानियां विषय पर। और चर्चा के लिए आमंत्रित है हमारे खास मेहमान डॉक्टर राजेश कुमार झा, और इनसे बातें करेंगे श्री गौरव कुमार जी।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। हृदय रोग आज एक सामान्य समस्या बन गया है, साथ ही हृदय से संबंधित किसी भी समस्या का कोई भी लक्षण पता चलने पर यह एक डरावना अनुभव भी बन जाता है। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर राजेश कुमार झा, जो सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं राज हॉस्पिटल रांची में, और साथ ही वाइटैलिटी कार्डियक क्लिनिक हीनू के भी वरिष्ठ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: जी नमस्कार, और सभी श्रोतागणों को भी मेरा नमस्कार। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली आज के दिनों में, स्पेशली पोस्ट कोविड, जब से सोशल मीडिया भी आ गया है तो हम लोग बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ देखते हैं लोगों के बारे में कि सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो कि काफ़ी डरावना है और लोग काफ़ी डरे हुए हैं इन सब।
1: जी सर, थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को हृदय की कार्यप्रणाली के संबंध में बताएं जिससे उनको जानकारी मिल सके इस विषय पर।
2: जी, हार्ट हमारा एक पंपिंग ऑर्गन होता है, जो ब्लड को, जो प्योर ब्लड हमारा लंग से, जो इम्प्योर ब्लड, खराब ब्लड खून जो होता है, गंदा खून, वो हमारे हार्ट में के थ्रू लंग में जाता है। लंग में फिर वो प्योर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर वो वापस हार्ट में आता है और हार्ट उसको पंप करके पूरे शरीर में फैलाता है। अब हार्ट में दो तीन तरह की बीमारियां जनरली लोगों को देखने को मिलता है। एक होता है जो कंजेनाइटल, जो जन्मजात होता है, जिसमें हार्ट में छेद, जो स्ट्रक्चरल, जो बनने के टाइम ही दिक्कत होती है। दूसरा होता है, जो हमारे इंडिया में काफ़ी कॉमन है, झारखंड में भी काफ़ी कॉमन है, कि इन्फेक्शन होने की वजह से वाल्व में प्रॉब्लम होता है। ये सब बीमारियां जनरली 20-25 साल तक लोगों को पता चल जाता है। आजकल चूंकि इन्वेस्टिगेशंस काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं, इकोकार्डियोग्राफी होता है तो तुरंत पता चलता है। तीसरी जो बीमारी है वो यंग एज के बाद होता है। पहले हम सुनते थे हार्ट अटैक 50-60 साल के बाद लोगों को होता था, अब हम सुनते हैं 30-35 साल में होने लगा है। तो इसमें क्या होता है कि हार्ट के चारों तरफ आर्टरीज होती हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, ताकि पंपिंग करने में उसको जो एनर्जी चाहिए वो उस ब्लड से मिलता है। उसी, वो जो आर्टरीज होती हैं उसी में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होता है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है। और इसी के साथ एक और बीमारी होती है हार्ट ब्लॉक, जिसमें करंट हार्ट के थ्रू बहता है, हार्ट को चलाने के लिए जो ब्रेन से जो कनेक्शन चाहिए वो कनेक्शन बीच में हार्ट के मसल के बीचों बीच होता है, उसमें कैल्शियम डिपोजिशन होता है एज की वजह से। पहले 70-80 साल में लोगों को ये बीमारियां होती थी, बट ये दोनों बीमारियां अब प्री मैच्योरली इंडिया में यंग एज में लोगों को ज़्यादा हो रहा है। और इसका जो मुख्यतः कारण है, जो पहला कारण मैं समझता हूँ, वो हमारे लाइफस्टाइल, जीवन शैली में बदलाव है। क्योंकि अगर हम मान लें कि सिंपल रांची में ही हम मान लें कि पहले हम लोग फिरायलाल चौक से ओवरब्रिज, जो कि लैंडमार्क दोनों डेस्टिनेशन है, बचपन से काफ़ी सालों से लोग जानते हैं, वो लोग पैदल चलते थे। अब ना पैदल चलने के लिए जगह है, ना हमारे पास समय है। ये जो समय का अभाव है, ये सबसे बड़ा कारण है यंग लोगों में इस हार्ट की बीमारी होने के लिए।
1: सर, जो जीवन शैली से संबंधित जो आपने बात कही, तो एक तो ये बचाव का उपाय हो गया कि अगर जीवन शैली में हम सुधार करें तो इससे हृदय संबंधित समस्याओं से बचा

0: जा सकता है। यदि कोई समस्या आती है सर, तो मुख्यतः चूंकि डर इस बात का रहता है कि एक ही हृदय है और उससे एक भय उत्पन्न हो जाता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो कब हम लोगों को तुरंत चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए?
1: जैसे किसी को दो तीन चीजें होती हैं, स्टैंडर्ड हम लोगों के प्रोटोकॉल में है कि दो फ्लोर, टू फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, मतलब अगर दो फ्लोर सीढ़ी एक झटके में अगर कोई चलते हैं बिना सांस फूले हुए, वो एथलेटिक हैं तब तो चार फ्लोर भी चल सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल आदमी जो कम चलता फिरता है उनके लिए अगर दो फ्लाइट ऑफ स्टेयर आप आराम से चल लेते हैं तो आपका माना जाता है कि आप ठीक ठाक हैं। अगर आप दो तीन किलोमीटर पैदल चलते हैं और अपने साथ वाले के साथ इक्वली बराबर चलते हैं बिना हाँफे हुए, तो मतलब दोनों ठीक हैं। अगर उसमें से एक को भी थोड़ी दूर चलने पर आपको छाती में जकड़न, सांस फूलना, या फिर ऐसा लगता है कि छाती में कुछ चोकिंग जैसा लग रहा है, कुछ पकड़ जकड़ गया है, फिर आप रुकते हैं तो 5 मिनट में ठीक हो जाता है, तो इमीडिएटली आपको किसी डॉक्टर से, फिजिशियन से सलाह लीजिए, या कार्डियोलॉजिस्ट भी आजकल हर जगह अवेलेबल है, उनसे लीजिए। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर अचानक से आप घर पर हैं, कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, अचानक से आपको हार्ट बर्न जैसे एसिडिटी टाइप कुछ फील होता है, जो कि आपको लगता है कि आज ये थोड़ा अलग है बाकी दिनों से, जो पानी पीने से या फिर करवट लेने से किसी चीज़ से चेंज नहीं होता है बल्कि वो थोड़ा बढ़ता है चलने फिरने से, तो और इमिडिएटली अगर आपको सडन ऑनसेट, आपको अचानक से सांस फूलने की प्रॉब्लम, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिस जो होने पर आपको इमीडिएटली किसी भी जगह जाकर, गांव में भी ईसीजी होता है, एक ईसीजी करवाकर किसी भी फिजिशियन से जरूर कंसल्ट कर लें। कई लोग क्या होता है, इसको एसिडिटी गैस्ट्राइटिस समझकर डाइजीन या इनो कुछ ले लेते हैं, थोड़ा सा राहत मिलता है, फिर वो दो तीन दिन खींचते हैं, उसके बाद जाने पर क्या होता है, हार्ट का जो मांसपेशी है उसको ब्लड सप्लाई कम मिलता है, जिसकी वजह से फंक्शन खराब हो जाता है और सडन कार्डियक अरेस्ट ऐसे ही लोगों को होता है जो हम लोग सुनते हैं कि में एक्सरसाइज कर रहे थे या पैदल चल रहे थे या फिर रात में सोए थे, सुबह जगे नहीं। हर लोगों में इनिशियल नेचर आपको इंडिकेशन जरूर देता है कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। हम उस इंडिकेशन को अगर अर्ली पढ़ लें और इमीडिएटली कंसल्ट कर लें तो जान बचाया जा सकता है।
0: अब सर, इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स और अदर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स इतनी है कि इसका पता लगाया जा सकता है।
1: जी, जी।
0: मुख्य जो आवश्यकता है वो ये है कि किसी भी प्रकार के असामान्य लक्षण को अगर पता लगता है तो तुरंत हम लोगों को चिकित्सक के पास पहुंचना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: सर, ये विंडो जिसको कहते हैं कि कितना समय होता है व्यक्ति के पास जब कोई इस प्रकार का अनकॉमन लक्षण आता है, असामान्य लक्षण आते हैं, तो समय कितना होता है?
1: अब ये इंटेंसिटी ऑफ लक्षण पर है, जो लक्षण है वो इंटेंसिटी कितना है। ज्यादा इंटेंसिटी है तो आपको इमीडिएटली जाएंगे तो आपको बेनिफिट उतना ही ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जो गोल्डन आवर होता है, हार्ट अटैक अगर किसी को आया है, गोल्डन आवर 3 घंटे को बोलते हैं। रांची जैसे शहरों में अब एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की सुविधाएं आपको एक घंटे का मैक्सिमम डिस्टेंस होगा जो रांची के आसपास के लोग भी आ सकते हैं। दूसरे जगह नहीं है तो अदर सुविधाएं होती हैं, इन जो दवाइयां होती हैं, खून पतला करने वाला ब्लड थिनर इंजेक्शन होता है वो इमीडिएटली लग सकता है। तो इसमें विंडो पीरियड के अंदर जाएंगे तो हमको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। अगर हम नहीं जा पाए तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन 24 घंटे से 36 घंटे जो ट्रायल कहता है कि अगर उसके अंदर में पेशेंट चले जाते हैं, डायग्नोज हो जाते हैं, तो उनको इमीडिएटली राहत मिल सकता है और बेनिफिट काफी ज्यादा।
0: सर, एक आजकल जो एक डाइट का प्रचलन चला है कि कई बार अचानक से लोग एक प्रकार का भोजन छोड़कर कुछ विशेष प्रकार का भोजन करने लगते हैं, जैसे कीटोन डाइट हो गया या फैट फ्री डाइट हो गया, तो क्या इसका भी हृदय के सामान्य स्वास्थ्य पर असर पड़ता है?
1: बिल्कुल पड़ता है। देखिए, हमारा जो शरीर है वो एक सिस्टम है, वो एक सिस्टमेटिक वे में चलता है, जिसको सब चीज़ की रिक्वायरमेंट है और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो अपने से ऑटो एडजस्टेड होता है, सारी चीज़ों ऐसा भगवान ने बनाया है हमारे शरीर में। अब अगर हम एक्सट्रीम किसी भी चीज़ के लिए, चाहे हम अपने जॉब में एक्सट्रीम जाएं या अपने शरीर के साथ एक्सट्रीम कुछ भी करेंगे सडनली, तो सडनली उसको एडजस्ट होने में काफ़ी समय लगेगा। जैसे कि वाइन है, लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा वाइन लेना चाहिए, हार्ट के लिए अच्छा होता है, लेकिन वो एक्चुअल में किसके लिए है? वो है जो ठंडे प्रदेश में लोग रहते हैं, वहाँ उनको शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए वो चीज़ बचपन से उनको आदत होती है, तो वो आदत रहता है, तो उनके लिए वो हानिकारक नहीं है। लेकिन वही चीज़ हम यहाँ पर अगर करते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक्सट्रीम कुछ भी नहीं करना है, बल्कि कुछ भी चीज़ हम करते हैं तो उसको धीरे धीरे करेंगे, बॉडी को धीरे धीरे करें, कोई भी अच्छा चीज़ है तो उसको हमारे लिए, शरीर के लिए अच्छा है, अगर हम सडनली करेंगे या एक्सट्रीम पर तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है।
0: अति अति सर्वत्र वर्जयेत वाला जो कॉन्सेप्ट है सर, वो यहाँ चलता है। ये मेरा अगला प्रश्न होने वाला था सर, चूंकि हमने जब झारखंड की एंडेमिक कार्डियोलॉजी से रिलेटेड समस्याओं की बात की, तो नशे की एक समस्या आती है सर, जब लोग जस्टिफाई करने लगते हैं कभी हार्ट हेल्थ के नाम पर, कभी अटेंशन के नाम पर, तो नशा पान करने वाले लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे एक वरिष्ठ हृदय रोग चिकित्सक के तौर पर?
1: देखिए, ट्रायल्स जो एम्स में हुए थे उसमें यही बताता है कि जो एशियन जीन है हमारा नशा पान के लिए, स्पेशली शराब के लिए, तो बिल्कुल ही एडजस्टेड नहीं है। तो नशा पान किसी भी क्वांटिटी में अलाउड नहीं है एशियन के लिए, और हम लोग भी एशियन हैं, इंडियन, तो हमारा जो जीन है वो वेस्टर्न के कंपैरिजन में अलग है। दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया में हर जोन का एक अलग अलग फूड स्टाइल है, खाने का परंपरा है, तो वो जिस एरिया से जो बिलोंग करते हैं, ऐसा देखा गया कि जो इंडियन अमेरिका में माइग्रेट हो गए लेकिन उनको अमेरिका में जाने के बावजूद भी, चूंकि जीन यहाँ का है तो लाइफस्टाइल उन्होंने अमेरिकन किया, तो उनको हार्ट अटैक अर्ली होना हुआ है, ऐसा स्टडी है। तो जो जिस जोन के हैं उस जोन में उनके लिए जो डाइट पैटर्न, खाने का जो तरीका है और जीवन शैली है, वो उसको कंटिन्यू मेंटेन करके रखना चाहिए आगे अपने बाकी जो बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए।
0: श्रोताओं, एक बड़ा महत्वपूर्ण, सर ने यहां पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि आप अपनी जेनेटिक्स को नहीं बदल सकते हैं, अपनी जीवन शैली को आप जरूर बदल सकते हैं। तो ध्यान इस बात का रखें कि स्वस्थ जीवन शैली की तरफ जाएं, नियमित अपनी जांच कराएं, और यदि कोई समस्या हो तो तत्काल चिकित्सक से परामर्श करें। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
2: दोस्तों। अपने दिल को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए हमें अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। खान पान के अलावे शारीरिक व्यायाम, योग और दिनचर्या में बदलाव करके हम अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। तो मित्रों, अभी हम सुन रहे थे शहर के जाने माने और प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार झा को, और इनसे बातें कर रहे थे श्री गौरव कुमार जी। तो मित्रों, जानकारी और भेंटवार्ता का यह सिलसिला को यहीं विराम देते हैं, लेकिन आपका साथ अभी यहीं बना रहेगा। अब आइए बचे हुए कुछ समय में कुछ पल गीत संगीत का नाम करते हैं। पेश है सावन के महीने को खुशनुमा, यादगार, दिल को सुकून देने वाले और चेहरा को मुस्कान देने वाला यह गीत।

जी हाँ दोस्तों, रिमझिम बारिश के सुहाना समा का आपने खूब आनंद लिया होगा, क्योंकि मौसम ही कुछ खास है और महीना है सावन का। तो दोस्तों, अभी हमने सुना फिल्म जैसे को तैसा से यह प्यारा सा गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गीत के इस खूबसूरत सफर के बाद हम चलते चलते एक और खास विषय की आपके साथ चर्चा करते हैं, जनसंख्या संतुलन और विकास। दोस्तों, जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन आवश्यक है। दोस्तों, आज हम एक और ऐसे खास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर परिवार, हर समाज और पूरे देश के भविष्य से जुड़ा है। विषय है जनसंख्या संतुलन और विकास। मित्रों, किसी भी देश की जनसंख्या उसकी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है और सबसे बड़ी चुनौती भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि जनसंख्या संतुलित है या नहीं। यदि जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का अनुरूप हो तो यह विकास की गति को तेज करती है, लेकिन यदि जनसंख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ती जाए तो विकास की राह और भी कठिन हो जाती है। दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देशों में शामिल है। यहाँ युवा आबादी बड़ी संख्या में है, जो देश की शक्ति है। यदि इस युवा शक्ति को अच्छी शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार मिले तो यह देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। लेकिन यदि जनसंख्या बढ़ती रही और संसाधन सीमित हो तो बेरोजगारी, गरीबी, प्रदूषण, कुपोषण और आवास जैसी समस्या भी बढ़ने लगती है। जनसंख्या संतुलन का अर्थ केवल जनसंख्या कम करना ही नहीं, बल्कि उसे उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप बनाए रखना है। जब परिवार छोटा होता है तो माता पिता अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और बेहतर जीवन स्तर दे पाते हैं। इससे पूरा समाज का जीवन स्तर ऊंचा उठता है। जनसंख्या संतुलन बनाए रखने में महिलाओं की शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। एक शिक्षित महिला परिवार नियोजन, पोषण, स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक होती है। इसलिए कहा जाता है, यदि समाज को विकसित बनाना है तो बेटियों की शिक्षा और महिलाओं का सशक्तिकरण सबसे आवश्यक कदम है। दोस्तों, सरकार भी परिवार कल्याण कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के माध्यम से जनसंख्या संतुलन की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन केवल सरकारी योजना ही नहीं पर्याप्त है, प्रत्येक नागरिक का भी यह कर्तव्य है कि यह जिम्मेदारी अभिभावक बने और अपने परिवार तथा समाज के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचकर निर्णय ले। प्रिय श्रोताओं, हमें यह समझना होगा कि विकास केवल बड़ी इमारतों, चौड़ी सड़कों या आधुनिक तकनीक से नहीं होता। वास्तविक विकास तब होता है जब हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मानजनक रोजगार और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध हो। इसके लिए हमें जरूरी है अपनी सोच बदलने की। तो साथियों, आइए हम सब मिलकर यह संकल्प ले कि जागरूक नागरिक बनेंगे, शिक्षा को बढ़ावा देंगे, परिवार नियोजन के महत्व को समझेंगे और समाज में जनसंख्या संतुलन के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करेंगे। क्योंकि संतुलित जनसंख्या ही समृद्ध परिवार, विकसित समाज और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम यही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज की प्रस्तुतियां, बातें, गीत संगीत का कार्यक्रम आपको खूब पसंद आया होगा। तो मित्रों, अब दीजिए अनुमति अपने मित्र युवराज को और फिर से होगी मुलाकात अगले सप्ताह नए विषयों, नई जानकारियों और नए गीतों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स तथा 100.5 मेगा हर्ट्स पर आज प्रस्तुत है। आज कार्यक्रम का विवरण इस प्रकार से है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ सरगम। 5 बजे आप सुन पाएंगे, 5:01 पर आप सुन पाएंगे प्रादेशिक समाचार। 5:02 पर समय होगा कार्यक्रम युवाणी का, जिसके सूत्रधार होंगे वैभवी श्रेया और प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। 5:30 पर आप सुन पाएंगे श्रमिक लोक।

दोस्तों 5:30 पर समय होगा कार्यक्रम श्रमिक लोक का। चर्चा होगा भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। 6 बजे सुन पाएंगे आप प्रादेशिक समाचार।

किसान वाणी का समय होगा 6:02 पर। चर्चा होगी आधुनिक कृषि तकनीकों का महत्व, भेंटकर्ता प्रभु शरण, और आप सुन पाएंगे 6:32 पर हमारी दुनिया। चर्चा का विषय होगा माता पिता को उचित सम्मान। वार्ताकार होंगे गीता कुमारी सिंह और प्रस्तुति प्रभु शरण की।

6:32 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हमारी दुनिया। चर्चा का विषय होगा माता पिता को उचित सम्मान दें। वार्ताकार होंगे गीता कुमारी सिंह और प्रस्तुति प्रभु शरण की। 7:00 आप सुन पाएंगे प्रादेशिक समाचार। 7:06 पर पुनः आप सुन पाएंगे प्रादेशिक समाचार। 7:11 पर आप सुन पाएंगे जिले में आज तक।

दोस्तों लोकगीत का समय होगा 7:15 पर। कलाकार होंगे कृष्णा हेमब्रम और उनके साथी। 7:20 पर आप सुन पाएंगे क्षेत्रीय समाचार। भाषा होगी नागपुरी, उरांव, मुंडारी, हो और संथाली में।

7:45 पर आप सुन पाएंगे समाचार ध्वनि चित्र। 8 बजे समय होगा इस सप्ताह संसद में। 8:15 पर आप सुन पाएंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा।

8:38 पर कार्यक्रम होगा सुर्खियों में। 8:45 पर आप सुन पाएंगे समाचार संध्या। 9 बजे होगा न्यूज एट नाइट और 9:15 पर आप सुन पाएंगे उर्दू में समाचार। ये थे आज के प्रमुख कुछ जानकारियां जो प्रस्तुत की जाएंगी।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स तथा 100.5 मेगाहर्ट्ज पर मैं राधा कार्यक्रम सांसरगम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, दिन भर के भाग दौड़ के बाद शाम ही ऐसा वक्त होता है जब हम थोड़े सुकून की सांस लेते हैं। तो चलिए मन को शांत कर ध्यान लगाए और प्रकृति से जुड़कर उनकी उपस्थिति का अनुभव करें। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा प्रभु का नगमा।

0: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
0: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। सेवा जोहार, तैयार हो जाइए इतिहास के सबसे बड़े सांस्कृतिक महाकुंभ का गवाह बनने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार लेकर आ रही है झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026। आगामी 9 और 10 अगस्त को रांची का मोराबादी मैदान गूंजेगा 5000 से अधिक लोक कलाकारों, झूमर, छऊ और पारंपरिक जनजातीय प्रस्तुतियों से। महोत्सव में होंगे भव्य उद्घाटन एवं सम्मान समारोह, कला एवं शिल्प प्रदर्शनी, पुस्तक मेला, स्वतंत्रता सेनानी विरासत प्रदर्शनी, चित्रकला प्रदर्शनी, ट्राइबल फैशन शो, रॉक बैंड की शानदार प्रस्तुतियां, इमर्सिव जोन और 700 ड्रोन का भव्य शो, आधुनिक 5D थिएटर और AI तकनीक इस अनुभव को और भी यादगार बनाएंगे।
2: यहां मिलेगा पारंपरिक जनजातीय खान पान, आदिवासी व्यंजन प्रतियोगिता, आकर्षक हस्तशिल्प, नॉलेज पार्टनर्स और लेखकों से संवाद का अवसर। सब परिवार आइए और अपनी संस्कृति के रंग में घुल जाइए। अपनी परंपरा और अपनी पहचान का उत्सव गर्व के साथ मनाइए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जन हित में जारी।
3: साथियों, हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं। हमें लगता है खुश रहना काफी मुश्किल काम है, क्योंकि खुश रहने के लिए खास तरह के हालात होने चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है। खुश रहने के लिए हमें अपनों के साथ होना चाहिए। उनके दिल तक जाने के लिए उनके जज्बात को समझना होगा, उनसे करीबी बढ़ाएं और ये गीत गुनगुनाएं।

दोस्तों, व्यस्त जिंदगी में हम अपने पुराने दोस्तों को भूल रहे हैं, जिनके साथ बचपन की चटपटी लम्हे गुजारी थी। अगर वो अचानक हमें मिल जाएं या बिना मतलब उन्हें फोन लगाकर उनका हाल चाल पूछ लें, तो सोचिए एक अजीब सा सुकून का एहसास और खुशी के पल को हम महसूस कर सकेंगे, है ना?

साथियों, जीवन में बहुत सारे पहलू हैं। कोई जरूरी नहीं कि जीवन हमेशा खुशियों से भरा। कभी निराशा, कभी मायूसी, हताशा, असफलताओं का सामना भी हमें करना पड़ता है। तो क्या हम हार मानकर बैठ जाएं? हम आशावादी रहें, क्योंकि कठिनाइयों का सामना करने वाले ही नया रास्ता निकाल पाते हैं। आप मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, गुनगुनाते रहें।

0: आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। शहीद निर्मल महतो की शहादत दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जमशेदपुर के कदमा उलियान पहुंचे। उन्होंने शहीद निर्मल महतो के समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महापुरुषों और आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान से अलग झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ी खबरों के प्रकाशन से पहले तथ्यों और जमीनी स्थिति का सत्यापन जरूरी है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में मकान संख्या को पहले से कैरी फॉरवर्ड किया गया है। जहां मकान संख्या नहीं है वहां दावा आपत्ति अवधि में बीएलओ द्वारा नोशनल नंबर दिए जाएंगे। झारखंड आदिवासी महोत्सव के मद्देनजर रांची में यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष एडवाइजरी जारी की है। कल सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक जतरा कार्यक्रम के दौरान जेल चौक से करमटोली चौक, एसएसपी आवास मोड़ और मोराबादी के बापू वाटिका तक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर लोहरदगा के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नदिया परिसर में आज पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। हजारीबाग पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोस्ट वांटेड अपराधी प्रिंस खान और राहुल दुबे गिरोह से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी अमन कुमार ने बताया कि इन अपराधियों से पूछताछ में 25 जुलाई की रात 13 माइल के पास एनटीपीसी की कोयला उत्खनन गाड़ी पर फायरिंग की घटना में संलिप्तता सामने आई है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी चाईबासा है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम अभिवरण 5:05 पर होगा आज का गुलदस्ता कार्यक्रम। 5:30 सुनिएगा फिल्म संगीत, 6:00 मुख्य समाचार और 6:02 पर बंगला कार्यक्रम सातरंग प्रसारित होगा।

आपका स्वास्थ्य। ये कार्यक्रम सुनिए शाम 6:30 बजे, 7 बजे प्रादेशिक समाचार होंगे, उसके बाद ज़िले में आजकल, आपकी पसंद कार्यक्रम होगा 7:15 बजे।

किसान वाणी ये कार्यक्रम प्रसारित होगा 7:30 पर। 8 बजे इस सप्ताह संसद में का प्रसारण किया जाएगा। 8:15 फरमाइशी नगमे कार्यक्रम रजनीगंधा में। 9:45 समाचार संध्या का प्रसारण होता है। 9:00 News@9 और 9:15 सुनिए आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। महफिल गजलों का ये कार्यक्रम होता है 10:00 आकाशवाणी चाईवासा से। 10:30 आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम सुरों के रंग में। 11:00 हिंदी समाचार, 11:05 पर इंग्लिश न्यूज़ और आज की सभा संपन्न होगी 11:11 पर। तो ये था इस सभा का कार्यक्रम अभिवरण।

0: पेश खिदमत है आज का कार्यक्रम गुलदस्ता। इसमें हम लेकर आए हैं चंद भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का आगाज रफी साहब की आवाज से।
1: मेरे दोस्त शादियां तो नसीब से होती हैं,

आज की कार्यक्रम में गुलदस्ता में आप सुन रहे थे चंद भूले बिसरे यादगार नगमे। ये आकाशवाणी चाईवासा है। अब सुनिए फिल्म संगीत, जिसके अंतर्गत आज हम लेकर आए हैं एक ही फिल्म 1947 अर्थ के चंद गीत। आवाज़ सुखविंदर सिंह की।

फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे एक ही फिल्म 1947 अर्थ के चंद गीत।

ये आकाशवाणी चाईबासा है। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे इस मुख्य समाचार।

अब तक के मुख्य समाचारों के साथ में पूनम केरकेट्टा। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए मार्च कर रहे थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए और छात्रों की मांगों पर सरकार को गंभीरता से कदम उठाना चाहिए। शहीद निर्मल महतो की शहादत दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जमशेदपुर के कदमा उलियान पहुंचे। उन्होंने शहीद निर्मल महतो के समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महापुरुषों और आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान से अलग झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है। साहिबगंज जिले में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज और कल यानी जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसी क्रम में बरहेट विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी विजय कुमार ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रामगढ़ व्यवहार न्यायालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने त्वरित न्याय और जरूरतमंदों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। अप्रैल से जून 2026 के बीच न्यायालय में दर्ज 1410 नए मामलों में से 832 मामलों का निष्पादन किया गया। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
1: हम बुजुर्ग पहले जब बीमार पड़ते थे तो सबसे बड़ी तकलीफ होती थी अपनों पर बोझ बन जाने की। खर्चों की फिक्र से अपनी बीमारी ही छुपा लेते थे। लगता था ऐसे ही चलेगा, पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की हमारी चिंता और हमें भी दी आयुष्मान की गारंटी। आयुष्मान वह वंदना कार्ड से आज 70 साल और उससे अधिक आयु के हम जैसे सभी वरिष्ठ नागरिक हैं 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के हकदार।
2: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें, घर बैठे आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में आप सबों का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रमेश दास। कैसे हैं श्रोताओं? हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज हम सबसे पहले बातें करते हैं स्तनपान पर। जी हां, जन्म से पहले एक घंटे के भीतर स्तनपान नवजात शिशुओं के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत है। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध शिशु के लिए अमृत समान होता है, जो उसे संक्रमणों से बचाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। जी हाँ, मैं कहूँगा कि जन्म से पहले एक घंटे के भीतर आप स्तनपान शुरू जरूर करें। शिशु को 6 माह तक केवल दूध माँ का दूध ही दें और 6 माह के ऊपरी आहार के साथ 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक स्तनपान जरूर रखें, या हम यूँ कहें कि जारी रखें। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु और स्वस्थ झारखंड के निर्माण में आपका सहयोग ही सबसे बड़ा निवेश है।

श्रोताओं, आज हम बातें करेंगे कुपोषण पर। जी हाँ, कुपोषण तब होता है जब शरीर को सही मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज और ऊर्जा जैसे पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। यह बच्चों और देश के विकास में एक बड़ी बाधक है। इससे निपटने के लिए सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि हम सब यह नैतिक और सामाजिक दायित्व बनता है कि हम समाज को स्वास्थ्य या स्वस्थ बनाने में अपना सहयोग करें। श्रोताओं, कुपोषण के मुख्य कारण संतुलित आहार की कमी, भोजन में जरूरी पोषक तत्वों का अभाव, गरीबी और महंगाई यानी पौष्टिक भोजन न खरीद पाना, जागरूकता की कमी, सही खान पान और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक ना होना, बार बार बीमारी या संक्रमण और स्वच्छता की कमी से शरीर का कमजोर होना। श्रोताओं, इसमें हमारा दायित्व और कर्तव्य है कि इस पर हम जागरूकता फैलाएं, जैसे अपने आसपास के लोगों और गरीब परिवारों को पौष्टिक आहार के बारे में बताएं, गर्भवती महिलाओं की देखभाल यानी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा, स्थानीय स्तर पर मदद यानी आंगनवाड़ी केंद्रों और सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद तक पहुंचाने में हमें मदद करनी होगी। साथ ही साथ साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना होगा, यानी पीने के साफ पानी और व्यक्तिगत स्वच्छता को बढ़ावा देना ताकि बीमारियां ना फैले। संतुलित भोजन का प्रचार प्रसार करना, जी हाँ, लोगों को मोटे अनाज, हरी सब्जियां, दालें और फल खाने के लिए प्रेरित करना। तो इन सारी अगर हम बातों पर ध्यान दें तो हम कुपोषण की समस्या से निजात पा सकते हैं।

0: श्रोताओं, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ अन्य विषय पर भी हम बातें करें, यानी आइए कुछ हम जानकारी लेते हैं डॉक्टर जगन्नाथ हेम्ब्रम से। सबसे पहला आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो पश्चिम सिंहभूम है, कुपोषण के क्षेत्र में इसका स्थान क्या है?
1: देखिए, कुपोषण का स्थान कोई बहुत सम्मान वाली चीज़ नहीं होती है, लेकिन कई वर्षों से हमारा जो पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है वो पूरे देश भर में टॉप 5 में सर्वोच्च 5 संख्या के मामले में सर्वोच्च 5 के अंदर आता है। कि कुछ वर्षों पहले ये चौथी पायदान में था, तो बहुत अंतर दिखता नहीं है, लेकिन वो कुपोषित बच्चों की संख्या के मामले में हमारा जो पश्चिमी सिंहभूम है वो पूरे भारतवर्ष में उच्चतम जो 5 जो राज्य हैं उसके अंदर में आता है।
0: कुपोषण के क्षेत्र में अगर हम देखें तो अगर इसका अगर हम निदान करना चाहें तो इसका पहला जो प्रबंधन है वो निचले स्तर यानी हम आंगनवाड़ी केंद्र कह सकते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं थोड़ा और पीछे जाना चाहूँगा, आंगनवाड़ी केंद्र कहने का मतलब आप कहना चाह रहे होंगे कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनकी जो देखभाल जो घरों में परिवारों में होने के अलावे एक जो केंद्र होता है, हर एक गांव में एक केंद्र होता है, आंगनवाड़ी केंद्र आप हम सभी जानते हैं, तो वहाँ उनकी पोषण की खास देखभाल की जाती है। लेकिन मैं थोड़ा और पीछे किस तरह से जाऊंगा कि थोड़ा और पीछे जाने से ये जो हमारे जो माताएं जो होती है जो इन कुपोषित बच्चों को जन्म देती है उनके ख्याल से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि ये बात लोगों को ये पता चले, और ये हम सभी को पता है लेकिन हम सभी इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। एक कुपोषित माँ जो है, एक कुपोषित माँ, आप कुपोषित बच्चे तभी से बोल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक कुपोषित माँ जो है कुपोषित बच्चे को ही पैदा करेगी, तो उनका जो ये जो कुचक्र है, ये जो चक्र है, ये उसकी शुरुआत तब से होती है जब ये जीवन की शुरुआत होती है। जीवन की शुरुआत जो है ना वो गर्भावस्था से होती है। गर्भावस्था में हमारे जो माताएं हैं उन्हें क्या मिलता है पोषण के लिए आप सभी को पता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो उनके पोषण का ख्याल पहले रखा जाए ताकि हमारे बच्चे कुपोषित पैदा ही ना हो। और कुपोषित पैदा होने के बाद आपकी बात यहाँ से सच साबित होती है कि आपका कहना है कि उसकी जो पहली शुरुआत जो होती है वो आंगनवाड़ी केंद्रों से शुरुआत होती है, मैं यहाँ से सहमत हूँ। तो अब कुपोषित बच्चों की जो पालन पोषण की जो दूसरा फेज जो शुरुआत होती है वो घरों में परिवारों में और आंगनवाड़ी केंद्रों में होती है, तो आंगनवाड़ी केंद्र यथासंभव अपनी प्रयास को अंजाम दे रहा है। लेकिन भी पश्चिमी सिंहभूम कहिए या हमारा झारखंड राज्य कहिए, कुपोषण की जो समस्याओं से जिस तरह से जूझ रहे हैं, भले हम कुछ समय के लिए या कुछ देर के लिए उन समस्याओं से अपनी नज़र फेर लें, लेकिन ये बाजाबता अभी भी कायम है और ये हमें दंश दे रहा है।
0: ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम देखें तो कुपोषण की समस्या खासकर पश्चिम सिंहभूम में बहुत ज़्यादा दिख रहा है,

0: कारण क्या है?
1: कुछ वर्षों पहले इस पर एक बहुत बड़ी जो वाक युद्ध छिड़ी थी, मैं आपको बताऊंगा, वाक युद्ध छिड़ी थी कि ऐसा आखिर क्यों है, ऐसा आखिर, पहले बात तो समझा जा रहा है कि ऐसा क्या है, क्यों है। देखिए, ये जो आप बता रहे हैं कि पश्चिम सिंहभूम का जो क्षेत्र है, ये जो जो पारंपरिक जो कारण होते हैं कुपोषण के, उसके अलावे कुछ कुछ कारणों से और परेशान है, मैं कहूँगा। जैसे आप कहेंगे गरीबी, बिल्कुल है, मैं आप कहेंगे जागरूकता का अभाव, मैं बिल्कुल है कहूँगा, और पारिवारिक जो बिखराव, मैं कहूँगा पारिवारिक बिखराव। यहाँ ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ आप जो विधिवत विवाह की परंपराएं नहीं होती हैं, यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप का जो चलन ज़्यादा होता है। मतलब अब कई के किसी किसी गांव में आप पूछेंगे तो शायद आपको 25-30 सालों में कोई पारंपरिक विवाह की परंपरा नहीं हुई होगी, आप ऐसा सुन पाएंगे। तो जो एक चलन है कि भाई कहीं मेलाओं में गए, बाज़ार में गए और किसी से दोस्ती हो गई, लेकर के अपने घर आ गए, आप उसको डिक्लेयर करते हैं कि ये मेरी धर्मपत्नी है, कुछ दिनों उनके साथ आप रहते हैं, और उसके बाद अगर मान लें आपको नहीं अच्छा लगता है या फिर जो मैंने आपको थोड़ा एक विमुक्ति होती है, विरक्ति होती है, तो आप उनको छोड़ देते हैं। तो इन तरह के जो परिवारों से, जो इन तरह के जो कपल जो होते हैं, ये जो होते हैं, इनसे पैदा हुए बच्चे ना, इनके अक्सर नेगलेक्ट का शिकार होते हैं। तो इनको वो जो स्नेह मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता। उसके बाद मैं कहूँगा कि यहाँ नशा जो है ना, ये काफ़ी अंदर तक घुला मिला हुआ है। ये हमारी ग्रामीण माताएं जो है वो गर्भावस्था के दौरान भी नशा का भरपूर शिकार, भरपूर सेवन करती हैं, तो जिसके वजह से जो जो जो आवश्यक जो पौष्टिक पोषण जो है वो गर्भावस्था के दौरान जो मिलना होता है वो भी नहीं मिल पाता है। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है, और कुछ और चीज़ें हैं कि बहुत बड़े बड़े आपको परिवार मिलेंगे। किसी किसी जो जो कपल होंगे उनके आप 8, 10, 12 इस तरह के बच्चे आपको अक्सर मिलेंगे। कई कई मैं क्षेत्र में गया हूँ, मैं इस कुपोषण के क्षेत्र में कई बार काम किए, कई कई कपल से कभी कभी मैं उनके 7वें 8वें बच्चे का नाम पूछता हूँ तो वो नाम तक भी नहीं बोल पाते। इस तरह की भी समस्याएं आपको कभी कभी आपको देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से जो कपल अपने बच्चों के नाम नहीं याद कर पाता होगा, तो वो उनके पोषण का कितना ख्याल रखता होगा, आप समझ सकते हैं।
0: तो इस पर हम ये कहें कि अभिभावक के नज़रअंदाज के कारण ये कुपोषण की समस्या पड़ रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ अभिभावक ही नहीं, ये हमारा समाज भी जिम्मेवार है। हमारा जो समाज जो है, या समाज के जो ठेकेदार हैं, कि अगर मान लिया कोई परिवार, कोई कपल अगर कोई गलती कर रहा है, तो उसकी निगरानी के लिए कोई ना कोई तो आपके घर या समाज में, गांव या समाज में मौजूद है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत होती है तो उसको बाकायदा उसको नोटिस में लें, और उसकी बाकायदा अगर कुछ कानूनन कार्रवाई या फिर किसी तरह का सामाजिक ही सही किसी तरह का कार्रवाई होती है तो उसको लागू किया जाए, ताकि इन कपल्स को और बाकी लोगों को ये डर रहे कि हम हैं जो हमने जो गलती की है या हम जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसकी सज़ा कम से कम बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। और मैं कहूँगा कि हमारे सरकार की जो कार्यक्रम है, जो हमारे जो पोषण संबंधी और बाकी जो विकासात्मक जो कार्रवाई है, वो भी इन चीज़ों पर केंद्रित नहीं होती हैं। तो मैं कहूँगा कि इन चीज़ों पर ज़्यादा केंद्रित किया जाए, ताकि कि अगर लोग प्रोत्साहित होते हैं, अगर लोग मोटिवेटेड होते हैं, तो उनको ये कहने की ज़रूरत नहीं है, ये उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपन बच्चे के लिए पोषणात्मक जो चीज़ें हैं कहाँ से उपलब्ध कराएंगे। बस उनके दिलों में ये जगाने की ज़रूरत है कि ये आपके शरीर का अंग है, ये आपके राज्य का अंग है, ये आपके देश का अंग है, इसको आप यूं ही आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोगों को डर रहे कि हम अपने बच्चों के साथ इस तरह की नकारात्मक कार्रवाई नहीं कर सकते।
0: कुपोषण के क्षेत्र में अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, आप क्या कहना
1: चाहेंगे? मेरे ख्याल से आपके सवाल का जवाब इस पिछले मेरे वक्तव्य से मिल गया होगा, क्योंकि इस कुपोषण के क्षेत्र में कार्य करते करते करते हुए मुझे लगभग 15 साल हुए जा रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं देख पाता हूँ। मैंने कुपोषण उपचार केंद्रों में काम किया, मैंने कुपोषण के लिए क्षेत्रों में भी कार्य किया, लेकिन मैं जो वो भावनात्मक, जो सामाजिक, जो संवेदनात्मक जो बदलाव मैं देखना चाहता हूँ वो दिखी नहीं, चाहे वो अभिभावकों में हो, चाहे वो हमारे जिले के या राज्य के जो पदाधिकारियों में हो, ये दिखी नहीं। इस नाते हम लोगों ने क्या किया है कि लोग जो कुपोषण से ग्रसित हैं उनका उपचार किया, हमने ये कभी नहीं कोशिश किया कि ये कुपोषण ना हो। ये कुपोषण आखिर हो भी रहा है तो इसके जो कारण हैं उन पे हम कार्य कर सकें और उन कुपोषित जो का जो ग्रसित बच्चे हैं उनके जो होने की जो जो जो कारण हैं उन पर कार्य कर सकें। ये मैं जो पिछले एक मिनट के पहले के वक्तव्य को मैं दोहराना चाहूँगा कि हमारी भावनाएं, हमारी जो संवेदना है इन बच्चों के प्रति,

श्रोताओं, अभी हम जानकारी ले रहे थे कुपोषण कारण व बचाव। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर जगन्नाथ हेम्ब्रम, जो प्रभारी हैं कुपोषण उपचार केंद्र चैंबासा के। अब आइए कुछ और जानकारी लें, उससे पहले सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

0: समय में ज्यादा मुनाफा बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कम समय में ज्यादा मुनाफा बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, इस देशभक्ति गीत के बाद आइए कुछ और हम जानकारी लेते हैं फाइलेरिया के बारे में। जी हाँ, जिसे हम हाथी पाव कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि फाइलेरिया बीमारी कितना खतरनाक है? नहीं ना? तो चलिए मैं आपको आज बताता हूँ कि फाइलेरिया को आमतौर पर हाथी पाँव के नाम से जाना जाता है। यह बीमारी मच्छर के काटने से होता है। फाइलेरिया दूसरी सबसे ज़्यादा विकलांग एवं कुरूपता कराने वाली बीमारी है। यह शरीर के और भी अंगों को प्रभावित करता है, जैसे हाथ, पैर, स्तन और हाइड्रोशील। इसका संक्रमण अधिकतर बचपन में ही हो जाता है और बीमारी का पता चलने में 5 से 15 साल लग जाते हैं। हाइड्रोशील का इलाज ससमय संभव है, लेकिन शरीर के अन्य जो अंगों में, जैसे पैर, हाथ, स्तन आदि जो है, वो आया हुआ सूजन आम तौर पर लाइलाज होता है। श्रोताओं, पीड़ित व्यक्तियों को सहायता और करुणा की आवश्यकता होती है। समुदाय द्वारा तिरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए। झारखंड में रहने वाले सभी 4 करोड़ लोगों को इस बीमारी का होने का खतरा है। अगर हम कहें कि इस बीमारी से बचाव बहुत ही आसान है, तो आप कहेंगे कैसे? तो श्रोताओं, साल में सिर्फ एक बार फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन करना है। जैसे मैं बता दूं कि 2 साल के छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को यह दवा नहीं देना चाहिए। यह दवा खाली पेट नहीं खानी चाहिए। कृपया सभी दवाइयों का सेवन एक बार में ही करें। कुछ लोगों पर दवा खाने से मामूली प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है, जैसे सिर दर्द, उल्टी, चक्कर, बुखार, दस्त इत्यादि, जिसे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुश होने की जरूरत है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर के कीड़े जो हैं फाइलेरिया रोधी दवा खाने से मर रहे हैं। तो श्रोताओं, हाथी पाँव मिटाना बस वर्ष में एक बार खुराक, जो बिल्कुल सुरक्षित और मुफ्त है।

0: पंचायत कहे विकसित भारत जी राम जी। गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: तो इसके साथ ही हमारा आज का आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम समाप्त होता है। अगले बार कुछ विशेष जानकारियों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी रमेश।
2: आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य। हम आकाशवाणी चाईबासा से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण, प्रादेशिक समाचार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें पीएम सूर्य घर .gov.in पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत तारावत, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित धांधली का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जेपीएससी पीटी में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग। जेपीएससी जेएसएससी में कथित पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन, पुलिस से छात्रों की झड़प। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने छात्रों की मांगों को गंभीरता से लेने की मांग की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद निर्मल महतो को दी श्रद्धांजलि। कहा, महापुरुषों और आंदोलनकारियों के सपनों का झारखंड बनाना हमारी जिम्मेदारी। संगठित अपराध के खिलाफ हजारीबाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एनटीपीसी वाहन फायरिंग मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। प्रिंस खान गिरोह से जुड़े तार। और आदिवासी महोत्सव के लिए रांची तैयार। मोरहाबादी में देशभर से जुटेंगे 5000 से अधिक कलाकार। और अब समाचार विस्तार से।

0: झारखंड में 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 में कथित धांधली का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। परीक्षा में अनियमितताओं की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की गई है। याचिका में 19 अप्रैल 2026 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए मार्च कर रहे थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। प्रदर्शनकारी परीक्षाओं में पारदर्शिता और कथित अनियमितताओं पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पेश है हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: चौदहवीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है। याचिका में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच समिति गठित करने तथा प्रश्न पत्र से लेकर ओएमआर स्कैनिंग, कोडिंग, मूल्यांकन और परिणाम तैयार करने तक पूरी परीक्षा प्रक्रिया के स्वतंत्र ऑडिट की मांग की गई है। इधर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले कई दिनों से आंदोलनरत छात्र अपनी मांगों पर कायम हैं। स्टेडियम में छात्रों ने गीतों के माध्यम से भी अपनी आवाज बुलंद की और कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता उनका संघर्ष जारी रहेगा। छात्रों की प्रमुख मांगों में परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच, कथित अनियमितताओं के लिए जिम्मेदारी तय करना और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था में व्यापक और पारदर्शी सुधार शामिल हैं। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए और छात्रों की मांगों पर सरकार को गंभीरता से कदम उठाना चाहिए।
2: कर रही है और निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि कोई एक सेंटर से पूरा परीक्षार्थी आ जाता है, पास कर जाता है। तो मैंने इस तरह की बहुत ही अनियमितताएं हैं, जिस तरह ब्लैकलिस्टेड कंपनी है उनको एग्जाम का जिम्मा सौंपा हुआ है, कंपनी के जो लोग हैं वो खुद एग्जाम पास कर रहे हैं। तो इतनी सारी गड़बड़ियां हुई है और उसके बाद सरकार इस तरह से चुप रहना सही नहीं है।
0: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ी खबरों के प्रकाशन से पहले तथ्यों और जमीनी स्थिति का सत्यापन जरूरी है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में मकान संख्या को पहले से कैरी फॉरवर्ड किया गया है। जहां मकान संख्या नहीं है वहां दावा आपत्ति अवधि में बीएलओ द्वारा नोशनल नंबर दिए जाएंगे। साहिबगंज जिले में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज और कल जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बरहेट विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी विजय कुमार ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
3: सेवा जोहार, तैयार हो जाइए इतिहास के सबसे बड़े सांस्कृतिक महाकुंभ का गवाह बनने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार लेकर आ रही है झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026। आगामी 9 और 10 अगस्त को रांची का मोराबादी मैदान गूंजेगा 5000 से अधिक लोक कलाकारों, झूमर, छऊ और पारंपरिक जनजातीय प्रस्तुतियों से। महोत्सव में होंगे भव्य उद्घाटन एवं सम्मान समारोह, कला एवं शिल्प प्रदर्शनी, पुस्तक मेला, स्वतंत्रता सेनानी विरासत प्रदर्शनी, चित्रकला प्रदर्शनी, ट्राइबल फैशन शो, रॉक बैंड की शानदार प्रस्तुतियां, इमर्सिव जोन और 700 ड्रोन का भव्य शो, आधुनिक 5D थिएटर और AI तकनीक इस अनुभव को और भी यादगार बनाएंगे।
4: यहां मिलेगा पारंपरिक जनजातीय खानपान, आदिवासी व्यंजन प्रतियोगिता, आकर्षक हस्तशिल्प, नॉलेज पार्टनर्स और लेखकों से संवाद का अवसर। सब परिवार आइए और अपनी संस्कृति के रंग में घुल जाइए। अपनी परंपरा और अपनी पहचान का उत्सव गर्व के साथ मनाइए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जमशेदपुर के कदमा उलियान पहुंचे। उन्होंने शहीद निर्मल महतो के समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महापुरुषों और आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान से अलग झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है।
5: चूंकि हर साल आज के दिन लगभग सुबह से लेकर शाम तक एक महान आंदोलनकारी, एक महान योद्धा के याद में यहाँ लोग आते हैं और शहीद निर्मल महतो जी के बारे में कुछ भी कहें बहुत कम होगा, लेकिन एक बात जरूर हमेशा कहूंगा, जब तक चांद सूरज रहेगा निर्मल महतो तेरा नाम याद रहेगा।
0: गोड्डा रेलवे के लिए बड़ी सौगात के रूप में कोचिंग डिपो का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। मालदा रेल मंडल के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने भागलपुर गोड्डा रेलखंड का निरीक्षण कर गोड्डा में निर्माणाधीन कोचिंग डिपो का जायजा लिया।
6: पानी भर जा रहा है, उसका आरओबी से कोई लेना देना नहीं है, वो हम उसके एक बार देख लेंगे, क्योंकि अभी तक वो ओपन लाइन को हैंडओवर नहीं हुआ है, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के पास ही है, तो एक बार उसको हम लोग देख लें और जो भी उसको उपाय करना है वो हम लोग कर देंगे।
0: हजारीबाग पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोस्ट वांटेड अपराधी प्रिंस खान और राहुल दुबे गिरोह से जुड़े चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी अमन कुमार ने बताया कि इन अपराधियों से पूछताछ में 25 जुलाई की रात 13 माइल के पास एनटीपीसी की कोयला उत्खनन गाड़ी पर फायरिंग की घटना में संलिप्तता सामने आई है।
7: हजारीबाग जिला में संगठित अपराध के विरुद्ध लगातार जो कार्रवाई की जा रही है, इसमें बड़का गांव में 13 माइल में फायरिंग की घटना जो प्रिंस खान के ग्रुप के द्वारा की गई थी, उसमें तीन लोगों की अरेस्टिंग की गई है, जिसमें कि अंकित कुमार पांडे, ओम प्रकाश पांडे और कुणाल कुमार पांडे हैं, और उसके अलावा प्रिंस खान और राहुल दुबे जैसे ग्रुप्स को आर्म्स देने के लिए कर्मा कुमार साहू जो कि रामगढ़ का है उसकी भी गिरफ्तारी कल की गई है।
0: लोहरदगा में सरकारी विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता और मैट्रिक इंटर के परीक्षा परिणाम में सुधार के लिए अकील एड़पा बेहतर शिक्षा की ओर कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। उपायुक्त संदीप कुमार मीणा की पहल पर जिले के 55 उच्च विद्यालयों और 22 प्लस टू विद्यालयों को प्रशासनिक पदाधिकारियों ने गोद लिया है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव में देश भर से 5000 से अधिक कलाकारों के शामिल होने की उम्मीद है। कलाकार पारंपरिक नृत्य, संगीत और लोक कला की प्रस्तुति देंगे। मौसम। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में आज सुबह हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। मौसम विभाग की ओर से विशेषकर रांची, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित धांधली का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जेपीएससी पीटी में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग। जेपीएससी जेएसएससी में कथित पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन। पुलिस से छात्रों की झड़प। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने छात्रों की मांगों को गंभीरता से लेने की मांग की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद निर्मल महतो को दी श्रद्धांजलि। कहा, महापुरुषों और आंदोलनकारियों के सपनों का झारखंड बनाना हमारी जिम्मेदारी। संगठित अपराध के खिलाफ हजारीबाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एनटीपीसी वाहन फायरिंग मामले में चार आरोपी गिरफ्तार। प्रिंस खान गिरोह से जुड़े तार। और आदिवासी महोत्सव के लिए रांची तैयार। मोरहाबादी में देश भर से जुटेंगे 5000 से अधिक कलाकार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
8: आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रस्तुत है कार्यक्रम जिले में आजकल।
9: जिले में आजकल प्रस्तुत है। जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे धनबाद जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे धनबाद संवाददाता।
1: धनबाद के अग्नि प्रभावित इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित पुनर्वास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बसाए गए बेलगड़िया टाउनशिप में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जा रहा है। इसके लिए BCCL, JRDA, हिंडालको इंडस्ट्रीज और राजधानी यूनिवर्सल फैब्रिक्स के साथ धनबाद जिला प्रशासन ने करार किया है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि संभवतः सितंबर महीने में यहां टेक्सटाइल फैक्ट्री की आधारशिला रखी जाएगी, जिससे करीब 2000 विस्थापितों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल सकेगा।
2: प्रयास तो यही है, अभी ट्रेनर्स का हायरिंग शुरू हो गया है। प्रॉपर स्किल या एजुकेशन चाहिए जिस पद पर, वो तो अगर मिल जाएगा तो प्राथमिकता के तौर पर बेलगड़िया का होगा, और नहीं मिलेगा तब हम लोग बाहर से लेंगे। किंतु जो अनस्किल्ड लेबरर्स बोलिए या अनस्किल्ड बोलिए, उनको अगर हम लोगों को करना है तो उनको स्किलिंग करा के बेलगड़िया के लोगों को ही वहां पर रोजगार देने का प्लान है, ताकि जो लोग विस्थापित होके हैं उनको एक परमानेंट फिक्स आए और कौशल विकास हो सके।
1: जिला प्रशासन की इस पहल से स्थानीय लोगों में उत्साह है। बेलगड़िया टाउनशिप में रहने वाले अरविंद कुमार और उपेंद्र सिंह ने कहा कि इस परियोजना से आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य बेहतर होगा।
3: प्लास्टिक का जो लगाया जा रहा है, जो यहाँ पर कूड़ा कचरा जो है उसका भी एक प्लांट बन रहा है, बहुत जल्दी उसका भी प्रक्रिया हो गया है, बहुत जल्दी उसका भी जगह विस्थापित होकर के 2016 में आए थे हम लोग, डीवी रोड पर हुए थे। उसके अपेक्षा अभी बहुत सारा सुख सुविधा सब तरह के यहाँ सुविधा उपलब्ध होने जा रहा है और हो भी गया है, रोजगार से जोड़ा जा रहा है और सारा सुविधा यहाँ उपलब्ध हो गया है। DC साहब के द्वारा तो पहल कर रहे हैं, इन पर लेगड़िया पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं।
1: भाजपा की ओर से 10 से 14 अगस्त तक जिला स्तर पर तिरंगा यात्रा आयोजित की जाएगी। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने बताया कि इसके साथ ही हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग तिरंगा खरीदने में सक्षम नहीं होंगे, उन्हें संगठन की ओर से यह मुहैया कराया जाएगा।
4: कार्यक्रम के निमित्त हमारे तैयारी पूरे जोर शोर के साथ हमारे कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। हम संत रविदास जी के जीवनी पर व्याख्यान भी करेंगे, तो एक इस कार्यक्रम की भव्य तैयारी के लिए हम अपने रविदास समाज के लोगों से भी अपील करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो।
1: जिले भर में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई सड़कों पर जल जमाव और गड्ढों की वजह से लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है। इसके विरोध में बीते दिनों बलियापुर धनबाद मुख्य सड़क पर JLKM ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर गड्ढों की पूजा कर सांकेतिक विरोध दर्ज कराया। पार्टी के नेता आशीष महतो ने कहा कि वर्षों से सड़क बदहाल है, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधि केवल आश्वासन दे रहे हैं। चेतावनी दी कि यदि जल्द सड़क की मरम्मत शुरू नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। बहरहाल यह स्थिति महज एक सड़क की नहीं बल्कि पूरे जिले की है। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि मौसम साफ होने के बाद जर्जर सड़कों की मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद।
0: अभी आप सुन रहे थे धनबाद जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। पेश खिदमत है आज का आपकी पसंद कार्यक्रम।

कार्यक्रम का आगाज मिशन कश्मीर के इस नगमे से। युगल स्वर हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। सपनों की दुनिया यही आँखों में पलती है, कुछ धूप में खिलती है, कुछ रात में ढलती है। कल की तलाश में हम आज को खो देते हैं। जो पास है जीवन में उसको भी रो देते हैं। कुछ ख्वाब अधूरे हैं, कुछ ख्वाब हकीकत हैं, कुछ दिल की ज़रूरत हैं, कुछ दिल की शिकायत हैं। मंजिल भी मुसाफिर है, रास्ते भी बदलते हैं। जो वक्त के संग चलते वही लोग संवरते हैं। दुनिया तो तमाशा है, किरदार बदलते हैं। कुछ अपने भी मिलते हैं, कुछ अपने निकलते हैं। हंसना भी ज़रूरी है, रोना भी ज़रूरी है। जीने के लिए शायद खोना भी ज़रूरी है। जो बीत गया उसको आवाज़ न देना अब। टूटा हुआ सपना दिल से न सजा लेना अब। इस पल में ही है जन्नत, इस पल में खुशी रखिए। जो दिल में उजाला हो उस दीप को जलाए रखिए। सपनों की दुनिया आखिर आँखों तक ही रहती। जिंदगी हकीकत है, जी लीजिए यही रहती। सिंह जिंदगी को फिर ख्वाबों में मत गुम करना। जो सामने है अपना उसको ही अपना करना।

अब ये सुनते हैं फिल्म नाम का नगमा, गुलकारा हैं लता मंगेशकर, और इन दोनों नगमों की मिली जुली फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की। मंझारी से लिखते हैं बसंत बेंकुरा, हेमंत पात्रो, सुलोचना पान, कौशिक, दीपक, रिंकी, रूपाली और पीताम्बर। जमशेदपुर से ये हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत और पप्पी भाटिया। अमजोरा पोखरिया से ये ख़त भेजा है शिवा गोप, प्रेम गोप, संगीता लिपि और दीपाली गोप ने। इसी नगमे को सुनना चाहा रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, शहीद वसीम और वलीउल्लाह नूरजहां ने। बुलंदशहर से लिखते हैं बदरू अली अंसारी, फर्जू अली अंसारी और फर्जी अली अंसारी। इसके अलावे ये फरमाइश है लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर और परमजीत आदिबा कौर की।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं फिल्म नगीना का नगमा। फनकार हैं मोहम्मद अजीज और सुनने के ख्वाहिशमंद जिला स्कूल चाईबासा से गौतम होनागा, धनंजय ठठेरा, शंकर परशुराम, दादू संजय, दामू मिश्रा और ललित डांसर। डबवाली से लिखते हैं बसंत सिंह चांद, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी। और ये ख़त भेजा है कुइरा से पोंडे बोईपाई, रेशनल बोईपाई, कश्मीरा यशमती और मीनाक्षी बोईपाई ने।

शमीन इस नगमे के साथ ही समाप्त हुआ चाहता है आज का आपकी पसंद कार्यक्रम। हम आपको बताते चलें कि फरमाइशी नगमों का हमारा दूसरा कार्यक्रम आज होगा रात्रि 8:15 पर, रजनीगंधा कार्यक्रम सुनना न भूलें। और अब से कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम जो प्रायोजित कार्यक्रम है, आइए सुनते हैं किसान वाणी।

0: ᱢᱮᱱᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱫᱚ ᱥᱟᱛ ᱵᱟᱡᱟᱣ ᱮᱱᱛᱮ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱟᱹᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ
1: बात हम करते हैं चर्चा से गोभी की खेती। डोबरो जी, हमारे किसान भाई बहन गोभी की खेती कर अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। इसकी खेती हमारे किसान भाई बहन सभी प्रकार की भूमि में कर सकते हैं, लेकिन अच्छी जल निकास वाली दोमट या बलुई दोमट भूमि जिसमें जीवाश्म की मात्रा प्रचुर हो वो अच्छी मानी जाती है। इसकी खेती के लिए डोबरो जी खेत की तैयारी बहुत ही जरूरी है। हमारे किसान भाई बहन खेत की तैयारी अच्छी तरह से करें, 3 से 4 बार जुताई कर पाटा चलाकर इसे समतल करें, फिर सड़ी हुई गोबर के खाद या कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करें। डोबरो जी, बुआई के लिए स्वस्थ बीजों का ही प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है। स्वस्थ बीजों का प्रयोग करने से जो फसलों का पैदावार है वो भी काफी अच्छा होता है, और इसके साथ ही बीज अगर रोग मुक्त होते हैं तो इसमें किसी तरह के रोग कीटों का प्रकोप नहीं रहता है। इसके साथ ही उन्नत किस्मों का प्रयोग करना बहुत ही अच्छा होता है।
0: ऐसो सारे कजी असमानित की बन जगरत को अब उकना गोभी वोमने न कोभी इनको मर बुगिन हिते रियागे उन्नत किस्म रिया हिते जांग को गे पड़ा केते सारी सोमाय रेगे ना जगर के लेका जान टायर रियो बुगिल कते सी चलो केते अंडो कुंडी क्यारी को बाई केते अंडो अब गुरी बुदर को गे एम केते बु चासर दो चासर या लापाबु नमिया अंडो रास्ते बु टाइव।
1: डोबरो जी, इसमें अगेती किस्मों की बुआई अगस्त के अंतिम सप्ताह से 15 सितम्बर तक हमारे किसान भाई बहन कर सकते हैं। मध्यम और पिछेती किस्मों की बुआई सितंबर के मध्य से पूरे अक्टूबर माह तक कर सकते हैं, और हमारे किसान भाई बहन बुआई से पहले इसकी नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। अगर नर्सरी तैयार करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसके बाद वो सीधे अपने खेत में लगा सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: डोबरो जी, अगर हमारे किसान भाई बहन सही समय में इसकी खेती करते हैं तो उसका जो लाभ है वो भी सही समय में मिलेगा, और इसके साथ ही जो बाजार में उसका मूल्य है वो भी सही रहेगा।
0: इन दो आशा मानी जी जाओगे चर्चा जगह को दो अब किसान बानी कार्यक्रम आयुमरी को तन गया एन दो नैन चर्चा निंता रेगलांग तुंडु कहते मियन सिविल दुरांग लांग आयुमरी कर दो चिली के हुआ।
1: बिल्कुल डोबरो जी, और हमारे किसान भाई बहन भी इंतजार कर रहे हैं, तो हम आनंद लेते हैं हो लोक गीत का। अमरनाथ सामट और साथियों के स्वर में सुनते हैं या हो लोक गीत
0: ये हमारे आयुम लिया।

0: डोबरू जी अभी हम आनंद ले रहे थे हो लोकगीत का अमरनाथ सामर और साथियों के स्वर में। अब हम जानकारी लेते हैं मौसम की। स्थानीय मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार चाईबासा का आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। कल का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसके साथ ही हल्की वर्षा होने की संभावना है।
1: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है। यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है। तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई।
3: प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को बीज ले आते हैं, गेहूं को बीज ले आते हैं, सरसों को बीज ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया।
2: अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई।
4: हमने 1800 रुपए प्रीमियम भरा था, अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ।
2: अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
5: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है।
2: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
6: ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है उससे भी उसको राहत मिलती है और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
2: खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
7: मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया।
2: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है।
8: हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है। लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है।
2: कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।
0: कार्यक्रम किसानवाड़ी में आप सबका पुनः स्वागत है। किसान भाई बहनों, अब हम जानकारी लेते हैं लतेदार सब्जियों की खेती। इस विषय में जानकारी दे रहे हैं गुरबा महतो और उनसे बातचीत कर रही है
9: असमनी गोप्त किंग इलामर नैनबेप्टा चपागरबो आयुम लिया।
0: लतेदार सब्जियों की खेती कैसे करें, इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित है। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे किसान भाई बहनों को दीजिए।
10: मेरा नाम गुरबा महतो है। गांव हड़वा कंदागोड़ा गोविंदपुर पंचायत जिला सरायकला खरसुआ।
0: आपका हम कार्यक्रम में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जोहार।
10: जोहार।
0: अभी आप लतेदार सब्जियों में किन किन सब्जियों को आप लगाए हुए हैं?
10: अभी तो नाड़ी वाला साग दिए हैं
0: जी,
10: और करेला लगाए हैं
0: जी,
10: लौकी लगाए हैं।
0: इन सबको लगाने के लिए सबसे पहले आप मिट्टी की तैयारी किस तरह से किए हैं?
10: मिट्टी को हम लोग खोद के सूखने थोड़ा देते हैं और गोबर दे के पहले हम लोग साग को बुनाई करते हैं।
0: करेला और लौकी के लिए मिट्टी की तैयारी आप किस तरह से किए हैं?
10: हम लोग उसको जैसे करते हैं कि नर्सरी में जैसे हम लोग गाछ को ये करते हैं।
0: अच्छा।
10: जैसे प्लास्टिक में हम लोग जो इतना बड़ा बड़ा प्लास्टिक रहता है
0: जी,
10: उसमें गोबर और मिट्टी को दे के तैयारी करते हैं।
0: अच्छा, इसके लिए नर्सरी तैयार करते हैं?
10: नर्सरी तैयार करते हैं।
0: अच्छा।
10: उसमें एक बीज वहाँ डाल देते हैं
0: जी।
10: एक बीज जैसे वो निकल गया, पानी देते हैं उसमें।
0: अच्छा।
10: पानी देने के बाद जो निकल देते हैं, दो दो पत्ता हो जाता है, तो उस टाइम गड्ढा को तैयारी करते हैं।
0: अच्छा।
10: गड्ढा तैयारी करके वो प्लास्टिक को हम लोग काट देते हैं। मिट्टी तो वहाँ पर ये रहता है प्लास्टिक में।
0: अच्छा।
10: और उसको लेके हम लोग गड्ढा में लगा देते हैं
0: जी। तो ये लगाने से एक माह पहले ही आप इसकी तैयारी करते हैं। अच्छा। जब आप मिट्टी की तैयारी करते हैं तो इसे सूखने के लिए लगभग कितने दिनों तक छोड़ देते हैं?
10: जैसे कि हम लोग मिट्टी को खोदते हैं, खोदने के बाद में हम लोग सूखने देते हैं 2-3 दिन
0: जी।
10: 2-3 दिन सूखने के बाद हम लोग बीजा ये करते हैं, बुनते हैं।
0: अच्छा। वो नर्सरी से पौधा निकाल कर फिर लगाते हैं?
10: हाँ, नर्सरी से जब निकलते हैं उस समय में लगाते हैं।
0: तो जब आप नर्सरी तैयार करते हैं प्रतिदिन सिंचाई तो करते होंगे?
10: हाँ, सिंचाई तो डेली नहीं करना पड़ता है
0: जी।
10: जैसे कि वो तो प्लास्टिक में रहता है ना, प्लास्टिक में तो पानी बाहर नहीं आता है
0: जी।
10: तो 2-3 दिन लेके उसको पानी देते हैं और
0: जी।
10: जब लगाते हैं तो उसमें पानी तो देना पड़ता ही है।
0: तो ये जो अब आप नर्सरी तैयार करते हैं तो इसमें भी ये बीज को कितना गहराई में रखते हैं?
10: उसको ज्यादा गहराई में नहीं रखते हैं
0: जी।
10: जैसे कि एक बीज जा देते हैं उसमें
0: जी।
10: जो प्लास्टिक में हम लोग मिट्टी तैयारी करते हैं
0: जी।
10: उसमें एक बीज जा देते हैं।
0: और उसके बाद फिर अंकुरण कितने दिनों के बाद होता है उसमें?
10: 2-3 दिन के बाद में वो निकल जाता है
0: जी।
10: तो अंकुर दिखाता है उसमें, जब 2 पत्ता जैसे हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाते हैं, निकल जाते हैं वहाँ से, तो उसको लेके हम लोग गड्ढा तैयारी करते हैं।
0: अच्छा।
10: गड्ढा तैयारी करके और गड्ढा में हम लोग मैंने लगाते हैं उसको।
0: तो वो भी कितने गहराई का करते हैं?
10: हम लोग 1 फुट बाई 1 फुट का ये करते हैं
0: जी,
10: गड्ढा करते हैं। और उसमें मिट्टी को भी उसमें थोड़ा गोबर उबर दे के तैयारी करते पड़ता है गड्ढा में।
0: अच्छा, तो इसमें फिर खाद किस तरह का खाद देते हैं?
10: खाद देखिए जैसे कि उसको ये तो लग जाता है चेयर टू नीचे में, तो उसके बाद में हम लोग हल्का सा डायमंड देके थोड़ा सा खुशिया देते हैं
0: जी।
10: जब बड़ा हो जाता है तो उस टाइम जो जैसे कि एक तो ये करना पड़ता है, स्प्रे करना पड़ता है जो कीड़ा उड़ा लगने पर।
0: अच्छा।
10: हाँ, तो वो दवाई लेके हम लोग थोड़ा उसको ये करते हैं, स्प्रे कर रहे, कीड़ा नहीं लगता है।
0: कीड़ा नहीं लगता है
10: जी।
0: इन लत्तर वाली सब्जियों को आप सहारा किस तरह से दिए हैं, या ये ऐसे ही जमीन में फैल रहा है?
10: हाँ, जमीन में नहीं फैल रहा है, खूंटा गाड़ दिए हैं और तार का ये कर दिए हैं
0: जी।
10: उसी जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होने जाता है तो तार में पकड़ के वो मचान बना देते हैं।
0: अच्छा। इसमें आप नर्सरी के बाद जब आप भूमि में लगाते हैं तो उसके बाद फिर सिंचाई कितने दिनों के बाद करते हैं?
10: सिंचाई तो साग के जैसे वो लौकी में ज्यादा पानी देना नहीं पड़ता है।
0: अच्छा। और करेला में?
10: करेला में देते हैं सुबह एक हल्का फुल्का देते हैं, जारी में डाल के देते हैं
0: जी। इन लत्तर वाली सब्जियों में किसी तरह का रोग कीड़ा लगता है?
10: हाँ, हल्का फुल्का जो ये सब रहता है ना, आके वो पीलू सब ये कर देता है, पत्ता सब में
0: छेद करता है।
10: हाँ, तो इसीलिए मैंने उसको स्प्रे करना पड़ता है।
0: अच्छा, तो ये लगभग कितने दिनों तक करते हैं?
10: ज्यादा दिन नहीं, कि जब ये उसका बढ़ जाता है ना, ऊंचाई हो जाता है तो उस टाइम में ये नहीं होता है, जब छोटा रहता है उसी टाइम में कीड़ा सब ये कर देता है।
0: अच्छा। और जब उसमें फूल आने लगता है क्या? हाँ, उसमें भी लगता है?
10: हाँ, फूल जब आता है तो फूल आने के टाइम में एक तो दवाई लेके मैंने उसको ये कर देना पड़ता है, स्प्रे कर देना पड़ता है।
0: अच्छा।
10: तब फल सब एकदम सही रहता है।
0: और ये करेला के लिए भी उसी तरह की प्रक्रिया?
10: हाँ, करेला का भी उसी तरह ये करना पड़ता है।
0: अच्छा, उसके लिए भी जो जितना जो गड्ढा तैयार करते
10: हैं
0: उतना ही करते हैं?
10: उतना ही करते हैं, 1 फुट बाई 1 फुट गड्ढा कर देते हैं, उसको मिट्टी गोबर दे के तैयारी करते हैं
0: जी। कितने दिनों के बाद इसमें फल आना शुरू हो जाता है?
10: मोटा मोटी उसको लग जाता है 2 महीना 2.5 महीने लग जाता है फूल फल देने में
0: जी।
10: हाँ, वो बड़ा होने में ही थोड़ा टाइम लगता है।
0: अच्छा।
10: हाँ,
0: आपको कृषि से किस तरह का लाभ मिल रहा है?
10: कृषि का लाभ और क्या, उसमें हम लोग जब फल वल हो जाता है तो बाजार लाते हैं
0: जी,
10: और बिक्री करते हैं बाजार में
0: जी। इन लत्तर वाली सब्जियों के अलावा और आप किन किन साग सब्जियों को लगाए हुए हैं?
10: हम जो अभी साग लगाए हैं कि वो नाड़ी वाला साग
0: जी।
10: अभी तो साग तो बहुत कुछ लगाते रहे, पुई सब लगाते हैं, वो जो काटने वाला साग सब लगाते हैं।
0: अच्छा।
10: तो अभी हम लगाए हैं नाड़ी वाला साग।
0: अच्छा।
10: बुने हैं, लगाए तो नहीं है, बुने हैं उसको। नाड़ी वाला साग में यही ये है कि नाड़ी बहुत लोग ये करते हैं बाजार में, कि साग लाते हैं तो बोलता है कि नाड़ी लाओ।
0: अच्छा।
10: तो इसलिए हम नाड़ी के ये में थोड़ा ये किए हैं साग ये को
0: जी। तो ये भी लगभग कितने दिनों में आपका तैयार हो जाता है ये साग?
10: वो लगभग जब बुन देते हैं मिट्टी को तैयारी करके
0: जी,
10: तो 2 दिन के अंदर में वो निकल जाता है।
0: अच्छा।
10: निकलने के बाद थोड़ा सा यूरिया फूरिया देना पड़ता है।
0: अच्छा।
10: तब जल्दी थोड़ा गाछ बड़ा हो जाता है
0: जी।
10: तो इसी तरह का हम लोग भगवानी ये करते हैं।
0: अच्छा।
10: साग सब्जी का
0: जी। फिर इन सब में निराई गुड़ाई कितने दिनों के बाद करते हैं?
10: जैसे कि लगाते हैं तो चेर जब पकड़ जाता है
0: जी,
10: चेर पकड़ने के बाद में हम लोग उसको थोड़ा खुशिया देते हैं,
0: और इसमें भी खरपतवार तो हटाते रहते हैं?
10: हाँ हाँ
0: जी। वो लगभग कितने दिनों में करते हैं?
10: जिससे लगता है कि अब लगाए हैं दो चार रोज हो गया, उसके बाद जैसे लग रहा है कि अभी गाछ टूट जैसे ये हो गया है, चेर पकड़ लिया है
0: जी।
10: चेर पकड़ने के बाद जाके वो खुशियानी करता है।
0: अच्छा,
10: नहीं तो अगर चेर नहीं पकड़ा रहेगा तो उसको फायदा नहीं होगा कुछ ये करने से।
0: ये तो बिल्कुल सही बात हाँ। है, जब तक वो जड़ मजबूत
10: जड़ हाँ जड़ मजबूत होगा तब जाके माने खुशियाने से वो टू फायदा रहेगा।
0: फायदा है। अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
10: जैसे कि हम लोग एक बीज लगाते हैं तो उसमें बहुत सारा फल आता है, तो फल आने के बाद में तो बाजार में जाके हम लोग को बिक्री करना पड़ता है, तो वही मेरा संदेश है कि एक बीजा में अगर 20-25 को फल हुआ तो वही सब हम लोग बागवानी ये करते हैं
0: जी,
10: तो उसी तरह का हम लोग का आमदनी मिलता है।
0: लत्तेदार सब्जियों की खेती कैसे करें, इस विषय में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए हम आपका पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जोहार।
10: किसान भाई बहनों को मेरा तरफ से जोहार।
0: आइए अब हम सुनते हैं संदेश।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: कर।
1: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
2: अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।
2: बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा
5: का। इंसानों के कारण जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। कोयला, तेल और गैस जलाना, पेड़ काटना और पशुओं को पालना जैसे मानवीय काम ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं।

0: पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे जमीन, समंदर और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है।
1: डोबरो जी, कार्यक्रम के अंत में आनंद लेते हैं मुंडारी लोकगीत का, दुराई सिंह मुंडा और साथियों के स्वर में।
2: या।

0: डोबरू जी, इसी मुंडारी लोकगीत के साथ कार्यक्रम किसानवाणी अब यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। अब मुझे आसामनी गोप और
1: डोबरू बुड़ू लेते किंग पहते
0: जोहार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी चाईबासा से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से इस सप्ताह संसद में।

आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये तीसरा सप्ताह था। इस सप्ताह भी दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग तथा अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी जैसे मुद्दों को लेकर भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। हालांकि इस दौरान कुछ अहम विधेयकों को बिना चर्चा के या संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। इसके बाद दोपहर 12 बजे और फिर अपराह्न 2 बजे भी सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही, जिस कारण से कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद 2 बजे शुरू हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ध्वनिमत से बिना चर्चा के विधेयक को पारित

कर दिया। मेघवाल ने मॉनसून सत्र के पहले दिन ही 20 जुलाई को सदन में यह विधेयक पेश किया था। इससे पहले सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया। सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान है। सरकार ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 भी पेश किए। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2:10 पर ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी इन्हीं मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। कुछ सदस्यों ने तख्तियां दिखाई, जिस पर सभापति ने आपत्ति जताई। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। सदन में हंगामा जारी रहने पर सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक दोपहर 2 बजे शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामे के बीच ही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में वर्ष 2014 से कई गुना बढ़ोतरी हुई है। मांझी ने कहा कि इस विधेयक में न केवल एमएसएमई की परिभाषा में सुधार किया गया है, बल्कि इसके कारोबार की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी के साथ विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा और नारेबाजी करते रहे। सदन में व्यवस्था बनते न देख उपसभापति हरिवंश ने करीब 3:30 बजे बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। मंगलवार को लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक 2 बजे शुरू होने पर पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखने को कहा। इस दौरान विपक्षी सदस्य पहले की तरह ही शोर शराबा कर रहे थे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। हंगामे के बीच सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक मुख्य रूप से कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा आयकर कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए लाया गया है। उधर राज्यसभा में भी राम मंदिर चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बैठक बार बार बाधित हुई। उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर चढ़ावे की चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य जांच एजेंसियां आरोपों की जांच क्यों नहीं कर रही हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया और राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। सदन की बैठक 12 बजे शुरू होने पर भी सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया, किंतु सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून को ठीक से लागू नहीं कर देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करने का आरोप लगाया और दावा किया कि वर्तमान सरकार इन दोनों के सार्वभौमिक पंजीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है।
मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को और संशोधित कर विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को कड़ा बनाना है। इसके बाद भी विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही और उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को भी पहले जैसी स्थिति ही रही। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे।

विपक्षी सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर विरोध जताते हुए नारेबाजी की और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में गृह मंत्री की सदन में मौजूदगी की मांग की। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सभापति ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, किंतु सदन में हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक में उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। विधेयक पर करीब 2.5 घंटे तक चली चर्चा का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। कानून मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदन में विपक्षी सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन की बैठक पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की वर्षगांठ का उल्लेख किया और सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा करने लगे और अध्यक्ष ने 11:03 पर बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 2 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखा। विपक्ष के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के आरएसपी सदस्य एन के प्रेमचंद्रन के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया। सदन ने कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। इसके बाद ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया गया। ये विधेयक सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। इसके बाद बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही सदन ने विनियोग विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया, जिसके तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च हुए अतिरिक्त राशि के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। इस दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन भी किया। सुबह 11 बजे सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बैठक शुरू होने पर शून्यकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन कांग्रेस तथा कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। सदन में हंगामा थमते न देख सभापति ने कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे दोबारा बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन शोरगुल के कारण उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2:15 पर बैठक पुनः शुरू होने पर भी सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और उपसभापति हरिवंश ने 1 मिनट के भीतर ही बैठक को दोपहर 2:45 तक स्थगित कर दिया। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:45 पर बैठक दोबारा शुरू होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा के लिए सदन में पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री के बयान की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा के दौरान सदस्यों ने अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलू उठाए। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि सरकार ये अनुदान की अनुपूरक मांगें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में अतिरिक्त खर्च के लिए लाई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस अतिरिक्त बजट को लोक लेखा समिति पीएसी की सिफारिश पर लाई है और पीएसी की अध्यक्षता विपक्ष के नेता के पास है। वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर इसे लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदस्यों ने आसन के

साथी से विशेष उल्लेख के जरिए लोकहित के विभिन्न मुद्दे उठाए। सप्ताह के अंतिम दिन शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया। फिर सदन ने कुछ क्षण मौन रखकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान का उल्लेख करते हुए विपक्षी सांसदों से उनसे प्रेरणा लेने को कहा। अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांग दोहराते हुए नारे लगाने लगे। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो मंत्री जीतनराम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखा। इस दौरान विपक्ष के सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच ही सदन ने विधेयक को चर्चा के बिना पारित कर दिया। राज्यसभा में यह विधेयक सोमवार को ही पारित हो चुका है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण लगातार 15वें दिन भी प्रश्नकाल और शून्यकाल शुरू नहीं हो सके। राज्यसभा की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए कहा कि करो या मरो के नारे के साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए जो संघर्ष किया उसकी वजह से ही आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। बाद में सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के सम्मान में कुछ क्षण के लिए मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभापति ने इसके बाद शून्यकाल शुरू कराना चाहा। विपक्षी सदस्यों के ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी और इसके बाद सदन में हंगामा जारी रहने पर करीब 5 मिनट के भीतर ही बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है आज का रजनीगंधा। ये हैं गुलकारा आशा भोसले, फिल्म का नाम है नमक हलाल। इस गाने को सुनना चाहते हैं सरायकेला ग्राम कीता से राधा कृष्ण गोप, अभिषेक, अमित, विक्की, अंकित और सुमित गोप। राजनगर से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंका रानी, मौसम, संगीता, रुद्र और रिद्धि गुप्ता।

निकाह। अब आइए सुनते हैं इस फिल्म का नगमा। गुलकारा है सलमा आका। सुनने के ख्वाहिशमंद आदित्यपुर से नंदलाल गागराई, सुरेश लक्ष्मी और सरस्वती गागराई, भिलाई से श्रीमती प्रमिला श्याम कुंवर, अनुश्री अशोक और दीपक श्याम कुंवर।

पत्थर के सनम। अब ये सुनते हैं इस फिल्म का शीर्षक गीत। फनकार हैं मोहम्मद रफ़ी और सुनने के ख्वाहिशमंद अमला टोला चाईबासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फूलवंती गुप्ता, अभिषेक और अक्षत प्रसाद। राजनांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान और इरफान आसमा। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम और अलीबा तिवारी।

प्यार झुकता नहीं। अब आइए सुनते हैं इस फिल्म का दो गाना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में। सुनना चाहते हैं लच्छनपुर से जीवनलाल रजक, सरोजनी और रामजी साहू, रायगढ़ से शिव कुमार चौहान और संक्रांति चौहान, आमजोरा पोखरिया मालुका से शिवा गोप, शिवांश प्रेम, कपिल और संगीता गोप, न्यू कॉलोनी टुंगरी से लिखते हैं सुशील कुमार सिंह, संध्या देवी, प्रियंका, काजल, कृष, किट्टू, पंडित आर के पाठक, अनीता मिश्रा, रिया और प्रिया पाठक।

कार्यक्रम रजनीगंधा में ये है फिल्म रजनीगंधा का शीर्षक गीत। गुलकारा हैं लता मंगेशकर।

रूप तेरा मस्ताना। कार्यक्रम के आखिर में यह है इस फिल्म का गाना। आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। सुनना चाहते हैं पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। मोहाली से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा।

इस गाने के साथ ही समाप्त हुआ चाहता है आज का रजनीगंधा कार्यक्रम। एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: लेना
1: जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने कहा उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
3: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
3: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
3: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
2: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नव क्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा

0: कि डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फोरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
1: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। ये शहरी सहकारी बैंकों को 24 घंटे साइबर निगरानी और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। श्री शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का भी आग्रह किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ट इंडिया, कॉर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निःशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निःशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेन देन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेन देन भी निःशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेन देन पर नाममात्र दर से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन एक सक्षम प्रावधान है, जिसका उद्देश्य UPI की दीर्घकालिक स्थिरता, तकनीकी उन्नति और उभरते जोखिमों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि ये आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति को दर्शाता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और निष्पक्ष तथा समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा, जिससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये मांग रखी थी। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC और राज्य में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बीच राज्य सरकार और विभिन्न छात्र संगठनों के बीच बातचीत जारी है।
2: 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है। व्यापार सिंह नगर स्टेडियम में पिछले कई दिनों से आंदोलनरत छात्र अपनी मांगों पर कायम है। आंदोलनकारियों का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे और जब तक ठोस परिणाम सामने नहीं आता आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच राज्य सरकार ने विभिन्न छात्र संगठनों से बातचीत का सिलसिला तेज कर दिया है। कई संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता के बाद सरकार ने उनकी मांगों और सुझावों पर आगे निर्णय लेने की बात कही है। प्रशासन ने आंदोलन के मद्देनजर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रेलवे ने मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए रोजाना चलने वाली इटारसी मदन महल पैसेंजर रेलगाड़ी को मंजूरी दी है। ये रेलगाड़ी 5 घंटे से अधिक समय में 242 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये बगरा तवा, सुहागपुर और दूसरे स्टेशनों पर रुकेगी। ये आकाशवाणी है।

0: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में भोपाल में 5 अगस्त से चल रही 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में आज भोपाल घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग मजबूत करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 10 ब्रिक्स सदस्य और 4 सहयोगी देशों सहित कुल 14 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
1: बैठक की शुरुआत केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के संबोधन से हुई। इसके बाद ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक और भोपाल डिक्लेरेशन के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। इसके साथ ही भोपाल में आयोजित ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक के प्रमुख कार्यक्रम भी सम्पन्न हो गए हैं। अब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि सांची के लिए रवाना हो गए हैं, जहाँ वे विश्व धरोहर और बौद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होंगे। कल यानी 9 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल भीम बैठका का दौरा करेगा, जहां वे भारत की प्राग ऐतिहासिक और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में CEO गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई, ताकि भारत को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा है कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ वार्ता करने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अपनी सरकार के निर्णय का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करता है, ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा, लेकिन अगर अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो ईरान इसे जारी रखने के लिए बाध्य नहीं होगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया था कि ईरान के साथ संघर्ष जल्द ही समाप्त हो

0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की आशंका है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। उधर ओडिशा में बाढ़ का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। बैतरनी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से भद्रक और अन्य निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका व्यक्त की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
1: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है, जबकि कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। भद्रक में सालंदी और बैतरणी नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा फिर से पैदा हो गया है। भद्रक और तिहिड़ी ब्लॉक के कई निचले इलाकों और गाँव में पानी भरा हुआ है। कटक में सापुआ और कंटिया नदियों के उफान पर होने से पुराने कटक संबलपुर रोड के कुछ हिस्सों पर आवाजाही प्रभावित हुए है और खेतों में पानी भर गया है। भारी बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और अब कुछ खेल खबरें। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराया। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। उधर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजशकियन ने कहा उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वर्षा विलियम्स विद न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Union Minister Amit Shah stresses need for stronger cyber security and digital safeguards for urban cooperative banks. Government signs strategic MOUs with key industry leaders to strengthen support to startups. Iranian President says his country is committed to diplomacy but will not surrender under pressure. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Uttarakhand and Chhattisgarh tomorrow. Flood threat again looms over Odisha with rising river levels. And in badminton, Ashmita Chaliha to face China's Che Han in women's singles final of Korea Masters tournament. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory, addressing the 57th convocation of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, today. Mr. Modi urged the students to keep national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. The Prime Minister said new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Vikasit Bharat.
3: Aaj Bharat, economic self-reliance, technological self-reliance, industrial self-reliance, aise har sector mein Atmanirbhar banne ke liye kaam kar raha hai. Yahi विकसित

0: यूपीआई के तवील मुद्दत तक पायदार रहने, तकनीकी पेशरफ्त और उभरते हुए खतरात के तनाजुर में इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। भारत ने अपनी माहौल के लिए साजगार तवानाई के सिलसिले में एक अहम संग मील हासिल किया है। मुल्क में नस्बशुदा गैर रवायती ईंधन पर मबनी बिजली की सलाहियत 300 गीगावाट से तजावुज कर गई है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर नई और काबिले तस्दीक तवानाई के वजीर प्रहलाद जोशी ने उजागर किया कि भारत की काबिले तस्दीक तवानाई की सलाहियत में गुज़िश्ता 12 बरस में 400% का इजाफा हुआ है। वजीर मौसूफ ने कहा कि गैर रवायती ईंधन पर मबनी नस्बशुदा बिजली की सलाहियत के 300 गीगावाट के संगमील से इस बात का इजहार होता है कि भारत की माहौल के लिए साजगार तवानाई की मुंतकली मुकर्रर करदा आलमी अहदाफ के मुताबिक जारी है। जनाब जोशी ने उजागर किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत हुकूमत एक साफ सुथरे माहौल के लिए साजगार और ज्यादा पायदार मुस्तकबिल तश्कील दे रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने मुल्क में खवातीन रिजर्वेशन बिल पर फौरी तौर से अमल दरामद के लिए शिरोमणि अकाली दल के मुतालबे का खैर मकदम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब रिजिजू ने कहा कि सभी को एक मुनसिफाना और मसावियाना हदबंदी के साथ खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए मिलकर आगे आना चाहिए, जिसमें बराबर की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया गया हो। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने सरकर्दा रहनुमाओं की मीटिंग में यह मुतालबा किया था। शिरोमणि अकाली दल के सदर सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पार्टी ने एक ऐसी मुनसिफाना और मसावियाना हदबंदी की भी मांग की है, जिसमें सभी रियासतों के लिए बराबर की नुमाइंदगी हो। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जोर देकर कहा है कि शहरियों से ये उम्मीद रखने के बजाय कि वो निज़ाम इंसाफ की जानिब कदम बढ़ाएंगे, इंसाफ खुद शहरियों तक पहुंचना चाहिए। वो आज इंदौर में कानूनी खिदमात से मुतालिक कौमी अथॉरिटी की मगरबी जोन की इलाकाई कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब कर रहे थे। जनाब सूर्यकांत ने कहा कि इंसाफ तक बामकसद रसाई का तकाजा है कि कानूनी इदारे उन लोगों तक पहुंचें जो उनसे रुजू करने से कासिर हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कॉन्फ्रेंस के तीन अहम सतूनों मुजाकिरात, अजमत और शमूलियत से मसावियाना इंसाफ के आईनी वादे के लिए अमली माने मैसर होता है।
1: मैं हमेशा बोलता हूं कि न्यायपालिका को चाहे उसमें हमारा न्यायिक अधिकारी है या कोई भी कर्मचारी है, मैंने आज कहा है कि हम जैसे हॉस्पिटल में एक मरीज जब जाता है, एक हमारी वहां पर बहन नर्स के साथ हमारा कोई जो टेक्नीशियन है, कोई डॉक्टर है, तो जैसे वो उनसे व्यवहार करके एक मरीज के साथ प्यार से बात करके उसकी आधी बीमारी को जैसे उसको अनुभव होता है कि मैं शायद ठीक हो जाऊंगा, ऐसी ही भावना एक हमारे यहाँ पे न्यायिक मंदिर में अगर कोई आता है तो उसको ये होना चाहिए कि मेरा जो अधिकार है जिससे मुझे वंचित किया गया है वो अधिकार मुझे मिलेगा।
0: झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी और दीगर मसाबिकती इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों पर तलबा के एहतजाज में तेजी आ गई है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जबकि रियासती हुकूमत और मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के दरमियान बातचीत जारी है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सुप्रीम कोर्ट में एक उजरदारी दाखिल की गई है, जिसमें 14वें जेपीएससी इब्तदाई इम्तिहान को मुबैना बेजाबतगियों की वजह से मनसूख किए जाने और उसे दोबारा कराए जाने की दरख्वास्त की गई है। इस दौरान जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में कई दिनों से एहतजाज कर रहे तलबा मुसलसल अपनी मांगों पर जोर दे रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि सिर्फ लफ्जी यकीन दहानी काफी नहीं है और ये मुजाहरा तब तक जारी रहेगा जब तक पुख्ता नतायज बरामद नहीं होते। रियासती हुकूमत ने मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के साथ अपनी बातचीत भी तेज कर दी है। उन्होंने तलबा उम्मीदवारों, वालदेन और समाजी कारकुनों से 10 अगस्त को मुजवजा असेंबली घेराव में बड़ी तादाद में शिरकत करने की अपील की, ताहम इंतजामिया ने एहतजाज के मकाम के आसपास सिक्योरिटी सख्त कर दी है। रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत के बहरी तरक्की के सफर में मल्लाहों का अहम रोल रहा है। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने के सरकार के अहद को दोहराया कि हर मल्लाह महफूज रहे, उसका ख्याल रखा जाए और मदद की जाए। जनाब सोनोवाल ने आज मुंबई में मल्लाहों की सिक्योरिटी तहफ्फुज और बहबूद के मौजू पर एक कौमी मुबाहसे में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि भारत मल्लाहों के ताल्लुक से दुनिया के एक सरकर्दा मुल्क के तौर पर उभरा है। ईरान के सदर मसूद पजिशकियान ने मुल्क के कौमी मफादात का तहफ्फुज करने के लिए सफारतकारी के तई अपने मुल्क के अहद का इआदा

0: संस्कृति केवल हमारी स्मृतियों में सुरक्षित अतीत का नाम नहीं, वो उन विचारों, मूल्यों, कलाओं और अनुभवों की एक निरंतर यात्रा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हुए हमारे वर्तमान को अर्थ देती है और भविष्य की दिशा तय करती है। भारत की सांस्कृतिक चेतना और समृद्ध ज्ञान परंपरा में स्वतंत्रता का विचार भी कुछ ऐसा ही है। केवल राजनीतिक मुक्ति नहीं, बल्कि विचारों की स्वतंत्रता, ज्ञान की स्वतंत्रता, अपनी पहचान और अपनी परंपराओं को समझने की स्वतंत्रता। इसी विषय पर आज की पत्रिका के संपादकीय में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की प्राध्यापक डॉक्टर विभा नाइक।
1: भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व की प्राचीनतम वैचारिक धरोहर है, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह किसी एक रूढ़ी, डॉग्मा या संकीर्ण विचारधारा से बंधी हुई नहीं है, बल्कि इसके मूल में स्वतंत्रता का एक ऐसा गहरा, व्यापक और बहुआयामी मूल्य निहित है जो मनुष्य को न केवल बाहरी बंधनों से मुक्त करता है, बल्कि उसे आंतरिक और आध्यात्मिक धरातल पर भी परम स्वतंत्र बनाता है। आधुनिक युग में जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमारा ध्यान राजनीतिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की आज़ादी, नागरिक स्वतंत्रताओं और व्यक्तिगत स्वायत्तता की ओर ही अधिक जाता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि

भारतीय चिंतन में स्वतंत्रता केवल अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव अस्तित्व के चरम लक्ष्य और उसके लोक परलोक के कल्याण से भी जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता शब्द दो पदों से मिलकर बना है, स्व और तंत्र, जिसका अर्थ है अपने तंत्र या अपने नियम के अधीन होना। यहाँ स्व का अर्थ व्यक्ति की वह अंतर्निहित चेतना है जो समूचे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, जिसका लक्ष्य है वासनाओं, विकारों, अज्ञान और इंद्रियों की अधीनता से मुक्ति। इस स्वतंत्रता की सिद्धि तब होती है जब मनुष्य अपने विवेक और धर्म के अनुशासन में रहकर आचरण करता है। इसीलिए भारतीय चिंतन धारा में स्वतंत्रता का लक्ष्य मोक्ष या मुक्ति है, जिसे सभी आस्तिक दर्शनों में जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वीकारा गया है। स्वतंत्रता का यह बोध भारतीय ज्ञान परंपरा की पहचान है। भारतीय ज्ञान परंपरा में जहां वेदों को परम प्रमाण मानने वाली आस्तिक परंपराएं जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत दर्शन है, तो वहीं वेदों की सत्ता को खारिज करने वाली नास्तिक परंपराएं जैसे जैन, बौद्ध और चार्वाक दर्शन भी समानांतर रूप से हैं। विचार और अभिव्यक्ति की इसी स्वतंत्रता का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमें उपनिषदों के संवादों में भी मिलता है, जहां गुरु और शिष्य के बीच अत्यंत लोकतांत्रिक और स्वतंत्र माहौल में संवाद मिलता है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में भी जब अर्जुन विषाद से घिर जाते हैं और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, तब भगवान कृष्ण उन्हें जीवन, प्रकृति, कर्म और आत्मा का गहनतम ज्ञान देते हैं और पूरे 18 अध्यायों के बृहत उपदेश के बाद अंत में अर्जुन से कहते हैं, मैंने तुम्हें यह परम गोपनीय ज्ञान दिया है, अब तुम इस पर पूरी तरह से विचार करो, इसका विश्लेषण करो और फिर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। निर्णय लेने की यह स्वायत्तता और स्वतंत्रता ही भारतीय ज्ञान परंपरा का वास्तविक गुण है, जो भारतीय सामाजिक और राजनीतिक चिंतन में भी धर्म के माध्यम से प्रतिध्वनित होता है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि यहाँ धर्म का तात्पर्य किसी विशेष कर्मकांड या संप्रदाय से नहीं है, बल्कि उन सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों, कर्तव्यों और नियमों से है जो समाज के आवश्यक हैं। इसी धर्म का प्रभाव है कि भारतवर्ष में कभी भी राजा की सत्ता को निरंकुश और असीमित नहीं माना गया है। ऋग्वेद का संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम का उद्घोष सामाजिक स्वतंत्रता और समता का एक ऐसा ही प्रमाण है जो सभी को अपने साथ चलने, साथ बोलने और सभी के मनों को समान रूप से समझने के भाव पर केंद्रित है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि सामूहिक चेतना के विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और परस्पर संवाद को कितना अनिवार्य माना गया है। इसी प्रकार भारत ही नहीं विश्व में समादृत रामचरितमानस के उत्तर कांड से एक उदाहरण द्रष्टव्य है, जहां राज्याभिषेक के बाद राम प्रजा को संबोधित करते हुए कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मुहि बरजहु भय बिसराई, जिसका अर्थ है कि वही मेरा सच्चा सेवक है और वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है जो मेरी आज्ञा का पालन करता है। हे भाई, यदि मैं कभी कोई अनुचित या अनीति बात कह दूं, तो तुम सारा भय भुलाकर मुझे टोक देना। अपने शुद्ध विचार को निर्भीक भाव से रखना ही भारतीय चिंतन धारा का स्वतंत्रता चिंतन या स्वातंत्र्य बोध है, क्योंकि भारतीय मनीषा एकम सत् विप्रा बहुधा वदन्ति की विश्वासी है। आज जब दुनिया में अपने विचार को ही एकमात्र सत्य मानकर दूसरों पर थोपने की हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही है, तब भारतीय ज्ञान परंपरा का यह मूल्य हमें सह अस्तित्व, सहिष्णुता और लोकतांत्रिक विमर्श की वास्तविक राह दिखाता है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस स्वातंत्र्य बोध की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आज का

0: व्यक्ति राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है, उसे मतदान का अधिकार है। बाजारवादी संस्कृति ने उसे अपनी पसंद की वस्तुएं खरीदने की असीमित आजादी भी दी है। वह समाज, प्रकृति और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को भूलता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज पर्यावरण संकट, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक बिखराव जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ स्वार्थ सिद्धि प्रमुख है। स्व का बोध या स्वातंत्र्य बोध का विचार यहाँ दूर दूर तक नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा इस एकांगी स्वतंत्रता के स्थान पर एक पूरक और समग्र स्वतंत्रता मॉडल प्रस्तुत करती है। यहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज और प्रकृति की स्वतंत्रता के साथ जुड़ी हुई है। आधुनिक पर्यावरण चेतना और सतत विकास का मूल मंत्र भी यही कहता है कि हमारी उपभोग की स्वतंत्रता तब तक ही न्याय संगत है जब तक वह दूसरों के अस्तित्व और प्रकृति के संतुलन को खतरे में न डाले। इस प्रकार हम पाते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित स्वतंत्रता का मूल्य अत्यंत व्यापक, गहन और शाश्वत है। यह काल और भूगोल की सीमाओं से परे जाकर संपूर्ण मानवता के कल्याण की बात करता है। विश्व को यह समझने की आवश्यकता है कि आज के आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों को यदि अधिक मानवीय, संवेदनशील, न्यायपूर्ण और टिकाऊ बनाना है तो उन्हें स्वतंत्रता की केवल बाहरी व कानूनी अवधारणाओं तक ही सीमित रहने के बजाय भारतीय चिंतन धारा के चेतना और कर्तव्य आधारित स्वतंत्रता मूल्य को आत्मसात करना होगा।
1: भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित स्वतंत्रता के मूल्य, इसी विषय पर आज के संपादकीय में अभी आपने सुना दिल्ली विश्वविद्यालय की प्राध्यापक डॉक्टर विभा नाइक को। भारतीय ज्ञान परंपरा की यही विशेषता है कि वो हमें केवल उत्तर नहीं देती, वो प्रश्न करने का साहस भी देती है, और शायद यही किसी भी जीवंत संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत है। साहस अज्ञानता के विरुद्ध प्रश्न करने का हो या किसी अन्याय के विरुद्ध। हमारे देश में ऐसी प्रबुद्ध और साहसी आवाजों की कमी कभी नहीं रही।
2: बोलिए सब मिल महाशय मंत्र वंदे मातरम, बोलिए सब मिल महाशय मंत्र वंदे मातरम, तीनों भुवन में गूंज जाए शब्द वंदे मातरम।
1: आज जब हम भारत की आजादी की कहानी याद करते हैं तो हमारे सामने कुछ बड़े नाम, कुछ बड़े आंदोलन और कुछ ऐतिहासिक घटनाएं उभरती हैं। लेकिन आजादी की ये कहानी सिर्फ उन्हीं नामों की नहीं थी, ये उन अनगिनत स्त्री पुरुषों की भी कहानी थी जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसी ही एक आवाज को समर्पित है हमारी अगली प्रस्तुति, हिमालय की बेटी, आजादी की आवाज।
3: चौदह जनवरी 1902, दक्षिण सिक्किम के संगमू गांव में एक बच्ची ने जन्म लिया। लेप्चा समुदाय के एक परिवार में जन्मी हेलेन उनके माता पिता की 7 संतानों में तीसरी थी। बाद में उनका परिवार कर्सियांग आ गया, वो पहाड़ी इलाका जहां चाय के बागान और शिक्षा के नए अवसर उनके जीवन को एक नई दिशा देने वाले थे। लेकिन हेलेन की राह आसान नहीं थी। कम उम्र में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, मगर पढ़ाई छूटने का अर्थ ये नहीं था कि सीखने और आगे बढ़ने का सिलसिला भी रुक गया। सन 1917, पहाड़ियों में चरखे और खादी का आंदोलन चल रहा था। कलकत्ता से आए एक वक्ता के भाषण ने युवा हेलेन के मन को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने तय कर लिया उनका जीवन अब देश की सेवा के लिए होगा। अगले ही वर्ष 1918 में वो कलकत्ता पहुंची, चरखा प्रशिक्षण केंद्र में सूत काटना सीखा। उनकी प्रतिभा और लगन ने उन्हें मुजफ्फरपुर बिहार में आयोजित खादी और चरखा प्रदर्शनी में कलकत्ता का प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी दिया। फिर आया वर्ष 1920, बिहार भयंकर बाढ़ की चपेट में था, हजारों लोग प्रभावित हुए थे। ऐसे समय में हेलेन लेप्चा राहत कार्यों में जुट गई। निस्वार्थ भाव से लगातार, और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई महात्मा गांधी से। हेलेन की सेवा और समर्पण से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें साबरमती आश्रम में आने का निमंत्रण दिया। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने उनके व्यक्तित्व और देशभक्ति को करीब से देखा। यहीं गांधी जी ने उन्हें नया नाम दिया, सावित्री देवी। लेकिन जिस आवाज में इतनी दृढ़ता हो, वो सत्ता को भला कैसे सुहाती? ब्रिटिश सरकार की निगाहें अब उन पर थी। उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। गिरफ्तारी से बचते हुए वो इलाहाबाद पहुंची और कुछ समय आनंद भवन में रही। वहां उनका संपर्क कांग्रेस के कई नेताओं से हुआ, लेकिन पहाड़ उन्हें पुकार रहे थे। वो वापस करसियांग लौटी और दार्जिलिंग की पहाड़ियों में स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने में जुट गई। घर घर जाकर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का अभियान, ब्रिटिश प्रशासन की पाबंदियां और उनके सामने एक दृढ़ निश्चय, वो पीछे नहीं हटी। 29 जनवरी 1922, हेलेन लेपचा गिरफ्तार कर ली गई। दार्जिलिंग सदर जेल में 3 महीने, फिर करसियांग में नजरबंदी। समय आगे बढ़ा। सन 1939 और 40, नेताजी सुभाष चंद्र बोस करसियांग में नजरबंद थे। हेलेन लगातार उनके संपर्क में रही। कहा जाता है कि वो संदेश पत्रों के माध्यम से पहुंचाती थी।
4: मैं दिलीराम दुलाल, एक पत्रकार और इतिहास के विद्यार्थी।
5: कोलकाता में मोहम्मद अली पार्क में आयोजित सभा में हेलेन लेप्चा महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गई थी। उन्होंने धारिया कोयला क्षेत्र के 10,000 से अधिक मजदूरों का नेतृत्व करते हुए आदिवासी श्रमिकों को शोषण के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन भी किया था। उनको इसी आंदोलन में शामिल होने के कारण गिरफ्तार भी किया गया था। और बाद में जब उन्होंने दार्जिलिंग में अपने साथियों के साथ सदर जेल में 3 महीने तक, बाद में 3 वर्षों तक खरसांग में जब उनको नजरबंद रखा गया था, उस समय में भी उन्होंने स्वतंत्र संग्राम में योगदान दिया था। जैसे कि 1939-40 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस खरसांग में नजरबंद थे, तब उन्हें उनके साहसिक पलायन में महत्वपूर्ण सहायता की थी। बताया जाता है कि पठान की भेद तैयार करने में हेलेन लेप्चा ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया था। उनके योगदान के कारण सिक्किम सरकार ने हाल ही में सरकारी मेडिकल कॉलेज को उनके नाम पर रखने के लिए हेलेन लेप्चा मेडिकल कॉलेज निर्णय किया है।
6: मैं सोमनाथ पांडे, सिक्किम से। मैं एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हूँ। हेलेन लेप्चा के खोज में हम लोग ने सक्रियता से काम किया। उनका सभी इष्टजन थे, उनका जो मित्रों था, उनका परिवारजन था, उनसे मिलके उनका जो पेपर्स वगैरह ताम्र पत्र सब हम लोग ने निकाल के अभी पूरा ऑडियो विजुअल्स पूरा इतिहास हम लोग ने समेट लिया है। सिक्किम में 1973 से पहले उस समय में भी सिक्किम के लोग भारत के आंदोलन में, स्वाधीनता आंदोलन में किस तरह से भाग लिया करते थे, इस प्रश्न में हम लोग पूछ करते हैं। इसी दौरान में सावित्री देवी जो हेलेन लेप्चा है उनका संदर्भ में हम लोग ने काम किया है। वो विशेष करके मजदूरों को इकट्ठा करना, मजदूरों को स्वावलंबी कैसे बनाना, इस क्षेत्र में उन्होंने काम किया। सबसे पहले तो बीमारियों को देखा, दवाई औषधियाँ किया, उसके बाद में उन्होंने स्वावलंबी बनाने का काम किया। अब ये वो बड़ा स्वाभिमानी, वो तो निडर माता के रूप में परिचित है। उनका 3 नाम है। एक तो सबसे पहले नाम उनका हेलेन लेप्चा था। बाद में जाके ये नाम थोड़ा सा अंग्रेज का जैसा लगा, अंग्रेजी स्कूल से ये शिक्षित हुई थी तो अंग्रेज का जैसा नाम होने के बाद में महात्मा गांधी ने उनको सावित्री देवी नाम दे दिया। अब उनका गांव में जो खरसांग और सिक्किम में उनका नाम साइली दीदी करके परिचित था। साइली मतलब होता है नेपाली भाषा में थर्ड, तीसरा होता है। तब साइली करके थर्ड करके साइली दीदी करके ऐसा नाम उस प्रसिद्ध हुई। तो उनको ताम्र पत्र भी मिला उस समय में स्वाधीनता संग्राम के। लेकिन वो थोड़ा सा समाज में वो ओझल हो गई, क्योंकि हमारा ऐसा है कि जो आगे निकल गए उनका इतिहासकारों ने समेट दिया, लेकिन जो ट्राइबल उन्होंने विशेष करके दुर्गम क्षेत्र में ही काम किया तो उनका नाम थोड़ा इतिहास में थोड़ा सा पीछे रह गया था। तो अभी बहुत अच्छा से उनका नाम आगे आ रहा है। सिक्किम में तो उनका नाम से मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, तो और उनका कहीं रास्ता का नाम हेलेन लेप्चा का नाम से अभी बन रहा है।
3: वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भाग लिया। स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने समाज सेवा का काम जारी रखा। 15 अगस्त 1972 को भारत सरकार ने उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को सम्मानित करते हुए उन्हें ताम्रपत्र प्रदान किया। 18 अगस्त 1980 को हेलेन लेप्चा ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनका जीवन आज भी हमें प्रेरणा देता है।
1: हेलेन लेप्चा, हिमालय की बेटी, आजादी की आवाज। अभी आपने ये लघु रूपक सुना। आलेख अंकुश रोनियार का था, वाचन स्वर प्रांजल।

0: स्वतंत्रता संग्राम केवल रणभूमि में लड़ी गई लड़ाई नहीं थी, ये घरों में लड़ी गई, विद्यालयों में लड़ी गई, लेखन और पत्रकारिता में लड़ी गई, गीतों और कविताओं में लड़ी गई। और इस संघर्ष में भारतीय महिलाओं ने अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई। किसी ने आंदोलन का नेतृत्व किया, किसी ने जेल की यातनाएं सही, किसी ने भूमिगत रहकर क्रांतिकारियों की सहायता की, तो किसी ने अपने लेखन और विचारों से राष्ट्र की चेतना को जगाया। ऐसी ही कुछ साहसी महिलाओं की स्मृति को समर्पित है हमारी अगली प्रस्तुति, राष्ट्र जागरण की दीपशिखाएं, स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी महिला सेनानियां। आलेख और स्वर है प्रसारण कर्मी और प्राध्यापक बिंदु पांडे का।
1: बोलिए सब मिल महाशय मंत्र वन।

0: जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो सबसे पहले स्मरण होती है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जिस अदम्य साहस का परिचय दिया वह भारतीय इतिहास की अमर गाथा बन चुका है। अंग्रेजी सत्ता के सामने उनका यह संकल्प, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आज भी राष्ट्रीय स्वाभिमान का उद्घोष प्रतीत होता है। इसी संघर्ष की एक और तेजस्वी कड़ी बेगम हजरत महल। अवध की इस वीरांगना ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया और लखनऊ में विदेशी सत्ता को खुली चुनौती दी। स्वतंत्रता आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने वाली एक सशक्त आवाज थी सरोजनी नायडू। अपनी वोजस्वी वाणी और राष्ट्रवादी विचारों के माध्यम से उन्होंने हजारों महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। वे मानती थी स्वतंत्र भारत का निर्माण तभी संभव है जब महिलाओं को समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो।
1: I believe that I must disprove the age-old proverb that the woman has the last word and the longest word. I have the last word, no doubt, not because I am a woman, but because I'm acting today as the hostess of the Indian National Congress.
0: महात्मा गांधी के संघर्ष में एक मौन किंतु अत्यंत सशक्त शक्ति थी, कस्तूरबा गांधी। उन्होंने सत्य, अहिंसा और सेवा के आदर्शों को जीवन में उतारते हुए अनेक आंदोलनों में भाग लिया और जेल यात्राएं भी की। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हर बड़े परिवर्तन के पीछे त्याग, धैर्य, समर्पण की एक शांत धारा भी बहती है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब अधिकांश राष्ट्रीय नेता गिरफ्तार कर लिए गए, तब अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर अंग्रेजी शासन को सीधी चुनौती दी। उनका साहस उस दौर के युवाओं के लिए प्रेरणा बना। स्वतंत्रता संग्राम की चेतना को जन जन तक पहुंचाने में साहित्य की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और इस क्षेत्र में सुभद्रा कुमारी चौहान का योगदान अविस्मरणीय है। वो केवल एक कवित्री ही नहीं बल्कि सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी भी थी। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने जेल यात्रा की और राष्ट्रीय आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनकी अमर कविता खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी ने भारतीय जनमानस में देशभक्ति और स्वाभिमान की ऐसी लौ प्रज्वलित की जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की। इसी आंदोलन के दौरान एक युवा महिला ने अपनी आवाज को स्वतंत्रता का हथियार बना लिया। यह थी उषा मेहता। उन्होंने गुप्त कांग्रेस रेडियो की स्थापना कर पूरे देश में स्वतंत्रता का संदेश पहुंचाया। जब अंग्रेजी सरकार समाचारों और सूचनाओं पर नियंत्रण स्थापित कर चुकी थी, तब उनके साहसिक प्रयासों ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की।
2: This is the Congress radio calling on 42.34 meter. Today, we shall read to you a stupid reasoning of the CNC.
0: सुचेता कृपलानी ने भी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व कौशल का परिचय देते हुए भूमिगत आंदोलनों को सशक्त बनाया। बाद में वे स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी और यह सिद्ध किया कि संघर्ष से निकला नेतृत्व राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करता है। बंगाल की वीरांगना मातंगिनी हाजरा का बलिदान भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। 73 वर्ष की आयु में भी वे आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। अंग्रेजों की गोलियां लगने के बाद भी उनके हाथों में तिरंगा नहीं छूटा और उनके मुख से वंदे मातरम का उद्घोष निरंतर निकलता रहा। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, तब कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व संभाला। उन्होंने महिलाओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर यह स्थापित किया कि राष्ट्र रक्षा और बलिदान के क्षेत्र में स्त्रियां किसी से कम नहीं है।
3: नेताजी हमसे 5 घंटे बात किया, हमारे देश का और दुनिया का आधा हिस्सा को कैसे नजरअंदाज करें, यानी महिलाओं को। अगर महिलाओं को भी देश का प्रेम है, उन लोगों को आजादी का जरूरत है, इसलिए आप महिलाओं को भी हम लेने के लिए तैयार है, उनका भी एक फौज बनाएंगे।

अभी आपने सुनी लघु प्रस्तुति राष्ट्र जागरण की दीप शिखाएं। आलेख और स्वर था प्रसारण कर्मी और प्राध्यापक बिंदु पांडे का। इन दीप शिखाओं ने अपने समय को तो रोशन किया ही, आज भी उनका जीवन हमें ये याद दिलाता है कि परिवर्तन की शुरुआत अक्सर एक अकेले साहस भरे कदम से होती है। संस्कृति का संसार बहुत विस्तृत है। कभी वो करघे पर आकार लेता है, कभी किसी पुस्तक के पन्नों में, और कभी उन समुदायों की स्मृतियों में जीवित रहता है जिन्होंने प्रकृति और परंपरा के साथ सह अस्तित्व की अनूठी संस्कृति रची है। हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ये दिवस भारतीय हथकरघा परंपरा और देश के बुनकरों के योगदान को सम्मान देने के साथ साथ स्वदेशी आंदोलन की उस ऐतिहासिक भावना की स्मृति से भी जुड़ा है जब 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक आरंभ हुआ।

किताबें हमारी स्मृति हैं और पुस्तकालय उस स्मृति का सार्वजनिक घर। हर वर्ष 12 अगस्त को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जयंती

उनके योगदान के लिए जागरूकता बढ़ाना है। करघे के धागों में बुनी हमारी हस्तशिल्प परंपरा, पुस्तकालयों में संरक्षित ज्ञान की दुनिया और आदिवासी समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ये तीनों मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक बेहद सुंदर और समृद्ध चित्र रचते हैं। और अब समय है उन विभूतियों के स्मरण का जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में भारत के सार्वजनिक और सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, उस्ताद अमीर खां, उस्ताद बिस्मिल्ला खां, राम किंकर बैज, बी एस गायतोंडे, जहांगीर सभावाला, फिरोज शाह मेहता, प्रफुल्ल चंद्र रे, पंडित रविशंकर शुक्ल और अभी हाल ही में दिवंगत हुए पंडित जगन्नाथ बेहरा। इन विभूतियों का स्मरण उन विचारों, कर्मों और सृजनात्मक ऊर्जा को याद करना है जिनसे हमारा सांस्कृतिक वर्तमान निर्मित हुआ। इन महान विभूतियों के अवदान को नमन करते हुए संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी चाईबासा है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। पेश खिदमत है गजलों का कार्यक्रम महफिल।

0: महफिल। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह को। 10:30 बज चुके हैं और पेश है फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम सुरों के रंग।
1: तेरे प्यार की तमन्ना,
0: कपूर साहब की आवाज़ में यह है फिल्म तवायफ का नगमा।

महफिल में हम अकेले, दामन को कोई चूमे, जुल्फों से कोई खेले।

ना सुलगना किसको दिखाऊं, सांस के तूफान कैसे छुपाऊं, अपना सुलगना किसको दिखाऊं, सांस के तूफान कैसे छुपाऊं, आंखें क्या क्या देख रही है, दिल पे जो गुजरे कैसे बताऊं, आजा रे आ जरा आ आंखों से दिल में समा आ जा रे आ।

आज आप सुन रहे थे कुछ मिश्रित गीत। हम आकाशवाणी के चाई भाषा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: पर आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता की पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नव क्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फॉरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
2: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
0: सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वॉल्ट इंडिया, कार्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निःशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निःशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेन देन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेन देन भी निःशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेन देन पर

नाम मात्र दर से लागू होगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में तेज बारिश हुई, राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।